प्रभात। आपने अपनी रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्र मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 सितंबर 2026। हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक राजा को अपने लिए सेवक की आवश्यकता थी। उसके मंत्री ने दो दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे अपना सेवक बना तो लिया, पर बाद में मंत्री से कहा, वैसे तो ये आदमी ठीक है, पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। मंत्री को ये बात बड़ी अजीब लगी, पर वो चुप रहा। एक बार गर्मी के मौसम में राजा ने उस सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर आया। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। राजा ने कुल्ला करके फेंक दिया। वो बोला, इतना गर्म पानी, वो भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। मंत्री ये सब देख रहा था। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। राजा ने ये पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज बाहर को नहीं भीतर को देखें। सोने का पात्र सुंदर मूल्यवान और अच्छा है, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण इसमें नहीं है। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। रंग रूप को न देखकर गुण को देखें। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। सम्मान प्रतिष्ठा यश श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। अमित सौंदर्य व्यक्ति के मन विचार चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से सुंदर दिखते हैं, मगर भीतर से क्रूप होते हैं। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। सुंदर होने और दिखने में बड़ा अंतर है। आपके गुण ही आपका सबसे बड़ा धन है।
0: जीवन सौरभ।

अनेक की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन की राग का। श्री कृष्ण सरल की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास, ये इसके बारे में जानिए कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में सुबह 8:30 पर। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम टेक गुरु। विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नागाइश से रत्नेश सोनिया ने मेरी खास बातचीत। 9:30 यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। वासुदेव शरण अग्रवाल पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। स्वाति गिरी और मोहम्मद दानिश के स्वर होंगे कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम परिक्रमा का। काव्य गुंजन ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। कलाकार हैं भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा। हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। शांति स्वरूप भटनागर जी पर होगा आज का कार्यक्रम। और 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक विराम के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, छंद है विराट स्थाना और त्रिष्टुप।
2: श्रुधि हवमिंद्र मा ऋषण्यः स्यामते दावने वसूनाम् इमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वसुयवः सिंधवो नक्षरन्तः। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमें तिरस्कृत न करें। धन दान के समय हम आपके कृपा पात्र रहें। झरते हुए जल के समान दिया गया हव्य आपकी शक्ति को बढ़ाए। सृजो महीरिंद्र या अपिन्वह परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीहि अमर्त्यम चिद्दासम मन्यमान मवाभिन दुक्थैर वावृधानः। हे इंद्रदेव, जल को रोकने वाले असुर के बंधनों को तोड़कर आपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि पर बहाया। स्तुतियों से बढ़ते हुए आपने अपने आप को अमर समझने वाले उस घमंडी असुर को धराशायी किया। उक्तेष्विन्नु शूर येषु चाकंस्तोमेष्विन्द्र रुद्रियेषु च तुभ्येदेता यासु मंदसानः प्रवायवे सिस्रते न शुभ्राः। हे वीर इंद्रदेव, जिन स्तुतियों से आप आनंदित होते हैं और रुद्रदेव की जिन स्तुति की कामना करते हैं, हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ में वे स्तुतियां प्रकट होती हैं। शुभ्रम नु ते सुषमम वर्धयन्तः शुभ्रम वज्रम बाहवोर दधानाः शुभ्रस्त्वमिंद्र वावृधानो अस्मे दासीर विषः सूर्येण सहियाः। हे इंद्रदेव, हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचमाते वज्र को आपकी भुजाओं में धारण कराते हैं। आप तेजस्वी रूप में विस्तार पाते हुए सूर्य के समान संतापदायी वज्र से आसुरी प्रजाओं को नष्ट करें। गुहा हितम गुहियम गूढ़ हमप्स्व पीवृतम माइनम क्षियंतम उतो अपो द्याम तस्तभ्वाम समहन्निहिम शूर वीर्येण। हे इंद्रदेव, आपने द्युलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले गुफा में छिपे हुए मायावी अहि असुर को क्षीण करते हुए अपने पराक्रम से मारा। स्त्वानुत इंद्र पूर्व्या महान्युत स्तवाम नूतना कृतानि स्त्वा वज्रम बाहवो रुषंतम स्त्वा हरि सूर्यस्य केतु। हे इंद्रदेव, हम आपके द्वारा प्राचीन समय में किए गए श्रेष्ठ कार्यों का यशोगान करते हुए वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हाथों में धारण किए सुंदर वज्र की तथा सूर्य रश्मियों के समान कांतिमान आपके अश्वों की भी हम प्रशंसा करें। हरि नूत इंद्र वाजयंता घृतश्चु स्वारमस्वारष्टाम विसमना भूमिर प्रतिष्ठारस्त पर्वतश्चित सरिष्यन। हे इंद्रदेव, आपके द्रुतगामी अश्वों की गर्जना जल वृष्टि करने वाले मेघों की तरह है। पृथ्वी जल वृष्टि से खूब फैल जाती है। मेघ दौड़ते हुए पर्वतों पर विचरण करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरी शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

अपने देश अपनी मातृभूमि की शब्दों में वंदना तो कई साहित्यकार और कवि करते रहे हैं, किंतु मातृभूमि की आजादी और उसके लिए शहीद होने वाले क्रांतिवीरों के जीवन का स्तुतिगान करने वाले हिंदी के विरल कवि थे श्री कृष्ण सरल। 1 जनवरी सन 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन्मे श्री कृष्ण विरभरे 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता के वात्सल्य से वंचित हो गए थे। शायद मातृ प्रेम की यही वंचना उनकी कविता में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और कारुणिक स्वरों में गुंफित सुनाई पड़ती है।

श्री कृष्ण जी एक शिक्षक थे और आरंभिक सेवा काल में ग्वालियर जिले के डबरा नामक स्थान में प्रधान आचार्य थे। बाद में वे उज्जैन में स्थायी रूप से बस गए थे। उनके काव्य जीवन का सिलसिला छात्र जीवन से ही आरंभ हो चुका था। एक बार अपनी काव्य कृति कवि और सैनिक की भूमिका लिखने के लिए वे ग्वालियर गुरुप्रसाद टंडन के पास पहुंचे। गुरुप्रसाद टंडन सुविख्यात स्वाधीनता सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के सुपुत्र थे। संयोग से वे उस समय ग्वालियर में ही थे। उनकी रचना पढ़कर पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, आपका काव्य बहुत रुचिकर और भाव प्रवण है, आप कोई महाकाव्य क्यों नहीं लिखते? सरल जी ने कहा, अवश्य, फिर तो महाकाव्य के लिए सुयोग्य पात्र का नाम भी आप ही सुझाएं। टंडन जी तुरंत बोले, पौराणिक कथानकों पर तो कई महाकाव्य लिखे जा चुके हैं, आप राष्ट्रीय चेतना का प्रगतिशील महाकाव्य लिखें। मैं इसके लिए शहीद भगत सिंह को उचित पात्र मानता हूं। प्रेरणा के ये शब्द उनके मार्गदर्शक सूत्र बन गए और उन्होंने संकल्पित होकर शहीदों की जीवन गाथाएं कागज पर उतारना शुरू कर दिया।

शांति के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधन मात्र उनकी वंदना है साध्य। सरल जी ने अपने काव्य संकल्प को पूरा करने के लिए स्वाधीनता आंदोलन और उससे जुड़े सभी लोगों का गहन अध्ययन आरंभ किया। वे भगत सिंह की माता विद्यावती कौर का आशीर्वाद लेने जलंधर जिले के खटकर कला गांव पहुंचे। माताजी ने उन्हें शहीद भगत सिंह से जुड़े तमाम आत्मीय किस्से सुनाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम ये पुस्तक जल्दी लिखकर छपवा लेना, क्योंकि मेरे दिन तो गिने चुने हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी लगाने के पूर्व सुखदेव और राजगुरु की माताओं के साथ मैं भी उनसे मिलने जेल पहुंची थी। उनसे मिलने और भी लोग जेल के फाटक पर खड़े थे। अधिकारी बोले कि केवल माताएं ही भीतर जा सकती हैं, दूसरे नहीं। भीतर से भगत सिंह ने जवाब भेजा कि यदि सरकार हमें देशवासियों से नहीं मिलने देती तो हम लोगों को भी अपनी माताओं से मिलना स्वीकार नहीं है। उनका तर्क था कि मृत्यु की इस वेला में हमारे मन से अपने पराये का भेद मिट गया है। हम लोग अपनी कुर्बानियां अपने सगों के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए दे रहे हैं। ये विवेकपूर्ण निर्णय सुनकर सभी माताएं उनसे बिना मिले वापस आ गईं।

0: प्रसंग सुनाकर विद्यावती जी ने सरल जी से कहा, मेरे बेटे पर जो तुम पुस्तक लिखोगे ना, उसी को देखकर मैं ये समझूंगी कि मैंने अपने बेटे से आखिरी मुलाकात कर ली। एक साल बाद पुस्तक पूरी हुई और भगत सिंह की माताजी उसका विमोचन करने उज्जैन पहुंची। विमोचन के पहले उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हें पहले चंद्रशेखर आजाद पर लिखना चाहिए था, क्योंकि वो भगत सिंह से पहले शहीद हुए थे। सरल जी के स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने महाकाव्य सरदार भगत सिंह का विमोचन किया। इस तरह शहीदों पर महाकाव्य लेखन का उनका सिलसिला आरंभ हो गया। सरल जी ने लगभग 1152 शहीदों की जीवनियां और संक्षिप्त जानकारियां लिखीं, जो 5 खंडों में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 महाकाव्य लिखे। 2 महाकाव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर तथा शेष 7 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, भीकाजी कामा और करतार सिंह सराभा पर केंद्रित थे। शहीदों पर लेखन के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, उनके परिचितों से मुलाकात की, संस्मरण एकत्र किए और उन्हें अपनी लेखनी में आकार दिया। आरंभिक काल में अपने लिखे इन महाकाव्यों के प्रकाशन और विक्रय में सरल जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु कठोर अर्थाभाव से जूझते हुए भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। आइए श्री कृष्ण सरल के काव्य लेखन से कुछ काव्य पंक्तियों का आनंद लें। उनकी कविता में चंद्रशेखर आजाद के मनोभाव इस तरह से आए, आजादी इतना मूल्य मांगती है हमसे, हम अपने मीठे सपनों का बलिदान करें, जिसकी मिट्टी की गंध समाई सांसों में, जीवन देकर उस धरती का सम्मान करें। उन अमर शहीदों को न भूलने की हिदायत देते हुए सरल जी लिखते हैं, प्रेरणा शहीदों से अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये सब मानो वीरता बांझ हो जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित उनके महाकाव्य में सुभाष जी उनकी लेखनी के माध्यम से अपने साथियों को कुछ यूं संबोधित करते हैं, साथियों, हमें संकल्प यही दोहराना है, कुर्बान देश के हित हम तन मन कर देंगे, कोई कुर्बानी नहीं देश से बड़ी कभी, कुर्बान देश हित अपना जीवन कर देंगे। इस प्रकार सरल जी की लेखनी ने लगभग 87 ग्रंथ रचे, जिनमें 44 काव्य कृतियां हैं और शेष गद्य रचनाएं। गद्य के क्षेत्र में सरल जी ने कहानियां, उपन्यास, एकांकी, जीवनियां और निबंध कृतियों की रचना की। उनका सारा लेखन प्रामाणिक और शोधपूर्ण है। देश के शहीदों के जीवन को अपने शब्दों से साकार करने वाले श्री कृष्ण सरल को 2 सितंबर उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।
1: ये वतन का राग।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: एक शाही दहेज, सात द्वीपों और चाय की प्याली से बना साम्राज्य। साल 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया। ये एक ऐसा मिलन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और सात चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बम्बई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमय चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बम्बई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बम्बई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते।
2: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश का शासन था। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज की कमान अपने हाथों में ली। गोंड रानी दुर्गावती ने गढ़ा राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। उन्होंने कई युद्ध लड़े। वो उस काल की ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी लोकप्रिय शासिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अनेक लोक उपयोगी कार्य कराए, अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर में अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराया, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनके काल में पचमठा मंदिर की स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें 5 गर्भगृह हुआ करते थे। ये पचमठा मंदिर वास्तव में मठ थे और यहां विद्या अध्ययन अध्यापन के लिए दूर दूर से विद्वान और विद्यार्थी आते थे। रानी दुर्गावती के काल में भी ब्रज से पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ जी दक्कन जाते हुए गढ़ा राज्य के जबलपुर पधारे। उनके आगमन से गोंड राज्य गढ़ा में वैष्णव भक्ति का प्रभाव बढ़ गया। उनकी बैठकें बनी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और गोपाल के अनेक मंदिर बने। तेलंगाना के लिंगायत ब्राह्मणों ने जब धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया तब उन पर विपदा आन पड़ी। इस कठिन समय में गोसाई विट्ठल दास जी उन्हें अपने साथ गढ़ा ले आए और रानी दुर्गावती ने लिंगायत ब्राह्मणों को नर्मदा किनारे अनेक गांव में बसाया। ये सारी जानकारी हमें अभी तक दी है पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना जी ने और जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और आज हम पांचवी कड़ी में क्या बात करने वाले हैं पूजा जी? वैसे आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पहले बताई हैं। आपने पिछली बार कुछ हमें ये हिंट किया था कि दिल्ली के मुगल दरबार पर भी रानी का असर दिखाई देना शुरू हो गया था, रानी दुर्गावती जी का।
4: हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि रानी दुर्गावती के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मुगल दरबारी लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। उन्होंने लगान के बारे में लिखा था कि गढ़ा के गोंड राज्य की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था कि गढ़ा राज्य इतना संपन्न था कि वहाँ के किसान और व्यापारी लगान सोने की मोहरों और हाथी के द्वारा दिया करते थे। ये उनकी समृद्धि दिखाता है। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरी, हमें और भी इतिहास उनके साहित्य में दिखाई देता है। तो मुगल दरबार में गढ़ा राज्य की खबरें लगातार पहुंच रही थी
3: जी।
4: चाहे वह लगान हो, चाहे गोसाई विट्ठल नाथ जी का गढ़ा में आगमन हो, या मठ मंदिरों का निर्माण, या फिर रानी का सच्चरित
3: जी।
4: सब पर चर्चाएं जोरों से थी। रानी का प्रभाव इतना था कि मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा
3: जी।
4: और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने भी लगे थे, जिसका खामियाजा रानी दुर्गावती को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा
3: जी।
4: तो रानी अत्यधिक चरित्रवान और साहसी थीं। उनकी तारीफ अबुल फजल ने ही नहीं की है, बल्कि दूसरे मुगल दरबारी लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में उन्हें खूब सराहा है
3: जी। तो क्या पूजा जी, और कुछ लेखकों के नाम हम जान सकते हैं कि कहां और किसने ये जिक्र किया है?
4: एक बड़े प्रसिद्ध दरबारी लेखक हुए हैं मुगल काल के, बदायूनी
3: जी।
4: तो बदायूनी ने मुतखाब उत तवारीख नामक एक किताब लिखी है, और उन्होंने गढ़ा की गोंड रानी दुर्गावती के सौंदर्य का वर्णन भी किया है और उनके साहस का भी बहुत वर्णन किया है। इसके अलावा एक और लेखक हुए निजामुद्दीन अहमद, उन्होंने तबाकत ए अकबरी में रानी दुर्गावती के सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा की है। यहाँ तक तो ठीक था। एक और लेखक हैं जिनको हम सब ने लगभग पढ़ा होगा
3: जी।
4: वो है फरिश्ता, जिनकी बड़ी फेमस किताब है तारीख़े फरिश्ता
3: जी।
4: और उन्होंने भी दुर्गावती की प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य की, उनकी प्रतिभा की और उनके चरित्र की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही उनको सच चरित्र बता रहे हैं
3: जी।
4: और उनका जो इतना सुदृढ़ चरित्र है
3: जी।
4: वही जाकर उनको इतने बड़े गढ़ा राज्य की स्थापना, उसको बनाए रखने में सहयोग देता है।
3: बिल्कुल निश्चित रूप से, जब तक किसी का चरित्र अच्छा ना हो वो अपना राज्य तो बहुत अच्छा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक अच्छे चरित्र की ही नींव पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।
4: बिल्कुल, काफी देर से चर्चा कर रहे हैं मुगल इतिहासकार अबुल फजल की
3: जी हाँ।
4: तो अबुल फजल ने जब रानी दुर्गावती के बारे में वर्णन किया तो कुछ बात उनकी ध्यान देने वाली है, जो आगे के इतिहास को रचने में महत्वपूर्ण है। तो जब अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के साहस की प्रशंसा की तो उन्होंने आगे यह भी लिख दिया कि रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और ये रानी की सबसे बड़ी गलती थी
3: जी।
4: तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अधीनता न स्वीकार करना रानी को बहुत महंगा पड़ा। तो जब उसने आगे लिखा तो यह भी लिखा कि वो बहुत अदम्य साहस और कर्तव्य परायण जैसे आधारभूत तत्वों का उनमें कोई अभाव नहीं था रानी में, और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बहुत महान कार्य भी किए थे। और ये भी लिखते हैं अबुल फजल की मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से उन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और वो विजय भी रही थी। जैसा हमने पहले भी सुना, वह बहुत ही अच्छी निशानेबाज भी थी। लेकिन वो आगे लिखता है कि रानी दुर्गावती में एक ही दोष था
3: जी।
4: और वो दोष यह था कि उन्होंने कभी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
3: लेकिन ये तो दोष मुगलों की नजरों में था। देखिए पूजा जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे सच्चरित्र का और ऐसी देशभक्ति का क्या अर्थ जो पर अधीन हो जाए। तो रानी दुर्गावती ने अपने गोंड राज्य की बिल्कुल रक्षा की, मुगलों के अधीन होना उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और इस बात पर हम सबको आज गर्व है। मुगल तो उनके विरोधी थे, और भले ही वो ऐसा लिखते हों, क्योंकि वो ऐसा लिखना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी वीरांगना उनके अधीन हो जाए। लेकिन पूजा जी, इस बीच ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने कुछ लोगों को भेजा भी था गढ़ा राज्य में।
4: जब मुगल दरबार में बहुत चर्चाएं बढ़ने लगी
3: जी,
4: तो जिज्ञासा होना बहुत जरूरी था
3: जी।
4: रानी दुर्गावती के बारे में सही जानकारियां जुटाने के लिए दो लोगों को भेजा गया। तो ऐसी जनश्रुति है कि अकबर ने दो विद्वान थे उनको भेजा था, एक थे गोप महापात्र और दूसरे थे नरहरि महापात्र
3: जी।
4: इनका इतिहास भी मिलता है, इसलिए ये किंवदंती काफी सत्य के करीब लगती है। तो गढ़ा राज्य के दीवान आधार कायस्थ ने जब गोप महापात्र को जबलपुर भेजा गया
3: जी,
4: तो उनका बड़ा सम्मान किया जब वो गढ़ा आए
3: जी,
4: क्योंकि वो बड़े जाने माने विद्वान थे गोप महापात्र। गढ़ा राज्य के तो पहले से ही था कि वो विद्वानों को खूब प्रश्रय देते थे
3: जी हाँ।
4: तो गोप महापात्र बड़े खुश होकर गढ़ा से वापस दिल्ली पहुंचे। और इसी प्रकार जब नरहरि महापात्र आए तो रानी दुर्गावती ने उनका भी बहुत स्वागत किया और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें उस समय 1 करोड़ रुपए की जो कीमत बनती है ऐसा पुरस्कार दिया, ये लिखित
3: उस समय 1 करोड़ के साक्ष्य हैं।
4: हाँ, के साक्ष्य हैं। तो नरहरि महापात्र और गोप महापात्र के बारे में हमें कई जानकारियां इससे संबंधित मिलती हैं। तो कहते हैं कि जब गोप महापात्र दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां गढ़ा के मंत्री आधार कायस्थ की बुद्धिमता की बड़ी तारीफ की
3: जी।
4: इस पर सम्राट ने आधार सिंह कायस्थ को दिल्ली बुलवाने के लिए एक दोहा लिखकर पत्र भेजा
3: जी।
4: और दोहा ऐसा था कि अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपेत सोई अरु आधार दीवान। इसका अर्थ यह है कि अगर बहुत बुद्धिमान है तो जरा भेजो दिल्ली अपने दीवान को
3: जी। तो क्योंकि उनके विद्वान आधार कायस की तारीफ कर रहे थे
4: जी। हाँ,
3: वाह।
4: तो ये पढ़कर रानी दुर्गावती ने आधार कायस को एक सफेद हाथी के साथ मुगल दरबार भेजा। इसके कई कारण भी थे
3: जी।
4: जो सफेद हाथी साथ में भेजा गया था,
3: सफेद हाथी ज्यादातर होते नहीं है तो इसके पीछे कोई रहस्य रहा होगा।
4: पर सफेद हाथी इस क्षेत्र में, जैसे हमने सुना है कि उस समय में कुछ किंवदंती आती हैं जिसमें सफेद हाथी का वर्णन आता है।
3: अच्छा।
4: पर हाँ, यहाँ यह है कि आधार कास्ट के साथ एक सफेद हाथी भेजा। सफेद हाथी यहाँ पे प्रतीकात्मक भी हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि गढ़ा राज्य को संभालना कोई इतना आसान नहीं, हाथी पालने बराबर है।
3: बिल्कुल।
4: तो जब आधार कायस्थ मुगल दरबार में पहुंचे
3: जी।
4: तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है अपने सिंहासन पर ही नहीं है और अकबर जो है वो पहले ही उनकी बुद्धिमता की जांच करने के लिए दरबारियों के बीच में साधारण कपड़े पहनकर बैठ गए थे।
3: अच्छा।
4: तो आधार कायस्थ ने जब दरबार में प्रवेश किया और उन्हें सिंहासन सुना लगा तो उन्होंने पूरे दरबार पर नजर घुमाई। फिर उन्होंने एक साधारण वेशभूषा में बैठे हुए एक आदमी की ओर देखा और उन्हें नमस्कार किया, तो वो अकबर ही था। तो अकबर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने भरे दरबार में पल भर में आधार कायस्थ ने उन्हें पहचाना कैसे
3: जी।
4: तो उन्होंने आधार कायस्थ से पूछा कि आपने पल भर में कैसे पहचाना। तो आधार कायस्थ ने जवाब दिया कि मैंने जब सबकी ओर देखा तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की नजरें आपकी ओर देख रही थी और देखते ही झुक गई थी, तो जैसे ही मैंने ये देखा मैं समझ गया कि आप ही सम्राट हैं।
3: वाह, तो कितनी अच्छी बातें पूजा जी हमें बता रही हैं। पांचवी कड़ी सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपका रेडियो मित्र मैं संदीप शर्मा आपके साथ बना हुआ हूं और आज पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि दिल्ली से आए हुए मुगल शासक अकबर के भेजे हुए विद्वानों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रानी दुर्गावती ने उस समय 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए। तो इससे तो निश्चित रूप से ये पता लगता है कि हमारा जो गढ़ा राज्य था वो कितना ज्यादा समृद्ध था।
4: जी हाँ।
3: अच्छा पूजा जी, आपने सफेद हाथी की बात कही कि आधार कायस्थ वहां सफेद हाथी के साथ गए, रानी दुर्गावती ने उन्हें भेजा, लेकिन कहते हैं कि कुछ एक और बहुत अजीब सी चीज भेजी गई थी, वो क्या थी?
4: जब आधार कायस्थ से अकबर मिले तो वो बहुत उनसे प्रभावित हुए
3: जी
4: और उनका काफी मान सम्मान भी किया। फिर उन्होंने जिस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने गढ़ा राज्य के बारे में आधार कायस्थ से पूछा
3: जी।
4: तो कहते हैं कि रानी ने आधार कायस्थ के हाथों सोने का एक करेला भिजवाया था
3: जी।
4: खाने वाला करेला होता है, सोने का बना हुआ था वो करेला, ऐसा एक करेला भेजा। तो जब अकबर ने गढ़ा राज्य के बारे में पूछा तो आधार कायस्थ ने वह सोने का करेला उनके सामने रख दिया
3: जी।
4: जिसका मतलब ये था कि गढ़ा राज्य सोने की तरह संपन्न है, उसकी भूमि उबड़ खाबड़ है जैसे करेले की होती है
3: जी।
4: लेकिन यदि हमसे शत्रुता की तो हम करेले से
3: कम कड़वे नहीं है। क्या बात है, तो ये तो बड़ी दूरदर्शिता की बात थी, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या इन्हीं विशेषताओं के चलते और ये जो संदेश कुछ ऐसे भेजे गए, क्या इसी के चलते मुगलों और गोंड राज्य के बीच ठन गई?
4: हाँ बिल्कुल, ये जो बातें हो रही थी ये धीरे धीरे दोनों ही राज्यों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही थी
3: जी।
4: मुगल दरबार में ये सुखबुकाहट थी कि गढ़ा की सीमाएं बड़ी सुदृढ़ होती जा रही हैं, रानी की प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ रही है, ये सब अकबर को एक चुनौती जैसा लग रहा था
3: जी। हाँ।
4: तो अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था आसफ खां
3: जी,
4: मालवा में तैनात था वो। और आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियां जितनी भी होती थी उसकी सूचना मुगल दरबार तक पहुँचाया करता था। तो रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया था
3: जी।
4: रानी दुर्गावती के पास एक विशाल और सुसज्जित सेना थी, सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 1,000 युद्ध हेतु प्रशिक्षित हाथी थे और पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी सेना थी। तो आसफ खान ने रानी के लोक उपयोगी कार्य जो थे, तालाब बन रहे हैं, मठ मंदिर बन रहे हैं, इस सब की सूचना, एक एक सूचना मुगल दरबार तक पहुंचती रही, जो दरबारी लेखक है उनके विवरणों में मिलती है। और रानी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सुदृढ़ सीमाएं सभी को बेचैन कर रही हुई थी।
3: पूजा जी, क्या इन सब सूचनाओं के अतिरिक्त बढ़ती हुई जो धन संपदा थी, जो समृद्धि थी गढ़ा राज्य की, क्या वो भी शत्रुता का एक बड़ा कारण बनी?
4: बिल्कुल, धन तो सबको आकर्षित करता ही है, और कोई भी राज्य, उसके पास कितना सुरक्षित धन है उस पर उसकी ताकत निर्भर करती है। तो गढ़ा तो हम देख ही रहे थे कि गढ़ा के पास, शुरू से ही बात कर रहे हैं हम कि अकूत संपदा थी,
3: और इतनी कि अकबर जैसे राजा को, जिसके पास खुद ही अकूत संपदा थी, उसे यहाँ इतना धन देख करके जलन हुई।
4: बिल्कुल, तो इसकी पूरी खबर तो मुगल दरबार को पहुंची रही थी। रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ का जो किला है आज के नरसिंहपुर में, तो वहां पर अपनी सारा खजाना सुरक्षित रखवा दिया था। चौरागढ़ जो है एक दुर्गम किला है, हमने पहले भी बात की थी। इस किले को घेरते हुए और भी गढ़ हैं, जैसे फतेहपुर है, नमुआगढ़ है, भवरगढ़ है, पावागढ़ और देवरी है। तो ये एक सुरक्षित किला था, यहाँ पर सारा खजाना रखवा दिया गया। प्राकृतिक रूप से भी ये किला बहुत सुरक्षित था। तो गढ़ा राज्य की अकूत संपत्ति सालों से यहाँ सुरक्षित रखी हुई थी, लेकिन इस संपत्ति की सूचना मुगल सेनापति आसफ खान को लग गई और उसने दरबार में उसका बखान कर दिया। तो मुगल सम्राट अकबर के मन में उसके लिए लालच आ गया।
3: अच्छा।
4: और उनका ध्यान अब गढ़ा की संपत्ति पर था। लेकिन युद्ध का कारण सिर्फ संपत्ति नहीं थी, बल्कि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे एक और कारण था, वो ये था कि उस समय हाथियों का बड़ा महत्व था। हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए होता था, प्रोसेशन के लिए होता था, अगर आप कहीं इरादा एक शाना शौकत के लिए होता था, सवारी के लिए होता था, खेलों के लिए होता था, प्रदर्शन के लिए होता था, तो प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी आवश्यकता होती थी। और ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में उस समय विंध्याचल पर्वत में, पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में खूब हाथी हुआ करते थे। इसके लिखित प्रमाण है। तो ये जो गोंड जनजाति थी, ये हाथियों को प्रशिक्षित करने में बड़ी
3: सिद्धस्त
4: थी, बड़ी सिद्धस्त थी। तो इनके पास बड़े अच्छे किस्म के हाथी होते थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी होते थे। तो हमेशा से जो दिल्ली दरबार था वो इन हाथियों की चाह में रहता था। तो एक कारण ये भी था कि यहाँ के जो स्वस्थ और प्रशिक्षित हाथी थे वह भी मुगल दरबार चाहता था। ये भी युद्ध का एक बड़ा कारण बना।
3: जी, और पूजा जी, एक और कारण की बात इतिहास में कुछ ऐसा देखने को मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि दक्कन में बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था, और यहाँ पर तो वैसे ही पुष्टि मार्गी संत जिनका आपने जिक्र किया, विट्ठलनाथ जी का प्रभाव हो चला था, तो क्या ये भी एक कारण था?
4: मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा कारण था। जैसा आपने कहा, अकबर के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: हाथी बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकते, एक कारण हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण उस समय शायद सबसे बड़ा कारण था, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देख रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय संत विट्ठलनाथ जी के प्रभाव से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था और बड़ी संख्या में धर्मांतरण रोके जा रहे थे, और मुगल दरबार को यह गवारा नहीं था, जिसका परिणाम आसफ खां के द्वारा गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। ये सब मिलकर आक्रमण का कारण बने।
3: पूजा जी, जिस तरह से रानी ने वहां पर एक सोने का करेला भेजा था, आपने जिक्र किया, सफेद हाथी भेजा था, आधार कायस्थ वहां पर गए थे, कुछ ऐसा ही अकबर ने भी रानी को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई ऐसी कोई चीज यहाँ भेजी थी, ऐसा सुनने में आता है?
4: अकबर की ओर से रानी दुर्गावती को लज्जित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे थे, और जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए।
3: जी।
4: तो एक बड़ी प्रसिद्ध किंवदंती है कि रानी को ये जताने के लिए कि वो एक महिला है
3: जी।
4: और उसे घर के काम संभालने चाहिए, शासन नहीं, अकबर ने अपने दूत से रानी को एक चरखा भिजवाया, सूत काटने का चरखा
3: जी।
4: तो जिसका मतलब था कि तुम एक साधारण स्त्री हो, सूत काटो और अपना घर चलाओ, यहाँ क्या कर रही हो
3: जी।
4: तो रानी भी कोई किसी से कम तो थी नहीं।
3: बिल्कुल।
4: तो उनका मनोबल तोड़ना भी आसान नहीं था
3: जी।
4: तो अकबर ने उनको चरखा भेजा था, रानी ने उनको एक पिंजन भेजा
3: जी।
4: पिंजन मतलब होता है जो रुई काटने का एक सुई होती है।
3: अच्छा।
4: पिंजन। जिससे सूत बनाते हैं।
3: अच्छा।
4: तो जिसका अर्थ ये था कि अगर मेरा काम चरखा काटना है तो तुम्हारा काम रुई पिंजना है, रुई धुनना है, तो तुम अपना काम करो।
3: वाह भाई वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से लेकिन तनातनी और बढ़ती चली गई होगी।
4: हाँ, दोनों राज्यों के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। सेनापति आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के खूब कान भरे। इधर गोंड राज्य से मंत्री आधार कायस्थ युद्ध टालने का भरपूर प्रयास करते रहे, किंतु आसफ खान रीवा राज्य को जीत चुका था जो कि गढ़ा राज्य की सीमा पर था। यानी कि आसफ खान गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर घात लगा के बैठ गया था। तो जल्दी ही इसका परिणाम हमको युद्ध के रूप में देखने को मिलने ही वाला था।
3: मतलब दुश्मन बिल्कुल किले के बाहर आ ही चुका था लगभग, और अब कभी भी युद्ध का बिगुल यहाँ पर फूंका जा सकता था मुगलों की ओर से।
4: जी हाँ।
3: चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और अब हम अपनी अगली कड़ी में ये जानेंगे कि क्या युद्ध का बिगुल फूंका गया, अब युद्ध होता है या नहीं, आपको बताएंगे हम अगली बार। पूजा जी हमारे साथ अगली बार भी बनी रहेंगी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में उपयोगी जानकारियां दे रही हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को, हमारी जानकारी के भंडार को बढ़ा रही हैं। तो श्रोताओं बने रहिएगा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। मैं संदीप शर्मा आपसे आज इजाजत लेता हूं। आप सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: सानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैं हूं शिवानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
2: नमस्कार शिवानी जी।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
2: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं।
1: जी,
2: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील कर
1: लाइट फील होगा। हाँ।
2: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का, अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया, हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना, कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
1: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
1: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेस की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
2: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए, ये छुट्टियों से हमने अभी ये बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड और ऑलरेडी हम इसको 20 डेज तक कम्प्लीट कर चुके हैं उनके साथ में। जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे वो मेरे चैम्बर में आते हैं वो मेरे पास 2 घंटे के लिए होते हैं, तो उस 2 घंटे में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 आज तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, बट ऑब्वियस आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ
3: चॉइस नहीं
2: तो होती इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप एक घंटा दो घंटा हाँ। तीन घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम। सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है, हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे। एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ, बच्चे अपना क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में हैं, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ चोरी चले

0: जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। एकता सरीन जी, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी।
1: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीज होगी, बिकॉज आप इतने यूज्ड हो उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है। आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है। आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे, आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है। आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वाटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए। बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में, उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज। इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाएं स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड। कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है, किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं। और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा, ग्रेजुअली हम भी एज अ एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे।
0: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है। ऐसे आपने बताया कि सीनरी हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
1: बिल्कुल, इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ। बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है, बी द स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है, और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है। ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है। आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो, आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो, बी एट अ मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो, या इवन अपनी रील्स बना रहे हो, उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो। उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही है, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं। रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लीस्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम, ये बेस्ट टाइम है, वेकेशन एक बेस्ट टाइम है, मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को, जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहां पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के, बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
0: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दे कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहां पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती है? क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है, या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
1: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है, उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्ले वे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रैवल कर रही थी, उसे मेरा बेटा वाज नियरली 6-7 इयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने कॉमिक हाथ में लिया हुआ था, आसपास के बच्चे मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, तो मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये बेटा बहुत देर से बैठा हुआ है, उसे पढ़ ही रहा है वो, तो मैंने बोला वो पढ़ भी रहा है और साथ में उसकी मस्ती भी चल रही है। वो आपने देखा होगा उसने उसी कॉमिक बुक में कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको गेम्स साथ साथ में आप कर रहे होते हो, तो वो भी आप एक्टिविटीज भी आप साथ में कर रहे हो, उसके हाथ में पेंसिल बराबर चल रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड जिसमें हर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है, लूडो है, इवन आजकल चेस हम खेल सकते हैं, इवन क्रिकेट एज अ फैमिली गेम किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चे को बोला जाए क्योंकि आप कमेंट्री करो आज, तो आप उसको बड़ा मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो, लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके आज फैमिली टाइम है, तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं, एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम, हाइड एंड सीक कैन बी अ ग्रेट गेम, धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और उनके लेवल पे जाके की जा सकते हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ, स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी आज टुडे वॉज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई मेट अ फिल्म स्टार, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that,
0: okay.
1: And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke saath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spin-a yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns, and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
0: ओके ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को,
1: हम स्टोरी को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मतलब उस दिन बच्चा किचन में और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म को कितना भी गंदा कर दे, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर
0: रहे हैं,
1: दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच।
0: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स, कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में है, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, आप किताब पढ़िए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहां पे हम किताबों के बारे में, किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर। तो जब हम बच्चों को बोलते किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
1: देखिए किताबों से कनेक्ट करना, मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है। हम हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां क्योंकि आज आपने क्या पढ़ा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है,
0: जी
1: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं भगवद गीता
0: के,
1: तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें। एंड आई थिंक भगवदगीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ, रामायण इज अ मैनुअल। सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते, तो बच्चे आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन, तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है। है अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो, ओके रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर तो क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर, रामायण तो क्यों रामायण, तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है, तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत ईजिली कनेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
0: तू नहीं हो पाएगा,
1: रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग, आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठिए, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाए, बच्चा रीड करे जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए। आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख लीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, वॉइस राइट प्रोनंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा। और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर, बच्चा उसकी क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग, अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा।
0: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ। जहां तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए, मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या, मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं इतना समय आप किताबें पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे रहेंगे, मतलब हमारा किस तरीके से हम एक टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए हम बच्चों को बता पाए कि उनके लिए क्या सही है, कैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है, ताकि वो लोग भी इस चीज से ऊबे नहीं, बोर नहीं हो।
1: यहाँ मैं बोलूंगी कि हम उनका टाइम टेबल ना बनाएं, उनसे उनका टाइम टेबल बनवाएं।
0: ओके ओके।
1: हम उनको डिक्टेट करने वाले स्टेज में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो लोग काफी लॉन्ग ड्यूरेशन, मैं बोलूंगी कोविड टाइम से उसको यूज कर रहे हैं, सो अब हम उस कंडीशन से बाहर आ चुके हैं कि हम उनको डिक्टेट करें अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे है ना। हम उनको ना ऑपोजिट वे हम बात कर सकते हैं कि ओके मैं अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बना रही हूँ, बेटा आपको अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना है, आई एम प्लानिंग कि मैं 6 से 7 शाम को मोबाइल नहीं देखूंगी, आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, इट कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे, सो आप वहां पे चॉइसेस दे सकते हो, उससे बुलवाइए ओके उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या, या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या, या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में तो व्हाई नॉट आप डांसिंग भी जा सकते हो, सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ। जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है
0: जी।
1: अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा। द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड, तो आप उसको सकते हो कि ओके जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या, 1 हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं, बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 मैं कुछ और मोबाइल लेके बैठ रही हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे, सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू, लेट्स मॉनिटर ईच अदर।
0: ओके ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे। और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है। तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं?
1: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है, सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम 4 फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से, अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक गतिविधि प्रतिनिधियों से कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा
0: अच्छा।
1: कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा
0: राइट राइट।
1: इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है। उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती है, वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं। तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है, उसको लाइक्स दीजिए। आज यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल। सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा।
0: सही बात।
1: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए, किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए और बच्चा वो सीखेगा, घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले, क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही।
0: सही बात।
1: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मैरिटल काउंसलिंग आते हैं तो मैं बोलती हूँ एक दूसरे की तारीफ, आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट, हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो जस्ट ट्राई टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। बच्चा जो देखता है वो एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करता है। सो लेट्स हैव अ लाइकिंग फॉर ईच अदर, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो फैमिली में एक पॉजिटिव ऑरा देखेगा तो the things will go on।
0: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता सरीन जी, कि कितना जरूरी है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ करना। बच्चे भी उससे सीखते, उससे मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और कंपैशन भी पैदा होता है, एक एम्पैथी पैदा होती है जिससे बच्चों में सुधार आ जाता है। सो अब हमने किताबों की भी बातें की, मुझे आप बताइए आजकल जैसे कि जैसे ऑडियो बुक्स की आपने बात की जो कि अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर बच्चे चाहते कि नहीं हम जो है मोबाइल से ही पीडीएफ पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहे बच्चे?
1: देखिए मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है पीडीएफ वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली, और हम बिल्कुल बच्चों को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है, अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को। अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है, अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे, कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच हो जाए। तो अगर वो बढ़ती है, आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है, आपने ये तीन वर्ड्स उसमें से देखे हैं, तो हम उसको कैसे और अपनी उस विकैबुलरी को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में, इवन दैट विल हेल्प यू आउट एनरिच योर। तो तारीफ कीजिए, ओके आज आपने इस वर्ड का यूज किया, दैट्स वेरी नाइस, ये वर्ड आपने कौन सी बुक में पढ़ा था, तो बच्चा आपको बताएगा। इवन आप भी कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हो और आपको भी अंदाजा रहेगा।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे एक खेल जैसा माहौल भी शुरू हो जाता है जहाँ पे हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, क्या बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जब वो लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं? क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसका नोटिफिकेशंस थ्रू आउट वो देखता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा, क्योंकि वो उस चीज से हटके वो कुछ और नया कर रहा है और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है।
0: सो
1: बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, ये ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पर सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पर बैठना भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो ठीक है आज हम एक जगह पर बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट। या हम एक उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा, उससे भी वो गेम भी गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसमें भी हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को। तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो। पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आई से कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस दोनों में फर्क आएगा।
0: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाएं, क्या करें इस कंटेंट का। तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
1: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है।
0: हाँ।
1: अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोस थिंग्स मैटर, स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे।
0: ओके ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई और कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आज़ाद हिंद पर आई। तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी।
1: थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी।
0: थैंक यू सो मच, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेशम का रहस्य, इतालवी एकाधिकार को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश। 18वीं शताब्दी के उच्च स्तरीय फैशन की दुनिया में एक वस्तु में ऐसा रहस्य छिपा था जिसने लंदन के सबसे बड़े व्यापारियों को भी चकित कर दिया था। वह था थ्रोन सिल्क। जहां कच्चा रेशम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, वहीं ऑर्गेन्सिन विलासी कपड़ों के लिए आवश्यक मुड़ा हुआ ताना और धागा बनाने का रहस्य पूरी तरह से इटली के एकाधिकार में था। इटालियन अपनी जल शक्ति से चलने वाली मिलों की सुरक्षा बड़ी कड़ाई से करते थे, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पकड़ को तोड़ने के लिए एशिया की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी की योजना बेहद आधुनिक और साहसी थी। वे चीन और बंगाल से कच्चा रेशम आयात करेंगे और उसे इतालवी मानकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे। चीन के कैंटीन में सुपर कार्गो को सख्त निर्देश दिए गए थे कि रेशम को एक विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ रीलों पर लपेटा जाए, ताकि कई एकल धागों को मिलाकर एक ऐसा धागा बनाया जा सके जो इतालवी ट्विस्ट की नकल कर सके। लेकिन इस रहस्य की असली जड़ तकनीकी बदलाव में छिपी थी। 1755 में कंपनी ने बंगाल के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए कासिम बाजार में यूरोपीय मशीनें, जिनमें विशेष भट्टियां, तांबे के बेसिन और रीलें शामिल थीं, भेजी। हालांकि इस प्रयोग को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय कारीगरों ने यूरोपीय पद्धति को पूरी तरह से विदेशी और शारीरिक रूप से थका देने वाला पाया, क्योंकि इसमें पारंपरिक भारतीय तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक श्रम और ध्यान की आवश्यकता थी। यद्यपि मशीन से काता गया धागा असाधारण रूप से एक समान था, लेकिन इसका उत्पादन करना काफी महंगा साबित हुआ। तकनीकों के इस टकराव ने यह साबित कर दिया कि बेहतरीन रेशम का रहस्य केवल मशीनों में नहीं, बल्कि करघे के पीछे बैठे लोगों की शारीरिक निपुणता और उनकी ऐतिहासिक परंपराओं में भी छिपा था।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: भारत की पहचान केवल उसके इतिहास की प्राचीनता से नहीं होती। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति, उन महापुरुषों में निहित होती है जो समय के प्रवाह में उसकी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। कुछ व्यक्तित्व तलवार से इतिहास रचते हैं, कुछ नेतृत्व से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और कुछ अपने चिंतन तथा शोध से एक पूरी सभ्यता को स्वयं अपने बारे में सोचने का नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम ऐसे ही मनीषी की जीवन यात्रा को जानेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को केवल अध्ययन का विषय नहीं माना, बल्कि उसे भारत की जीवित चेतना के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को नए अर्थ दिए, संग्रहालयों में सुरक्षित मूर्तियों को इतिहास की भाषा बना दिया। भारतीय कला, साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति के बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान की नई दिशाएं खोल दीं। आज के हमारे भारत विभूति हैं वासुदेव शरण अग्रवाल।
4: उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक भारत के बौद्धिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ओर देश स्वतंत्रता की आकांक्षा से प्रेरित हो रहा था, तो दूसरी ओर भारतीय विद्वानों के मन में अपने अतीत को समझने की तीव्र जिज्ञासा भी जन्म ले रही थी। लंबे समय तक भारत के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन विदेशी दृष्टि से किया जाता रहा था। भारतीय स्रोतों को सीमित महत्व दिया जाता था और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अक्सर केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित करके देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ भारतीय विद्वानों ने यह अनुभव किया कि यदि भारत को सही अर्थों में समझना है तो उसके अपने ग्रंथों, उसकी भाषाओं, उसकी कला, उसके पुरातात्विक अवशेषों और उसकी लोक परंपराओं को एक साथ पढ़ना होगा। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं होता, वो समाज की स्मृति होता है। संस्कृति उसका आत्मबोध होती है और साहित्य उस आत्मा की अभिव्यक्ति। इन्हीं विचारों के बीच एक ऐसा युवा विद्वान उभर कर सामने आया जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने के लिए समर्पित कर दिया।
3: उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार शिक्षित था, भारतीय संस्कारों से समृद्ध था, घर का वातावरण अध्ययन और अनुशासन से भरा हुआ था। यही वातावरण उस बालक के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल में जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते थे, उन्हें इतिहास की घटनाएं आकर्षित करती थीं। प्राचीन कथाएं उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती थीं। संस्कृत भाषा की संरचना उन्हें आश्चर्यचकित करती थी और भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ उन्हें लगातार अपनी ओर खींचते थे। कहा जाता है कि प्रत्येक महान शोधकर्ता के भीतर एक जिज्ञासु बालक हमेशा जीवित रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के भीतर भी वही जिज्ञासा जीवन भर बनी रही। वे किसी तथ्य को केवल स्वीकार नहीं करते थे, उसके पीछे छिपे प्रमाणों को भी खोजते थे, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते थे और फिर उसे व्यापक भारतीय परिपेक्ष में रखकर देखते थे।
4: श्रोताओं, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका अध्ययन निरंतर आगे बढ़ता गया। विद्यार्थी जीवन में ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी रुचि सामान्य विषयों की अपेक्षा भारतीय इतिहास, संस्कृत साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन में अधिक है। उस समय देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन का नया वातावरण बन रहा था। नई पीढ़ी अपने अतीत को आधुनिक शोध पद्धतियों के माध्यम से समझना चाहती थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इसी दिशा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान इतिहास, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। बाद में शोध कार्य के लिए उन्होंने ऐसा विषय चुना जिसने उनके संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। महर्षि पाणिनि, भारतीय व्याकरण के महान आचार्य, सदियों से विद्वान, उनकी अष्टाध्यायी का अध्ययन भाषा विज्ञान के महान ग्रंथ के रूप में करते आए थे, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसमें कुछ और देखा। उन्हें लगा कि ग्रंथ केवल व्याकरण का नियम संग्रह नहीं है, इसके भीतर उस समय के भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी सुरक्षित है। और यहीं से आरंभ हुई उनके जीवन की वो शोध यात्रा जिसने आगे चलकर भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक नया आधार प्रदान किया।
3: उस समय अधिकांश लोगों की दृष्टि में अष्टाध्यायी एक महान व्याकरण ग्रंथ थी, भाषा के नियमों को समझने का अनुपम आधार। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसे केवल व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसके प्रत्येक सूत्र के पीछे छिपे जीवन को पहचानने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि किसी ग्रंथ में नगरों का उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख है, व्यवसायों का उल्लेख है, शिक्षा, कृषि, शिल्प, उत्सव और सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है, तो वो केवल भाषा का ग्रंथ नहीं रह जाता, वो अपने समय का सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन जाता है। इसी दृष्टि ने उनके शोध को एक नई दिशा दी। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों में बिखरी हुई सूचनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ किया, एक एक संदर्भ को अन्य प्राचीन स्रोतों से जोड़कर देखा, जहां आवश्यकता हुई वहां पुरातात्विक प्रमाणों का सहारा लिया, साहित्य, इतिहास और पुरातत्व को एक साथ रखकर उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन का ऐसा स्वरूप सामने रखा जो उस समय तक बहुत कम देखने को मिला था।
4: जी हाँ, हालांकि ये कार्य सरल नहीं था। इसके लिए केवल संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इतिहास की समझ भी चाहिए थी, भारतीय समाज की संरचना का अध्ययन भी आवश्यक था, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों और कला के इतिहास का भी गहरा ज्ञान अपेक्षित था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सभी क्षेत्रों का गंभीर अध्ययन किया और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी विद्वान के रूप में विकसित होता गया। उनका विश्वास था कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उपलब्ध प्रमाणों का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अनुमान के स्थान पर साक्ष्य और कल्पना के स्थान पर तर्क को महत्व देना चाहिए। यही कारण था कि उनके शोध को विद्वानों ने अत्यंत विश्वसनीय माना। उनके लेखन में भावनाएं थीं, लेकिन भावुकता नहीं थी। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन तथ्यों से समझौता नहीं था।
3: उनके अध्ययन का दायरा लगातार विस्तृत होता गया। अब उनकी रुचि केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, वे प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करने लगे, मंदिरों की स्थापत्य परंपरा को समझने लगे, सिक्कों, अभिलेखों और पुरावशेषों को ध्यान से देखने लगे। उनके लिए ये सभी वस्तुएं इतिहास की मौन साक्षी थीं। यदि इन्हें सही दृष्टि से पढ़ा जाए तो ये अपने समय की अनेक अनकही बातें बता सकती थीं। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय कला को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं देखा, उनके लिए प्रत्येक प्रतिमा अपने समय के समाज का परिचय थी। किसी मूर्ति की मुद्रा, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी निर्माण शैली, इन सब के भीतर उस युग की सांस्कृतिक चेतना छिपी हुई थी। वे इन संकेतों को पढ़ते थे और फिर उन्हें भारतीय इतिहास की व्यापक धारा से जोड़कर देखते थे।
4: धीरे धीरे विद्वानों के बीच उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि ये युवा शोधकर्ता केवल नई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई पद्धति विकसित कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इतिहास को अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता। साहित्य, कला, पुरातत्व, भाषा और समाज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक को समझना है तो दूसरे को भी साथ लेकर चलना होगा। यही समग्र दृष्टि आगे चलकर उनके संपूर्ण लेखन की पहचान बनी। आने वाले वर्षों में उन्होंने जिन संस्थानों में कार्य किया, जिन ग्रंथों की रचना की और जिन शोधों का नेतृत्व किया, उन सब में यही विचार स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की संस्कृति एक अखंड परंपरा है। उसे समझने के लिए केवल अतीत को देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके निरंतर प्रवाह को पहचानना भी आवश्यक है।
3: लेकिन ये तो उनके जीवन की केवल शुरुआत थी। अभी उन्हें संग्रहालयों की दुनिया में प्रवेश करना था, भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन को नई दिशा देनी थी, देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और अपने शोध तथा लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलानी थी। यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वो अध्याय जिसने वासुदेव शरण अग्रवाल को केवल एक विद्वान नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सजग प्रहरी के रूप में स्थापित कर दिया।
4: बहुत से लोग उन्हें केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मानते हैं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक थी। वे मानते थे कि संग्रहालय केवल अतीत को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है, वे ऐसी जीवंत पाठशालाएं हैं जहां बिना किसी शब्द के इतिहास स्वयं बोलता है, जहां पत्थर भी स्वयं की कहानी कहते हैं और जहां संस्कृति केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। यही सोच उन्हें संग्रहालय विज्ञान की ओर ले गई। उनके लिए ये केवल एक नया कार्यक्षेत्र नहीं था, ये भारतीय संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप में समझने का अवसर था।
3: सन 1931 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मथुरा संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। उस समय मथुरा संग्रहालय देश के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिना जाता था। यहाँ कुषाण, शुंग, गुप्त और अन्य अनेक कालों की दुर्लभ मूर्तियां सुरक्षित थीं। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में मथुरा शैली का विशेष स्थान था, लेकिन उसके व्यवस्थित अध्ययन और सांस्कृतिक विश्लेषण की दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना शेष था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने संग्रहालय की प्रत्येक दीर्घा का अध्ययन किया, प्रत्येक प्रतिमा को ध्यान से देखा, उसके निर्माण काल, उसकी शैली, उसके प्रतीकों और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास किया। उनके लिए ये केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, ये भारतीय कला के माध्यम से भारतीय सभ्यता को पढ़ने का अवसर था।
4: श्रोताओं, मथुरा की धरती सदियों से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बौद्ध, जैन और वैष्णव परंपराओं की असंख्य कलाकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन धरोहरों को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं किस प्रकार एक ही भूमि पर विकसित हुईं और कैसे उन्होंने भारतीय कला को समृद्ध बनाया।
3: लगभग एक दशक तक मथुरा में कार्य करने के बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान केवल एक संग्रहालय अधिकारी के रूप में नहीं रही। वे भारतीय कला और संस्कृति के ऐसे विद्वान बन चुके थे जिनकी दृष्टि इतिहास के अनेक स्रोतों को एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। उनके शोध ने ये सिद्ध कर दिया था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साहित्य, पुरातत्व, कला और इतिहास को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यहीं से उनके जीवन की यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ी। अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां निभानी थीं, भारतीय संग्रहालयों के विकास में नई भूमिका निभानी थी और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संस्थानों को नई दिशा देनी थी।
4: सन 1940 में वासुदेव शरण अग्रवाल को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय का दायित्व सौंपा गया। ये उनके ज्ञान, अनुभव और कार्य कुशलता की सार्वजनिक स्वीकृति थी। मथुरा में किए गए उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल संग्रहालयों का संचालन करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की असाधारण क्षमता रखते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद भी उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संग्रहालय को केवल वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं माना, बल्कि उसे शिक्षा और शोध का सक्रिय केंद्र बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी संग्रहालय का वास्तविक महत्व उसके संग्रह की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो समाज को अपने इतिहास से कितना जोड़ पाता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रतिमा को देखकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगे, यदि कोई शोधार्थी किसी अभिलेख से इतिहास की नई कड़ी खोज ले और यदि कोई सामान्य नागरिक अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व महसूस करे, तभी संग्रहालय अपना उद्देश्य पूरा करता है।
3: इसी अवधि में उनका लेखन भी निरंतर आगे बढ़ता रहा। वे जहां एक ओर संग्रहालयों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर गंभीर शोध भी कर रहे थे। उन्होंने अनेक शोध लेख लिखे, व्याख्यान दिए और प्राचीन भारतीय जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनके अध्ययन का दायरा इतना व्यापक था कि इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला और संस्कृति के विद्यार्थी समान रूप से उनके कार्यों से लाभान्वित होने लगे।
4: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब वे दिल्ली से जुड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यों में सक्रिय हुए। स्वतंत्र भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में देश को ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी जो भारतीय विरासत को केवल सुरक्षित ही न रखें, बल्कि उसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी करें। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों के विकास, पुरावशेषों के संरक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि भारतीय धरोहरों को केवल अतीत की वस्तुएं मानकर संग्रहित कर लेना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना और समाज तक उनका महत्व पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर भारतीय संग्रहालय आंदोलन की आधारशिला बनी।
3: वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व जितना गंभीर था उतना ही विनम्र भी था। वे मानते थे कि शोधकर्ता का पहला गुण जिज्ञासा है और दूसरा गुण धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी गंभीर अध्ययन संभव नहीं है। वे अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को हमेशा प्रमाण आधारित अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उनका विश्वास था कि इतिहास केवल कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए प्रत्येक तथ्य की सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक होती है। यही कारण था कि उनके साथ कार्य करने वाले अनेक युवा शोधार्थी आगे चलकर भारतीय इतिहास, कला और पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान बने। वे केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि शोध की संस्कृति विकसित करने वाले मार्गदर्शक भी थे।
4: धीरे धीरे वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन का पर्याय बनने लगा। देश के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और शोध संस्थानों में उनके कार्यों का सम्मान किया जाने लगा। लेकिन उनके लिए ये सब व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थी, वे मानते थे कि यदि उनके प्रयासों से भारतीय समाज अपनी संस्कृति को थोड़ा और गहराई से समझ सके तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अब उनके जीवन की यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाली थी जहां उनका लेखन भारतीय सांस्कृतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर बन गया और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गए।
3: वासुदेव शरण अग्रवाल मानते थे कि यदि शोध केवल पुस्तकों और अभिलेखों तक सीमित रह जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो समाज तक पहुंचे, नई पीढ़ी को प्रेरित करे और लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। यही कारण था कि उन्होंने अपने शोध को केवल विद्वानों के बीच सीमित नहीं रखा, उन्होंने ऐसी भाषा और ऐसी शैली अपनाई जिसमें गंभीर विषय भी सहज रूप से समझे जा सकें। उनके लेखन में गहन अध्ययन का आधार था लेकिन प्रस्तुति में सरलता थी। वे कठिन विषयों को भी इस प्रकार समझते थे कि पाठक केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करता था बल्कि उस विषय के साथ आत्मीय रूप से जुड़ भी जाता था। यही विशेषता उन्हें अपने समय के अनेक विद्वानों से अलग पहचान देती है।
4: उनकी सबसे महत्वपूर्ण विद्वत उपलब्धियों में महर्षि पाणिनि पर किया गया शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्षों के अध्ययन और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी केवल संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, उसके भीतर तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यापार, प्रशासन, शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य संकेत सुरक्षित हैं। इन संकेतों को एक सूत्र में जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य था लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने धैर्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर इसे संभव बनाया। बाद में यही शोध एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ और भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस कृति ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों का अध्ययन आधुनिक शोध पद्धति के साथ किया जाए तो इतिहास के अनेक नए आयाम सामने आ सकते हैं।
3: पाणिनि के अतिरिक्त उन्होंने महाभारत, पुराण, संस्कृत साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर भी गंभीर अध्ययन किया। उनके लिए ये ग्रंथ केवल धार्मिक या साहित्यिक कृतियां नहीं थे, वे इन्हें भारतीय समाज के विकास की जीवंत स्मृतियों के रूप में देखते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि कला को उसके सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर पढ़ा जाए तो वो इतिहास की अनेक अनसुलझी कड़ियों को स्पष्ट कर सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन आज भी कला इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी माने जाते हैं।
4: वासुदेव शरण अग्रवाल केवल एक शोधकर्ता या संग्रहालय विशेषज्ञ नहीं थे, वे एक ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने ज्ञान को जीवंत परंपरा के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर याद करने की अपेक्षा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जिज्ञासा ही प्रत्येक शोध का पहला चरण होती है और जब तक मन में प्रश्न जीवित रहते हैं तब तक ज्ञान की यात्रा भी आगे बढ़ती रहती है। अध्यापन के दौरान वे अपने विद्यार्थियों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते थे, वे उन्हें प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक स्रोत का अपना महत्व है, यदि इन सभी स्रोतों को एक साथ पढ़ा जाए तभी इतिहास की संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अपने लंबे अध्ययन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। भारतीय कला संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य और इतिहास पर लिखी गई उनकी पुस्तकों ने शोध की नई पीढ़ी को दिशा प्रदान की। भारतीय कला और संस्कृति पर कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए उनके अध्ययन आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। समय बीतने के साथ अनेक नई शोध पद्धतियां विकसित हुईं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा स्थापित प्रमाण आधारित अध्ययन की परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
3: उनकी विद्वत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित दायित्व सौंपे गए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और शोध मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जाता था। वे जहां भी जाते वहां केवल व्याख्यान नहीं देते थे, बल्कि लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की नई जिज्ञासा भी जगाते थे। भारतीय संस्कृति पर उनके मौलिक लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक लेखक के रूप में उनकी उपलब्धि नहीं था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में उनके असाधारण योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति भी था। ये उस साधना का सम्मान था जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का ध्येय बना लिया था। समय के साथ वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक ऐसे विद्वान के रूप में स्थापित हो चुका था जिसकी पहचान किसी एक विषय तक सीमित नहीं थी। वो इतिहासकार भी थे, कला मर्मज्ञ भी, पुरातत्व के गंभीर अध्येता भी और भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याता भी जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का सतत प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में ये सिद्ध किया कि संस्कृति केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वो समाज की जीवित चेतना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहती है।
4: उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए केवल अतीत का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसे वर्तमान जीवन में भी अनुभव करना आवश्यक है। वे अक्सर इस बात पर बल देते थे कि हमारी परंपराएं केवल ग्रंथों में सुरक्षित नहीं है, वे हमारे उत्सवों में है, वे हमारे लोकगीतों में है, हमारी भाषाओं में है, हमारे शिल्प में है और हमारे दैनिक जीवन की अनेक छोटी छोटी परंपराओं में भी जीवित हैं। यदि हम इन्हें पहचान सकें तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता को सहज रूप से समझ सकते हैं।
3: विद्वानों का मानना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक समन्वित दृष्टि प्रदान की। उन्होंने ये स्थापित किया कि जब तक इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला, भाषा और लोक परंपराओं का संयुक्त अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय सभ्यता की व्यापकता को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है।
4: दोस्तों, ज्ञान के प्रति उनकी साधना जीवन के अंतिम वर्षों तक चलती रही। उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि अब सीखने के लिए कुछ शेष नहीं है। प्रत्येक नया प्रमाण, प्रत्येक नया शोध और प्रत्येक नई खोज उन्हें उतनी ही उत्सुकता से आकर्षित करती थी जितनी उनके विद्यार्थी जीवन में करती थी। शायद यही किसी सच्चे शोधकर्ता की पहचान भी होती है कि वो जीवन भर स्वयं को विद्यार्थी मानकर ही ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन इसी निरंतर साधना का उदाहरण है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि यदि अध्ययन के साथ समर्पण जुड़ जाए और ज्ञान के साथ विनम्रता बनी रहे तो व्यक्ति केवल एक सफल विद्वान ही नहीं बनता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा भी बन जाता है।
3: सन 1966 में वासुदेव शरण अग्रवाल का देहावसान हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय सांस्कृतिक जगत ने एक ऐसे मनीषी को खो दिया जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति की साधना के लिए समर्पित कर दिया था। किंतु कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहते, वे अपने विचारों, अपने लेखन और अपने कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के बीच निरंतर जीवित रहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल भी ऐसे ही युगदृष्टा विद्वान थे जिनकी बौद्धिक विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को दिशा प्रदान कर रही है। आज जब भारतीय इतिहास, कला, पुरातत्व और संस्कृति पर गंभीर अनुसंधान की बात होती है, तब उनके कार्यों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से किया जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पद्धति, प्रमाणों के प्रति उनका आग्रह और भारतीय दृष्टि से संस्कृति को समझने का उनका प्रयास आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
4: भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनका योगदान केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। संग्रहालयों में उनके द्वारा विकसित की गई कार्य प्रणालियां भारतीय कला के प्रति उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की उनकी पद्धति आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि किसी राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माण करना है तो उसे अपने अतीत को सम्मान पूर्वक समझना होगा। इतिहास केवल स्मरण करने का विषय नहीं है, उससे सीखने का विषय भी है।
3: वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने पूरे जीवन से यही संदेश दिया कि जो समाज अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी कला, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को समझता है, वही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ज्ञान की साधना कभी समाप्त नहीं होती। जिज्ञासा, अध्ययन, विनम्रता और सत्य की खोज, यही किसी भी विद्वान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इन्हीं मूल्यों के कारण वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के उन अमर अध्येताओं में गिने जाते हैं जिनका योगदान समय बीतने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होता चला गया।
4: तो दोस्तों, भारत विभूति के आज के संक में हमने जाना एक ऐसे विलक्षण विद्वान को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को देखने की दृष्टि बदल दी, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों, कला, पुरातत्व, संग्रहालयों और लोक परंपराओं को एक सूत्र में जोड़कर ये बताया कि भारत की सभ्यता एक अखंड सांस्कृतिक यात्रा है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ज्ञान की सबसे बड़ी सार्थकता तभी है जब वो समाज को उसकी जड़ों से जोड़ सके और राष्ट्र के आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना सके। आइए भारत की इस महान विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक चेतना के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
3: इसी संदेश के साथ हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के साथ। उससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन प्रमिला मुंशी दिवाकर
4: और मैं संदीप शर्मा,
3: लेखन पुष्पक श्रीवास्तव का। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा। परिक्रमा में आज बात होगी ब्रज के रंग की, तो वहीं बात होगी पीएम श्री केवी और 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान की। और जो बातें आज हम करेंगे, हम वो बात करेंगे दुष्यंत कुमार संग्रहालय की, हम बात करेंगे 200 साल की फोटोग्राफी की, और हम बात करेंगे बीवी कारंत की। वहीं हम बात करेंगे कदम ताल से कथक सिखाया, भावों से संस्कृति को जोड़ा। तो आइए सुनते हैं आज की परिक्रमा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित 7 दिवसीय रासलीला समारोह के 4थे दिन मंगलवार को ब्रज की दिव्य संस्कृति और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मथुरा के माधव आचार्य के निर्देशन में ब्रज के पारंपरिक कलाकारों ने अपनी लोक कला शैली से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। शुरुआत श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन प्रसंग से हुई। वृंदावन की पावन भूमि पर जीव और परमात्मा के शाश्वत अनुराग के इस दृश्य को कलाकारों ने जीवंत कर दिया।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक में विद्यालय स्तरीय 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC 2026-27 का आयोजन बेहद उत्साह के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम पर्यावरण और स्थिरता के लिए जीवन शैली मुख्य विषय पर केंद्रित था। इसके तहत छात्रों ने 5 प्रमुख उप विषयों अपशिष्ट प्रबंधन के लिए R5, ऊर्जा के लिए E4, जल संचयन व संरक्षण, भोजन कृषि और स्वास्थ्य तथा स्थिरता के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए।

दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के राज्य सदन में स्मरण दुष्यंत कुमार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध गजलों हो गई है पीर पर्वत सी व मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं का सास्वर गायन किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों ने कमलेश्वर द्वारा संपादित सारिका के विशेषांक से शानी धर्मवीर भारती और मेहरुनिसा परवेज के आलेखों व पत्रों का पाठ किया। दीपक कपूर ने दुष्यंत कुमार और शानी की शाम की बैठकों की पुरानी यादें साझा की। आलोक त्यागी ने कहा कि हिम्मत और बेबाकी उनके पिता के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता थी। मुख्य अतिथि राजेश बादल ने युवाओं द्वारा किए गए इस अभिनव प्रयोग की सराहना की।

फोटोग्राफी के 200 साल पूरे होने के मौके पर आर्यांस फ्रांसिस द भोपाल की ओर से मंगलवार को द लिगेसी ऑफ फ्लाइट 200 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुरुआत हुई। इसमें मध्य प्रदेश के 7 फोटोग्राफरों के लेंस से कैद भारतीय संस्कृति, विरासत और जीवन के विविध रंग देखने को मिले। प्रदर्शनी को सीनियर फोटोग्राफर प्रकाश हतवलने ने क्यूरेट किया। इनमें प्राकृतिक नज़ारों के साथ देश की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत, खेल, भगोरिया समुदाय का रंगीन लेकिन रोजमर्रा का जीवन और आध्यात्मिकता के अलग अलग पहलू नजर आते हैं। भारतीय शास्त्रीय कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्पीक मैके की ओर से आयोजित 4 दिवसीय कथक प्रस्तुति श्रृंखला की शुरुआत मंगलवार को हुई। कथक कलाकार पंडित राजेंद्र गंगानी ने भेल स्थित एक निजी कॉलेज में पहली प्रस्तुति दी। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कथक की तकनीक, भाव और भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया। पंडित गंगानी ने नृत्य के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न रूपों और भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। चिल्ड्रंस थिएटर एकेडमी की ओर से रंगमंडल के पूर्व निदेशक पद्मश्री बीवी कारंत को स्मृति में मंगलवार को अर्ध प्रेक्षागृह में नाट्य संगीत हुआ। अकादमी के विभिन्न नाटकों के नाट्य संगीत को प्रस्तुत किया गया। इनमें दूध का गिलास, सुदामा, मुर्गे का ब्याह, पंचरात्र, भूगोल

वीरजी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में यानी चतुर्थ सर्ग के अंतिम भाग में हमने कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा को महसूस किया। जीवन कितने ही संघर्षों से क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन मनुष्य को अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिनकर जी का यह रथ सिर्फ कर्ण के जीवन की महानता का रथ नहीं हांक रहा, यह हमें ऐसा मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करता है जो कभी कितनी भी विषम परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मनुष्यत्व और मानवता के लिए अपना हृदय विशाल रखे। दिनकर जी का विश्वास था कि संसार को केवल शस्त्र नहीं बदलते, विचार भी बदलते हैं। इसलिए वे कलम को भी उतना ही शक्तिशाली मानते थे जितनी तलवार। आइए उनके इसी ओजस्वी विश्वास को उनकी अमर पंक्तियों में सुनते हैं।
2: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार?
1: मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण के इस प्रसंग के बाद हमने राष्ट्रकवि दिनकर जी की कलम या तलवार जैसी कविता क्यों चुनी। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्ण ने अपने जीवन से जो आदर्श स्थापित किए, दिनकर जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागृत विचार हैं। एक ने जीवन से संदेश दिया, दूसरे ने उस संदेश को शब्दों का अमर रूप दिया। यही कारण है कि ये कविता इस प्रसंग के बाद और भी सार्थक होती है। कर्ण ने छल के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा और दिनकर जी ने अन्याय के सामने सत्य लिखना नहीं छोड़ा। कर्ण के हाथ में धनुष था, दिनकर जी के हाथ में कलम, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य के भीतर साहस, स्वाभिमान और धर्म की ज्योति जलाए रखना। इसलिए यह कविता केवल एक रचना नहीं, बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व को दिनकर जी की लेखनी से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आइए तो अब चलते हैं उस सर्ग की ओर जहां रण तैयार है, जीवन का, स्वार्थों का, प्रेम का, ममता का और प्रतिज्ञाओं का। चलते हैं रश्मि रथी के पंचम सर्ग की ओर। माँ से आरंभ हुआ यह सर्ग, ममता का अमर विधान, आंसू बनकर बोल उठी है वर्षों से मौन जुबान। दिनकर ने शब्द नहीं लिखे, धड़कनों का इतिहास लिखा, पंचम सर्ग में माँ के मन का सबसे गहरा विश्वास लिखा।
1: माँ शब्द से आरंभ हुआ यह करुणा का दिव्य प्रसंग, जहां वात्सल्य स्वयं रचता है नियति का अमिट सत्संग। दिनकर की लेखनी में आज जननी का तप जाग उठा, युग युग से संचित मात्र हृदय का मौन विलाप बोल उठा, मौन विलाप बोल उठा। माँ। ये केवल एक संबोधन नहीं, सृष्टि का सबसे पहला संगीत है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो संसार की भाषा नहीं जानता, किंतु माँ की धड़कनों की भाषा पहचानता है। उसकी आंखें खुलने से पहले वो माँ की ममता में संसार का पहला स्पर्श पा चुका होता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक घर में स्वयं नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने माँ की रचना की। माँ केवल जीवन नहीं देती, वो जीवन को अर्थ देती है। इसके आंचल में सुरक्षा है, उसकी आंखों में आशीर्वाद है और उसके मौन में वो करुणा है जिसे शब्द कभी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु रश्मि रथी के कर्ण के जीवन में माँ एक ऐसी अधूरी कथा है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आंसुओं से लिखा गया है। कर्ण ने जन्म तो माँ की कोख से लिया, पर बचपन उसकी गोद में नहीं बीता। उसने माँ का दूध नहीं मांगा, माँ की उंगली पकड़कर चलना नहीं सीखा, माँ की लोरी सुनकर सोना नहीं जाना। उसके जीवन में माँ एक स्मृति नहीं, एक रिक्तता थी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे वर्षों तक नहीं मिला। संसार उसे सूत पुत्र कहकर पुकारता रहा, पर उसके भीतर कहीं एक बालक हर दिन ये पूछता रहा, मेरी माँ कौन है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य अपने नाम के बिना जी सकता है, अपने वैभव के बिना जी सकता है, पर अपनी माँ की पहचान के बिना उसका अस्तित्व भीतर से कहीं अधूरा रह जाता है। मानो कर्ण कह रहे हैं,
3: हे मौन बहती गंगे और हे मेरे ताप सूर्य देव, तनिक ठहरो और देखो, आज इस तट पर इतिहास का सबसे बड़ा कौतुक रचा गया है, जिसे संसार ने केवल सूत पुत्र कहकर पुकारा, जिसके माथे पर हर कदम पर धुतकार का तिलक लगाया गया। आज वही कर्ण स्वयं अपने ही वजूद के सामने एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है, एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है।
2: ममता और धर्म जीवन के दो ऐसे निष्ठुर किनारे जो जब आमने सामने आ खड़े हों तो बड़े बड़े पाषाण हृदय भी भीतर तक कांप उठते हैं। आज नियति के इसी जलते हुए दोराहे पर विकल, व्याकुल और असहाय सी खड़ी है माँ कुंती। वे आज केवल पांडवों की राजमाता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी विवश जननी हैं जिनके सीने में आंसुओं का एक समंदर और बरसों से दबा एक मौन तूफान आज बांध तोड़कर उमड़ रहा है। उनका अंतस अपने ही बोए बबूल के कांटों से लहूलुहान है और आंखें उस आदि पुत्र की एक झलक पाने को तरस रही है। आइए हम भी पूरे मनोयोग से सुनते हैं कि आज इतिहास के इस सबसे शांत और स्तब्ध क्षण में माँ कुंती के हृदय की वह गहरी वेदना हमसे क्या कहना चाहती है।
4: समय बीत गया, ऋतुएं बदलती रही, राजमहल बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा, किंतु एक माँ का हृदय कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे भीतर एक रिक्तता वर्षों से मौन बैठी है। जब भी किसी माँ को अपने पुत्र को गले लगाते देखती हूँ तो मेरी आत्मा मुझसे पूछती है, क्या ममता भी कभी अपराधिनी हो सकती है? शायद संसार मेरे मौन को नहीं समझ पाया, पर एक माँ अपने ही हृदय के न्यायालय से कभी मुक्त नहीं हो सकती। किंतु आज मैं स्वयं से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या मैं सचमुच माँ हूँ जिसने अपनी ही कोख के अंश को जन्म लेते ही अपनी बाहों से दूर कर दिया? क्या उसे माँ कहलाने का अधिकार है जिस शिशु को अपनी छाती से लगाकर जीवन देना था, उसे मैंने नदी की लहरों के भरोसे छोड़ दिया, जिसकी पहली मुस्कान मेरी आंखों में बसनी थी, जिसके पहले आंसू मेरे आंचल में सूखने थे, उसका संपूर्ण बचपन मेरी ममता से वंचित रह गया। संसार ने उसे अनेक नाम दिए, पर वो अभागा एक नाम कभी न सुन सका, जिसे सुनने का अधिकार उसे जन्म से प्राप्त था। पुत्र, पुत्र।
2: ममता का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, वह समय के साथ वृद्ध नहीं होती, परिस्थितियों से हारती नहीं और दूरी से कम नहीं होती। यदि कभी भूल हो भी जाए, यदि कभी जीवन किसी विवशता के कारण माँ को उसकी संतान से दूर भी कर दे, तब भी उसके हृदय में प्रेम का स्रोत सूखता नहीं। कुंती का जीवन इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है। वर्षों तक मौन रहने वाली माँ जब कर्ण के सामने आने का साहस जुटाती है, तब वह किसी महारानी के रूप में नहीं आती, वह केवल एक अपराध बोध से भरी माँ होती है। उस क्षण राजसत्ता, कुल, प्रतिष्ठा और इतिहास सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, केवल एक माँ का कांपता हुआ हृदय शेष रह जाता है, जो अपने खोए हुए पुत्र को एक बार, सिर्फ एक बार पुत्र कहकर पुकारना चाहता है। श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं दिनकर जी की इस महान काव्य गाथा रश्मि रथी से पंचम सर्ग में लिपटे कर्ण और माता कुंती के प्रेम, करुणा, दुख, विषाद से भरा ये काव्य पाठ।
1: आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे।
2: सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग घटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा।
4: एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिल जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं, लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू।
2: चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से, सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेशी संभ्रमयी चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी, आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई, दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर, लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे, राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए, तन में रविका प्रीतम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था, मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर, अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले, यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की, अथवा अगाध कंचन में कहीं नहा कर, मैं नाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर, सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।
1: श्रोताओं, ये दृश्य केवल महाभारत की कथा नहीं, एक मां के हृदय की गहन वेदना का चित्र है। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, परंतु कुंती का मन मानो पहले ही रणभूमि बन गया है। एक ही कोख के लाल, एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। सोचिए उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी, जिसकी ममता दो दिशाओं में खिंच रही है। दिनकर जी ने इस क्षण को इतनी संवेदनशीलता से उकेरा है कि लगता है मानो कुंती के नयन केवल आंसू नहीं, वर्षों से दबा हुआ मातृत्व बहा रही हूं।
2: गंगा का वह एकांत तट, जहां सांध्य बेला की मध्यम मध्यम लाली धीरे धीरे अंधकार की गोद में सिमट रही है, लहरों का एक शांत मौन संगीत गूंज रहा है, और उस निस्तब्धता के बीच सूर्य पुत्र कर्ण अचल खड़ा अस्ताचल की ओर बढ़ते अपने तात सूर्य देव को निहार रहा है। वह इस बात से सर्वथा अनजान है कि प्रकृति आज उसके जीवन का सबसे बड़ा कौतुक रचने जा रही है। तभी दूर वृक्षों की ओट से पत्तों की सरसराहट के पीछे छिपकर राजमाता कुंती अपने उस आदि पुत्र को निहार रही हैं। बरसों पहले जिस नन्हे सुकुमार को लोक लाज के भय से भारी मन से गंगा की लहरों में बहा दिया था, आज उसे एक महायोद्धा के रूप में सामने देखकर उनका मात्र हृदय छटपटा उठता है। उस क्षण एक माँ की आंखें केवल उसे देखती नहीं हैं, वे तो अपने भीतर उमड़ते सदियों के अकेलेपन, अपराध बोध और रोके हुए वात्सल्य को दूर से ही अपने उस त्यागे हुए पुत्र पर लुटा रही हैं। हृदय में ग्लानि और ममता का ऐसा द्वंद है जो शब्दों से परे है। आइए श्रोताओं, अब अपनी चेतना को समेटकर हम बढ़ते हैं आगे इतिहास के उसी अत्यंत भावुक मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक क्षण की ओर, जहां गंगा के इस पावन तट पर एक विवश माँ और एक महात्यागी पुत्र का वह अद्भुत मिलन होने वाला है जिसने नियति की दिशा ही बदल दी। आइए पूरे मनोयोग से सुनते हैं पंचम सर्ग के इस भाग दो का यह दिव्य काव्य पाठ।
1: आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला,
3: पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं, हैं आप कौन, किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं, यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी हैं कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं।
1: सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से,
4: रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया, पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, एतेव हाय अपने दुदमुहे तनय से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मेरे ही सुत मेरे सुत को हाय मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे, यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा, जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हीरा तुझको जिस संशय से, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं, वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है, बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही, तुष्टक ना आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने।
1: मित्रों पांचवें सर्ग का यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती का संवाद नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सत्य समय और संबंधों के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना है। दिनकर जी ने यहां किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया, बल्कि उस युद्ध की पीड़ा को चित्रित किया है जो मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर कर्ण है जिनका जीवन अपमान संघर्ष और आत्मसम्मान की अग्नि में तपकर कुंदन बना है, दूसरी ओर कुंती हैं जिनकी ममता वर्षों तक समाज की कठोर मर्यादाओं के पीछे कैद रही। जब दोनों आमने सामने आते हैं तब शब्दों से अधिक मौन बोलता है और संवादों से अधिक आंसू अपना अर्थ कहते हैं।
2: कर्ण का पहला परिचय ही उनके चरित्र की महानता का प्रमाण है। वे सामने खड़ी स्त्री को नहीं पहचानते, फिर भी विनम्रता से कहते हैं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। इस एक वाक्य में कर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित है। देखिए ना, जन्म देने वाली माँ सामने खड़ी है, लेकिन कर्ण अपने पालन पोषण का ऋण नहीं भूलते। वे स्वयं को राधा का पुत्र ही कहते हैं। दिनकर जी यहाँ संदेश देते हैं कि मनुष्य का गौरव केवल जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और कृतज्ञता से निर्मित होता है। इसके बाद कुंती का धैर्य टूट जाता है। वर्षों से हृदय में दबा हुआ सत्य अश्रुओं के साथ बाहर आता है। जब वे कहती हैं कि राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, तब यह केवल जन्म का रहस्य नहीं खुलता बल्कि एक माँ के जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप भी सामने आता है। कुंती स्वीकार करती हैं कि उन्होंने समाज के भय से अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया था। दिनकर जी ने यहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न उठाया है, जहाँ एक अविवाहित माँ के लिए सम्मान से अधिक लोक लाज का भय था। कुंती का अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये उस व्यवस्था की विवशता भी थी जिसने इसे मातृत्व से बड़ा सामाजिक भय बना दिया। कुंती जब अपने अपराध का कारण बताती हैं, तब उनका स्वर किसी महारानी का नहीं बल्कि एक असहाय स्त्री का हो जाता है। वे स्वीकार करती हैं कि नारी के लिए समाज का निर्णय कितना कठोर होता है। यही कारण है कि इस प्रसंग में पाठक कुंती को दोष देने से पहले उनकी विवशता को समझने लगते हैं। दिनकर जी किसी पात्र का न्याय नहीं करते, वे केवल मनुष्य की पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं।
1: इसके बाद कुंती की प्रार्थना कथा को और अधिक मार्मिक बना देती है। वे कर्ण से राज्य नहीं मांगती, अपने लिए सम्मान नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हैं कि उनके पुत्र एक दूसरे का रक्त ना बहाएं। ये एक मां की अंतिम इच्छा है, किंतु इस प्रार्थना के पीछे वर्षों का अपराध बोध भी छिपा है। उन्हें लगता है कि यदि आज भी वे मौन रही तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगी। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विजय या पराजय का प्रश्न नहीं है। यहां हर पात्र अपने अपने सत्य के साथ खड़ा है। कर्ण का सत्य कर्तव्य और कृतज्ञता है, कुंती का सत्य ममता और पश्चाताप है, रश्मिरथी का यह अंश हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भर नहीं पाता, केवल स्वीकार करना ही उनका उपचार बनता है। यही कारण है कि पंचम सर्ग का यह प्रसंग हिंदी साहित्य के सबसे करुण और मानवीय संवादों में गिना जाता है। यहां दिनकर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं अधिक भीषण युद्ध मनुष्य के हृदय में लड़े जाते हैं। आंसू, पश्चाताप, कर्तव्य, ममता और धर्म, इन सभी भावों का ऐसा अद्भुत समन्वय विरले ही किसी काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती की कथा नहीं बल्कि मानव हृदय की शाश्वत संवेदनाओं का अमर दस्तावेज बन जाता है।
2: तो श्रोताओं, इसी भावपूर्ण मोड़ पर आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। अगले भाग में हम पंचम सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ और चर्चा सुनेंगे। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
5: मैं अदिति
6: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर लेती है विराम। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को पंजाब में शाहपुर जिले के बेहड़ा गांव में हुआ था
2: जी।
1: ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। शांति स्वरूप जब केवल 8 महीने के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ शिशु शांति को उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में अपने मायके ले आई। यहाँ पर ये बालक सुसंस्कृत वातावरण में पला बढ़ा। उनके नाना इंजीनियर थे। अपने नाना से प्रभावित होकर शांति स्वरूप भटनागर जी का रुझान स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र की ओर हो गया। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उनके प्रिय विषय थे।
2: श्रोताओं, लाहौर में लाला रघुनाथ उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे। वे लाहौर में दयाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। वे युवा शांति स्वरूप को लाहौर ले आए और उन्हें दयाल हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया और इसी कारण बचपन से ही पिता की छत्र छाया के अभाव के कारण डॉक्टर शांति स्वरूप में उत्तरदायित्वता, गंभीरता एवं अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इससे उनको अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिली। वे आत्मनिर्भर और कठिन परिश्रम करने वाले युवक बन गए।
1: सन 1911 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की और दयाल कॉलेज में भर्ती हो गए। उस समय वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के संपर्क में आए और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि उनकी लगन बन गई। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्नातकोत्तर के अध्ययन के लिए लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी बीच सन 1915 में लाजवती नाम की युवती के साथ उनका विवाह हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। श्रोताओं, भारत इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं था, इसीलिए उनकी पढ़ाई जारी रही।
2: स्नातक और स्नातकोर की परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेने से यह निश्चित हो गया कि वे अपनी आगे की पढ़ाई लंदन विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। वहां उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य भौतिक रसायन विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर डोनन के मार्गदर्शन में शुरू किया। उनके अध्ययन का विषय था इमल्शन की भौतिक एवं रासायनिक समस्याएं और इस विषय पर उन्होंने शोध प्रबंधन लिखा और डॉक्टरेट ऑफ साइंस यानी डीएससी की डिग्री प्राप्त की। आगे के अध्ययन के लिए वे जर्मनी चले गए और उसके बाद वहां से वे एक वर्ष के लिए फ्रांस चले गए। उन्होंने पेरिस में विश्वविख्यात सॉर्बोन विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य किया और सन 1923 में भारत लौटे।
1: भारत आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर का पद ग्रहण किया। एक वर्ष के बाद सन 1924 में उन्होंने लाहौर पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। वहां उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन किया। इसी बीच रावलपिंडी के निकट एक ब्रिटिश कंपनी तेल क्षेत्रों में ड्रिलिंग के काम में लगी हुई थी। एक दिन ड्रिलिंग का कार्य अचानक ठप हो गया। ड्रिलिंग के उपकरणों, इंजीनियरों, कर्मचारियों सभी का काम बंद हो गया और ऊपरी खर्च में बढ़ोतरी होने लगी। कारण ये था कि जिस स्थान पर ड्रिलिंग की जा रही थी वो एक बंजर भूमि थी। किसी समय वो तालाब का कीचड़ से भरा क्षेत्र था। वहां का पानी नमकीन था। जब पानी सूख गया तो जमीन पत्थर के समान कठोर हो गई। ऐसी स्थिति में ड्रिलिंग करने पर वहां मिट्टी के मिश्रण की भरमार थी जो नमकीन पानी के साथ मिल जाती और धीरे धीरे कठोर होकर सूख जाती। इसके कारण ड्रिलिंग में रुकावट आ गई जिसके चलते हजारों रुपयों का नुकसान होने लगा। इस मुश्किल से निकलने के लिए कंपनी ने हर संभव साधन जुटाने का प्रयास किया।
2: समाचार पत्रों के माध्यम से खुला निमंत्रण देकर के लोगों से पूछताछ की और इसके अलावा कोई संसाधन तलाश करने के लिए भारी पुरस्कारों और भुगतानों का प्रस्ताव रख करके लोगों को आकर्षित किया। आखिरकार किसी व्यक्ति ने इस कार्य के लिए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम सुझाया और इस समस्या का समाधान निकालने की चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली। डॉक्टर भटनागर ने इमल्शन कोलाइड पर बहुत अधिक अनुसंधान किया था। पानी और तेल का मिश्रण एक प्रकार का इमल्शन है। तेलीय पदार्थों का मिश्रण कोलाइड होता है। गोंद भी एक प्रकार का कोलाइड ही है। दूध इमल्शन का अच्छा उदाहरण है।
1: डॉक्टर भटनागर ड्रिलिंग वाले स्थान पर गए और वहां से नमूने लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कार्य शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत इस बात का पता चला कि ये स्थिति उस समय शुरू होती है जब बाहर आने वाला मिश्रण ड्रिलिंग के दौरान नमकीन पानी के साथ मिल जाता है।
2: डॉक्टर भटनागर समझ गए कि मिश्रण को नमकीन पानी के साथ मिलने से रोकना संभव नहीं है, इसलिए नमक के अंश को दूर कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान मिलने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर भटनागर ने सुझाव दिया, चूंकि ड्रिलिंग के दौरान बाहर निकलने वाले मिश्रण में देसी गोंद मिला दिया जाए तो गोंद के मिश्रण चिपचिपा हो जाएगा और उसे सख्त और कठोर बनाने से रोक देगा।
1: ये योजना सफल रही। कंपनी के अधिकारी भाव विभोर और उल्लासित हो गए। कंपनी को लाखों रुपयों के नुकसान से उबार दिया गया था। कंपनी ने डॉक्टर भटनागर को 1.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए और उत्पादन से होने वाले लाभ से उनको उपयुक्त राशि हिस्से के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने ये कार्य अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया था। उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। डॉक्टर भटनागर ने कहा, मैंने केवल

0: रक्तहीन और गंधहीन मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन और मोम बनाने की विधियों पर खोज की थी। उनका उपयोग चमकीले, हल्के और उच्च गुणवत्ता वाले बेहतर लुब्रिकेंट्स तैयार करने में होता था।
1: उस समय ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक बोर्ड की स्थापना की थी। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को इसका निदेशक चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर भटनागर ने एक ऐसे कपड़े और वार्निश का विकास किया था जिनका उपयोग विषैली गैस से रक्षा के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने आग बुझाने के लिए बुलबुले वाला झागदार मिश्रण भी विकसित किया था।
0: श्रोताओं, सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विज्ञान को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। डॉक्टर भटनागर ने इसके लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद रख दिया गया।
1: डॉक्टर भटनागर के मार्गदर्शन में 12 उच्च स्तरीय और उपकरणों से सुसज्जित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। इनसे देश के उदीयमान वैज्ञानिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुईं।
0: श्रोताओं, डॉक्टर भटनागर अनेक संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च यानी CSIR के निदेशक, भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने में बहुत योगदान दिया।
1: देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट उपाधि और मानद सदस्यता प्रदान की। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें सन 1943 में मानद सदस्य बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
0: श्रोताओं, 1 जनवरी 1955 को 61 वर्ष की आयु में इस महान मनीषी और वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में यह देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक के समक्ष हम विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, और आज हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के जीवन परिचय पर। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए,

0: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज, रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना है कि किस तरह स्वामी विवेकानंद बिना किसी पहचान पत्र और पूर्व तैयारी के अमेरिका चले गए थे और उन्हें उस अनजान देश में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका तो एक धनिक वर्गों का देश है, वहाँ स्वामी जी का थोड़े से पैसों में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अतः वे खर्च कम करने के लिए पूर्वी तट के बोस्टन में जो एक छोटा सा शहर था चले गए थे। वहाँ हमेशा की तरह अपने ज्ञान और प्रतिभा से लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया और धीरे धीरे उनकी मुश्किलों का समाधान होता चला गया।
1: 24 अगस्त को बोस्टन में जब वे सैनबोर्न के यहाँ थे, तभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी भाषा के प्राध्यापक जॉन हेनरी राइट महाशय अपने अनिस्क्वाम के निवास स्थान से बोस्टन आए हुए थे और पहले से ही स्वामी जी की गुणावली के बारे में सुनकर उनसे मिलने को व्यग्र थे, परंतु उनसे उस दिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और इससे लाभ ही हुआ, क्योंकि प्राध्यापक ने उन्हें सप्ताह के बाकी दिन अनिस्क्वाम में आकर अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया और स्वामी जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। अनिस्क्वाम बोस्टन से 30 मील दूर उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। शहर के लोग जलवायु परिवर्तन के लिए वहां जाया करते थे और प्राध्यापक भी इसी उद्देश्य से वहां निवास कर रहे थे। स्वामी जी के इस गांव में निवास का विवरण प्राध्यापक की पत्नी के 29 अगस्त के एक पत्र में इस प्रकार मिलता है।
2: हिंदू सन्यासी को देखने के लिए जॉन बोस्टन गए थे, परंतु उनसे भेंट न होने के कारण वे उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दे आए। वे शुक्रवार को यहाँ पहुंचे। उन्होंने एक गेरुआ लबादा पहन रखा था। सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए। वे सोमवार तक यहाँ थे। वे सारे दिन और सारी रात उनसे बातें करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल हमारा वार्तालाप पुनः प्रारंभ हुआ। पूरा शहर उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठा था। कुमारी लेन के गृह में अतिथिगण उल्लास से आत्मविभोर हो गए थे और सारे समय घर के बाहर भीतर आना जाना कर रहे थे। शुद्रकाय श्रीमती मैरिल के दोनों नेत्र उल्लास से प्रज्वलित और कपोल रिथमिक हो रहे थे। हम लोग मुख्यतः धर्म के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। फिर रविवार को जॉन उन्हें गिरजाघर में व्याख्यान दिलाने ले गए और सबने मिलकर एक ऐसे गैर ईसाई महाविद्यालय के लिए चंडा एकत्र किया जो पूर्णतः गैर ईसाई भावधारा से परिचालित होगा। उन्हें देख सुनकर ग्रामवासी इस निश्चय पर पहुंचे कि वे ब्राह्मण हैं, परंतु निशाभोज के समय उन्हें आनंद पूर्वक मांस खाते देखकर उन लोगों की धारणा डावाडोल होने लगी। इस समस्या का समाधान आवश्यक था, अतः भोजन के बाद उन्हें सुनने को सभी उन्हें घेर कर बैठ गए।
0: अपने पत्र में श्रीमती हेनरी ने कुछ और विस्मयकारी तथ्यों की जानकारी दी है।
2: अपनी संगीतमय ध्वनि में वे कहने लगे,
3: अभी कल ही की तो बात है। हाँ, कल की ही, यानी 400 वर्ष से अधिक पहले की नहीं होगी। अंग्रेजों की बात और क्या कहूं, अभी कुछ काल पूर्व ही तो वे बर्बर थे। अभी भी वे उस बर्बरता से केवल निकल भर रहे हैं।
2: श्रोताओं में से एक कह उठा, बकवास, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। वे बोले,
3: तो क्या मैंने कहा नहीं कि थोड़े ही दिन पहले? मानव आत्मा की प्राचीनता को ध्यान में रखने पर इन कुछ वर्षों की भला क्या गिनती।
2: इसके साथ ही उनकी आवाज में दृढ़ता तथा प्रवाह बढ़ गया और वे कहने लगे,
3: भयावह शीत और उनके जलवायु के अभावों तथा कष्टों ने अंग्रेजों को जंगली बना डाला है। वे केवल दूसरों को मार डालने की ही बातें सोचते हैं। उनका धर्म कहां है? वे मुख से उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं। वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा भर करते हैं, पर अपने राज्य का विस्तार करते हैं ईसाई धर्म की सहायता से नहीं। ये तो उनकी वो भूखा है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है।
2: तब कुछ और आगे बोलते हुए उनका मधुर कंठ गंभीर होता गया और अंततः घंटा निनाद के सदृश ध्वनित हो उठा।
3: लेकिन उन्हें ईश्वर के दंड का भागी होना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा। उन कोटि कोटि चीनियों की ओर देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध है जो तुम्हारे ऊपर उतर आएंगे। हूणों का एक और आक्रमण होगा, वे संपूर्ण यूरोप को पदाक्रांत कर देंगे, एक भी ईंट साबित नहीं छोड़ेंगे। पुरुष, नारी, बच्चे सब चले जाएंगे। फिर से अंधयुग का आगमन होगा। मेरा क्या होगा, अपने बारे में मैं चिंता ही नहीं करता। इसके होने में 1000 वर्ष भी नहीं लगेंगे। भले ही तुम ईश्वर के प्रतिशोध में विश्वास न करो, पर इतिहास का प्रतिशोध तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और अंग्रेजों के ऊपर यह प्रतिशोध आएगा ही। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं और अपने सुख भोगों के लिए उन्होंने हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक को चूस लिया। वे हमारी करोड़ों की संपत्ति हरण करके ले गए, जबकि गांव गांव में हमारी जनता भूखों मर रही थी। अब चीनियों के रूप में उन पर प्रतिशोध की बौछार होगी और ये न्याय संगत ही होगा।
0: एक दूसरे मौके पर स्वामी जी ने भविष्य दृष्टा ऋषि की तरह कहा था,
3: आगामी विराट अभ्युत्थान जो एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा, या तो रूस से आएगा अथवा चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा।
1: उन्होंने ये भी कहा था कि
3: अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद पड़ोस की ओर से भारत पर आक्रमण होने की प्रबल संभावना है।
1: सुनने वाले इन भविष्यवाणियों से अचंभित हो गए।
0: 27 अगस्त को एनस्क्वाम के गिरजाघर में व्याख्यान देने के बाद 28 अगस्त सोमवार को सालेम के थॉट ऑफ वर्क क्लब में व्याख्यान देने वे वहां से विदा हुए। सालेम में वे 166 नॉर्थ स्ट्रीट पर स्थित श्रीमती कैट टेनार्ट वुड्स के घर में एक हफ्ता रहे। वे एक विदुषी साहित्य लेखिका थी और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी। उनके साथ उनका बेटा प्रिंस रहता था जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहा था।
1: 28 अगस्त की शाम स्वामी जी सालेम के प्रार्थना घर में हिंदू धर्म और हिंदू प्रथाएं विषय पर बोले। वैदिक धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। भारत की निर्धनता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में धर्म का अभाव नहीं है, अभाव है अन्न और व्यवहारिक ज्ञान का। उन्होंने कहा वे अमेरिका वासियों से कहने आए हैं कि भारत में मिशनरियों के स्थान पर ऐसे लोग भेजे जाएं जो वहां औद्योगिक शिक्षा का विस्तार कर सके। उन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जगन्नाथ के रथ के नीचे पढ़कर होने वाली आत्महत्याओं के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं का निराकरण किया।
0: अगले दिन शाम को श्रीमती वुड्स के बगीचे में बालक बालिकाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी जी ने भारतीय बच्चों के रहन सहन, खेल कूद तथा शिक्षा आदि के बारे में व्याख्यान दिया। 3 सितंबर को ईस्ट चर्च में उनका भाषण हुआ। विषय था भारत का धर्म और मेरे निर्धन देशवासी। जाते समय वे अपनी प्रिय छड़ी प्रिंस को दे गए और अपना ट्रंक व कंबल श्रीमती वुड्स को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरे इस देश में प्रवास के दौरान मुझे ग्रह सुख का आस्वादन कराया है, उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज देना ही उचित है।
1: इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन सैनबोर्न के आमंत्रण पर साराटोगा स्प्रिंग्स नामक स्थान पर व्याख्यान देने के लिए 4 सितंबर की रात को स्वामी जी सालेम से चल पड़े। साराटोगा में वे सेनेटोरियम नामक संस्था के बोर्डिंग हाउस में रुके और 5 सितंबर को व्याख्यान दिया। वहां उन दिनों अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा था। श्री सैनबोर्न उस एसोसिएशन के सचिव थे। अमेरिका के अनेकों बुद्धिजीवी गण उसके सदस्य थे। इस आमंत्रण से ये स्पष्ट हो जाता है कि सैनबोर्न महोदय स्वामी जी से कितने प्रभावित थे, अन्यथा वे विद्वानों की सभा में एक अपरिचित सन्यासी को भला क्यों बुलाते। यहाँ उनके व्याख्यान का विषय था इहलौकिक समस्याएं। साराटोगा में स्वामी जी के कुल 5 व्याख्यान हुए थे।
0: अब तक हमने जाना है कि स्वामी जी बोस्टन अंचल में 3 सप्ताह रुके थे। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने व्याख्यान दिए और गणमान्य समाज में ख्याति अर्जित की। इसी काल में वे अमेरिका के जनमानस के साथ भी सुपरिचित हुए। कई संस्थाओं में वे घूमे, बच्चों के साथ समय बिताया और अमेरिका के पारिवारिक जीवन को भी जाना। वैसे उन्हें हमेशा प्रशंसा नहीं मिली। एक आध बार मिशनरियों की आलोचना करने पर उन्हें उन लोगों के कटाक्ष भी सुनने पड़े।
1: स्वामी जी महासभा में भाग लेने की आशा या इच्छा अथवा दोनों का त्याग करने को बाध्य हुए थे। हम उसका कारण भी जानते हैं। फिर भी वे कैसे शिकागो जाने के लिए राजी हुए ये कह पाना मुश्किल है। परंतु इतना निश्चित है कि उनका बोस्टन आना और मिस सैनबोर्न की सहायता से प्राध्यापक राइट के साथ परिचय होना ही इसका मूल कारण था। प्रोफेसर राइट ने ही उन्हें समझा बुझाकर शिकागो जाने के लिए सहमत कराया था। उन्होंने ही अपने मित्रों के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी के महासभा में प्रतिनिधित्व पाने का पद प्रशस्त कर दिया था। जब स्वामी जी निराश होकर अपने कार्य करने की अलग योजना बना रहे थे, तभी राइट महोदय ने उन्हें समझाया कि अमेरिकी जनता के सामने आत्म परिचय देने के लिए महासभा ही उपयुक्त स्थान है।
4: इस विराट जाति से परिचित होने का आपके लिए यही मौका है।
0: स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी असुविधाओं की बात कही, परिचय पत्र का ना होना, अर्थ का अभाव आदि सब कुछ कह सुनाया। सुनकर गणमुग्ध प्राध्यापक बोले,
4: अब से परिचय पत्र की मांग करना वैसा ही है मानो सूर्य से पूछना कि उसे प्रकाश फैलाने का अधिकार किसने दिया है।
0: स्वामी जी को महासभा में प्रतिनिधि बनवाने का सारा भार अपने कंधों पर लेते हुए उन्होंने प्रतिनिधि निर्वाचन समिति के सचिव के नाम अपने पत्र में लिखा,
4: ये एक इतने बड़े विद्वान है कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे।
0: स्वामी जी के अर्थाभाव की बात जानकर उन्होंने उनके लिए शिकागो तक का एक रेल टिकट खरीद दिया और प्रतिनिधियों के निवास आदि की व्यवस्था करने वाली एक कमेटी के नाम भी एक पत्र लिख दिया था। सालेम में रहते समय ही स्वामी जी को प्राध्यापक का परिचय पत्र मिल गया था। 4 सितंबर को अपने पत्र में उन्होंने लिखा है,
3: आपने मुझे जो परिचय पत्र दिए उनके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मुझे शिकागो के श्री थैलिस महोदय का पत्र मिला है जिसमें महासभा के कुछ प्रतिनिधियों के नाम तथा अन्य संवाद है।
1: मजेदार बात तो ये हुई कि सारी व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी सानंद और निश्चित मन से शिकागो की ओर रवाना हुए। ट्रेन में एक व्यवसायी से बातचीत होने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकागो पहुंचने पर वे बता देंगे कि डॉक्टर रेवरेंड जॉन हेनरी बैरोज के घर कैसे जाना होगा। बैरोज शिकागो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पैस्टर तथा धर्म महासभा के जनरल कमेटी के सभापति थे। महासभा से संबंधित सारी व्यवस्था का भार इन्हीं के कंधों पर था।
0: और शाम को जब ट्रेन शिकागो पर पहुंच गई तो वे सज्जन हड़बड़ी में सब कुछ भूल करके अपने घर की ओर चल दिए। इधर स्वामी जी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि बैरोज महोदय का पता लिखा हुआ कागज गायब है। उन्होंने राह चलते कई लोगों से पता पूछा, कोई स्वामी जी का प्रश्न समझ ही नहीं पाया और चलते बने। कोई तो किसी होटल का पता भी न बता पाया। स्वामी जी भयानक असहाय सा महसूस करने लगे। आखिरकार रेलवे के माल गोदाम के पास एक बड़ा सा खाली बक्सा पड़ा देख करके वे उसी पे सो गए।
1: 2 दिन बाद जिनकी वाणी सुनकर अमेरिका तथा विश्ववासियों की नींद टूटने वाली थी, उन्हें पहली रात निराश्रय निसंबल मित्रहीन होना पड़ा। स्वदेश में अपने परिव्राजक काल के दिनों में जिस तरह दिन भर सड़कों पर चलने के बाद शाम को किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर जमीन पर ही सो जाते थे, शिकागो में भी उन्हें वैसा ही करना पड़ा।
0: अगले दिन सुबह ठंडी हवा के झोंके से उनकी नींद खुली। और वे झील के किनारे बसे सब भ्रांतों के मोहल्ले की तरफ चल पड़े कि शायद उन्हें कोई बैरोज महोदय का पता मिल जाए। इस लैकशोर ड्राइव नामक सड़क पर करोड़पतियों के निवास थे। उस समय वे भूख से परेशान थे। घर घर जाकर उन्होंने अन्न भिक्षा की और पता पूछते रहे, पर उनके गंदे कपड़े, थका शरीर देख सभी ने उन्हें भगा दिया। वे थके हारे सड़क के किनारे बैठ गए। टेलीफोन आदि की सहायता भी ली जा सकती थी, पर उन्हें उसकी कोई जानकारी न थी।
1: ठीक उसी समय सामने के एक विशाल भवन का द्वार खुला और एक संभ्रांत महिला ने उस घर से निकलकर स्वामी जी के पास आकर पूछा, क्या वे धर्म महासभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उनसे खुलकर अपनी समस्या बताई। महिला उन्हें सादर अपने घर ले गई और नौकरों से कहा कि उन्हें कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर दे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि जलपान के बाद वे उन्हें लेकर महासभा के दफ्तर जाएंगी। स्वामी जी को लगा कि वे सपना देख रहे हैं या कोई परी कथा की कहानी घटित हो रही है। वे विस्मय और कृतज्ञता से अभिभूत हो गए। ये महिला थी श्री जॉर्ज डब्ल्यू हेल की पत्नी। उस दिन से वे उनके पति और बच्चे स्वामी जी के अत्यंत आत्मीय हो गए। श्री और श्रीमती हेल बड़े धर्म प्राण थे। स्वामी जी उन्हें प्यार से फादर पो और मदर चर्च कहा करते थे। उनकी दो बेटियां और दो भांजियां स्वामी जी की बहन समान थीं।
0: हेल परिवार की बेटियों का नाम था हैरियट और मैरी हेल तथा भांजियों का नाम था हैरियट मैककिनली और इसाबेल मैककिनली।
1: स्वामी जी के हृदय में एक नए उत्साह का संचार हुआ। उन्हें अब संदेह नहीं रहा कि स्वयं भगवान ही उनका हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। अपनी सफलता के बारे में निश्चित होकर वे भविष्य की परिकल्पना करने लगे। श्रीमती हेल के साथ वे महासभा कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने प्राध्यापक राइट का दिया हुआ परिचय पत्र दिखाया और बिना कुछ कहे सुने ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हो गए। 262 नंबर मिनिशन एवेन्यू स्थित श्री जे बी लियोन के घर में उनकी ठहरने की व्यवस्था हो गई। इस घर में निवास का विवरण श्री लियोन की नातिन श्रीमती कार्नेलिया कोंगर ने लिपिबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है,
5: महासभा के अधिवेशन हेतु विभिन्न संप्रदायों के जिन लोगों को सदस्य बनाया गया था, उन प्रतिनिधियों को नाना ने अपने घर में अतिथि के रूप में रखने को सहमत हुए थे। मेरे नाना धर्मांधों को नापसंद करने के बावजूद दर्शन में रुचि रखते थे, अतः मेरी नानी से एक ऐसे प्रतिनिधि को अतिथि के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी जो खूब उदार दृष्टिकोण के हो। उन दिनों हमारा घर अतिथियों से परिपूर्ण था, क्योंकि मेरे नाना और नानी बड़े अतिथि परायण थे और वो विश्व मेला बड़ा ही उत्साहवर्धक और अद्भुत था। हमें जब समाचार मिला कि हमारे भारतीय प्रतिनिधि अतिथि शाम को आएंगे, तब हमारे घर में इतना स्थानाभाव था कि मेरी नानी ने अपने मझले पुत्र को घर छोड़कर एक मित्र के घर चले जाने को कहा। समाचार आया कि हमारे संप्रदाय फर्स्ट प्रेसबिटेरियन चर्च के एक सदस्य आधी रात के बाद अतिथि को लेकर आएंगे। नानी के अतिरिक्त बाकी सभी लोग सो गए। घंटी की आवाज सुनकर जब उन्होंने द्वार खोला तो वहाँ लंबा गेरुआ लबादा पहने हुए स्वामी जी विवेकानंद को खड़े देखकर वे स्तंभित रह गए। इसके पूर्व उन्होंने कभी किसी भी भारतवासी को नहीं देखा था। उन्होंने स्वामी जी को सादर ले जाकर उनके रहने का कमरा दिखाया, परंतु जब वे लेटने गईं तो उनके मन में चिंता हुई। हमारे अनेक अतिथि अमेरिका के दक्षिण अंचल के थे, जो केवल श्वेतांग लोगों के साथ ही मिलना जुलना पसंद करते थे। नाना जी की नींद खुलने पर उन्होंने उनको भी इस समस्या से अवगत कराते हुए ये कहा कि निश्चित करना होगा कि स्वामी जी तथा दक्षिण अंचल के अतिथियों को एक साथ रखना चलेगा या नहीं। नानी ने भी यही कहा कि आवश्यकता पड़ी तो स्वामी जी को उनके पड़ोस में ही स्थित ऑडिटोरियम होटल में भी रखा जा सकता है। नाश्ते के आधे घंटे पूर्व ही नाना जी कपड़े पहनकर पुस्तकालय कक्ष में अखबार पढ़ने गए। वहां उनकी स्वामी जी के साथ बातचीत हुई और जलपान की व्यवस्था होने के पूर्व ही वे आकर नानी माँ से ये बोले, एमिली हमारे सारे अतिथि चले जाएं तो भी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। हमारे घर में अब तक जितने भी लोग आ चुके हैं उनमें से ये भारतवासी ही सर्वाधिक बुद्धिमान तथा रोचक हैं।
0: कार्नेलिया कोंगर ने अपने स्मरण में और भी लिखा है कि
5: तब से उन लोगों के बीच घनिष्ठता का सूत्र पात्र हुआ और इसी के फल स्वरूप स्वामी जी ने जब शिकागो क्लब के उनके अन्य मित्रों के सम्मुख कहा, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ मेरा विश्वास है कि उनमें श्रीयुक्त लियोन ही सर्वाधिक ईसा के सदृश हैं। तो नाना जी ने बड़े संकोच का अनुभव किया था। स्वामी जी की मेरी नानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी क्योंकि उन्हें देखते ही उनको अपनी माँ की स्मृति हो आती थी। मैं उस समय 6 वर्ष की थी और अपनी विधवा माँ के साथ उसी परिवार में रहती थी। स्वामी जी मेरी माँ से बातचीत करके उनका दुख दूर करने का प्रयास किया करते थे। मेरे नाना और नानी उनके प्राय हर व्याख्यान में उपस्थित रहते थे।
1: उन दिनों कार्नेलिया बहुत छोटी थी। स्वामी जी उनको बहुत प्यार करते थे। वो भी बच्चों की तरह जिद कर स्वामी जी से कहानी सुना करती थी।
5: मेरी बचपन की स्मृतियों में वे अब भी सजीव हैं। वे मुझे भारतवर्ष की कथाएं, बंदरों, मयूरों, हरियल तोते, व्रत वृक्षों, तरह तरह के फूलों तथा रंग बिरंगे फल सब्जियों से पटे बाजारों की बातें सुनाया करते थे। घर में उनके लौटते ही मैं दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाती और हट करने लगती, स्वामी जी एक और कहानी बताइए ना। उनकी पगड़ी मुझे बड़ी मजेदार प्रतीत होती थी। किस प्रकार से उसे हर बार घुमा घुमा कर बांधा जाता था। मैं उनसे कहती, दिखाइए तो उसे कैसे बांधते हैं।
0: कार्नेलिया के लेखन से हमें उन दिनों की ढेर सारी बातों का पता चलता है और स्वामी जी के चरित्र के कुछ अनछुए पक्षों की जानकारी मिलती है। जैसे वे तेज मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते थे। कार्नेलिया ने लिखा है,
5: हमारे अमेरिका में भोजन में अधिक मसाला नहीं डालते। नानी को भय था कि कहीं उन्हें ये पसंद ना आए, परंतु स्वामी जी ने बताया कि वे जहां कहां भी रहते हैं वहां के खान पान के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें जो भी मिलता खुश होकर खाते। नानी सलाद बनाते समय थोड़ा सा तीखा सॉस उपयोग में लाती। स्वामी जी को वह बोतल देते हुए उन्होंने कहा, आप चाहें तो इसमें से 2-1 बूंद अपने भोजन में मिला सकते हैं। स्वामी जी ने उसे लेकर अपने खाने पर इतनी अधिक मात्रा में छिड़क दिया कि हम लोग सहम कर कह उठे, इतना नहीं चलेगा, ये बहुत तीखा है। वे केवल हंस दिए और खूब आनंद के साथ खाने लगे। इसके बाद से नानी उन्हें सॉस की 1 बोतल हमेशा उनके पास रख दिया करती थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
4: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं रुचिरा केदार का शास्त्रीय गायन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी वायलिन वादन की। कलाकार होंगी चेताली शिवलेकर। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन रुचिरा केदार का।
3: कार्यक्रम की शुरुआत राग नंद से कर रही हूँ। हमारे जयपुर घराने का काफी प्रसिद्ध राग है, उसमें पारंपरिक बंदिश है विलंबित तीन ताल में। हे बारे सैया तो हे सकल बन बन ढूंढू, हे बारे सैया।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गायन रुचिरा केदार का। अब इसके बाद बारी है वायलिन वादन की, जिसे पेश कर रही हैं चेताली शिवलेकर।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना वायलिन वादन, जिसे पेश कर रही थीं चैताली शिवलीकर। आज के कार्यक्रम भारत भारती में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश को इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
1: मैं आई कम इन सर?
2: यस कम इन, फरमाइए।
1: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
2: नोटिस? मगर किस बात का?
1: कंपनसेशन का सर।
2: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
1: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
2: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
1: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
2: है?
1: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
2: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
1: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
2: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
1: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
2: क्या?
1: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
2: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
1: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
2: अच्छा,
1: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
2: क्या कह रहे हो?
1: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
2: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
1: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
2: और अगर हम ना बोल दें तो?
1: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
1: ओह यस, बोलिए सर, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
2: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
1: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर।
4: मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि बामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया। 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी।
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
2: ना ना ना ना ना
0: गई?
2: ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका
2: है। मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
1: हाँ
0: भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
1: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
1: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं?
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
1: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
1: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
1: अच्छा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
1: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
1: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया। हाँ। तुलसीदास।
1: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
1: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
3: जी।
1: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
1: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
3: जी।
1: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
1: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
1: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
1: अरे
3: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
1: ठीक है। चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
1: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
1: बताइए।
3: श्री देवी।
1: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
1: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए। अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
4: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
4: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
4: थोड़ा सोचकर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
4: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा। लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
4: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
4: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
4: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
4: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
4: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
4: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
4: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
4: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
4: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह
4: ठीक है ना सर,
0: फिर बुलाइए बुलाइए उसे, बुलाइए बुलाइए। चतुर सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
3: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर्सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
1: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर्सेन?
0: बताइए बताइए,
1: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे,
0: है ना?
1: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
3: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं, भुंजी भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
3: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट।

तो श्रोताओं, ये था हमारे हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आरती अंकलेकर टिकेकर का गायन।

अच्छा सूट मेरा डिस्को का समवा दे और चुन्नी ला दे टट्टे वर्गी ला दे टट्टे वर्गी अरे कहेंगे लोग फलाने की बहु आई पटाखे वर्गी अरे कहेंगे लोग फलाने की बहु आई पटाखे वर्गी अरे कहेंगे लोग फलाने की बहु आई पटाखे वर्गी और जूती तेरी मड़कन आली ला दू सुन ले सूट तेरा डिस्को का समवा दू

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक एलपीजी का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में सात अजूबे हैं, धरती पर सात समंदर हैं। शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं, सरगम के सुर भी साथ होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी साथ हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी सात पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या छह क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में छह फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम सात के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफो यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए है की अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5। यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली। भाई उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाओ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
5: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे तूने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अब पका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच
2: लाओ, लाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, हैं? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल दो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना?

0: ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
1: चिंता न करिए पतिदेव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
1: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का एक पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
1: साल भर
0: है?
1: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा? दो पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, एक पैकेट में क्या होगा?
1: अरे पढ़ने का क्या है, चार में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
1: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
1: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
1: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में सातवां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
1: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
1: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
1: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
1: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
1: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
1: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
1: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
1: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
1: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
1: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
1: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
1: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
1: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
1: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
1: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर 4, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी
1: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
1: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
1: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
1: अच्छा।
0: समझी?
1: हाँ।
0: है? अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: एक जैसी
1: है? अच्छा, अच्छा।
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा। दीर्घायु
1: नहीं, मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
1: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
1: हाँ,
0: जी
1: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
1: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
1: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
1: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
1: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदन।

किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, छंद है विराट स्थाना और त्रिष्टुप।
3: श्रुधि हवमिंद्र मा ऋषण्यः स्यामते दावने वसूनाम् इमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वसूयवः सिंधवो नक्षरन्तः। हे इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमें तिरस्कृत न करें। धन दान के समय हम आपके कृपा पात्र रहें। झरते हुए जल के समान दिया गया हव्य आपकी शक्ति को बढ़ाए। सृजो महीरिंद्र या अपिन्वह परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीहि अमर्त्यम चिद्दासम मन्यमान मवाभिन दुक्थैर वावृधानः। हे इंद्रदेव, जल को रोकने वाले असुर के बंधनों को तोड़कर आपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि पर बहाया। स्तुतियों से बढ़ते हुए आपने अपने आप को अमर समझने वाले उस घमंडी असुर को धराशायी किया। उक्तेष्विन्नु शूर येषु चाकंस्तोमेष्विन्द्र रुद्रियेषु च तुभ्येदेता यासु मंदसानः प्रवायवे सिस्रते न शुभ्राः। हे वीर इंद्रदेव, जिन स्तुतियों से आप आनंदित होते हैं और रुद्रदेव की जिन स्तुति की कामना करते हैं, हे बलशाली, आपके लिए यज्ञ में वे स्तुतियां प्रकट होती हैं। शुभ्रम नु ते सुषमम वर्धयन्तः शुभ्रम वज्रम बाहवोर दधानाः शुभ्रस्त्वमिंद्र वावृधानो अस्मे दासीर विषः सूर्येण सहियाः। हे इंद्रदेव, हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचमाते वज्र को आपकी भुजाओं में धारण कराते हैं। आप तेजस्वी रूप में विस्तार पाते हुए सूर्य के समान संतापदायी वज्र से आसुरी प्रजाओं को नष्ट करें। गुहाहितं गुह्यं गूढहमप्स्वपीवृतं मायिनं क्षियन्तं उतो अपोद्यां तस्तभ्वां समहन्निहिं शूर वीर्येण। हे इंद्रदेव, आपने द्युलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले गुफा में छिपे हुए मायावी अहि असुर को क्षीण करते हुए अपने पराक्रम से मारा। स्त्वानुत इंद्र पूर्व्या महान्युत स्तवाम नूतना कृतानि स्त्वा वज्रम बाहवो रुषंतम स्त्वा हरि सूर्यस्य केतु। हे इंद्रदेव, हम आपके द्वारा प्राचीन समय में किए गए श्रेष्ठ कार्यों का यशोगान करते हुए वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हाथों में धारण किए सुंदर वज्र की तथा सूर्य रश्मियों के समान कांतिमान आपके अश्वों की भी हम प्रशंसा करें। हरि नूत इंद्र वाजयंता घृतश्चु स्वारमस्वारष्टाम विसमना भूमिर प्रतिष्ठारस्त पर्वतश्चित सरिष्यन्। हे इंद्रदेव, आपके द्रुतगामी अश्वों की गर्जना जल वृष्टि करने वाले मेघों की तरह है। पृथ्वी जल वृष्टि से खूब फैल जाती है। मेघ दौड़ते हुए पर्वतों पर विचरण करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
5: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
4: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

अपने देश अपनी मातृभूमि की शब्दों में वंदना तो कई साहित्यकार और कवि करते रहे हैं, किंतु मातृभूमि की आजादी और उसके लिए शहीद होने वाले क्रांतिवीरों के जीवन का स्तुतिगान करने वाले हिंदी के विरल कवि थे श्री कृष्ण सरल। 1 जनवरी सन 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन्मे श्री कृष्ण विरभरे 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता के वात्सल्य से वंचित हो गए थे। शायद मातृ प्रेम की यही वंचना उनकी कविता में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और कारुणिक स्वरों में गुंफित सुनाई पड़ती है।

श्री कृष्ण जी एक शिक्षक थे और आरंभिक सेवा काल में ग्वालियर जिले के डबरा नामक स्थान में प्रधान आचार्य थे। बाद में वे उज्जैन में स्थायी रूप से बस गए थे। उनके काव्य जीवन का सिलसिला छात्र जीवन से ही आरंभ हो चुका था। एक बार अपनी काव्य कृति कवि और सैनिक की भूमिका लिखने के लिए वे ग्वालियर गुरुप्रसाद टंडन के पास पहुंचे। गुरुप्रसाद टंडन सुविख्यात स्वाधीनता सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के

चितपात्र मानता हूँ। प्रेरणा के ये शब्द उनके मार्गदर्शक सूत्र बन गए और उन्होंने संकल्पित होकर शहीदों की जीवन गाथाएं कागज पर उतारना शुरू कर दिया।

के जो देवता मेरे लिए आराध्य, काव्य साधन मात्र उनकी वंदना है साध्य। सरल जी ने अपने काव्य संकल्प को पूरा करने के लिए स्वाधीनता आंदोलन और उससे जुड़े सभी लोगों का गहन अध्ययन आरंभ किया। वे भगत सिंह की माता विद्यावती कौर का आशीर्वाद लेने जलंधर जिले के खटकर कला गांव पहुंचे। माताजी ने उन्हें शहीद भगत सिंह से जुड़े तमाम आत्मीय किस्से सुनाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम ये पुस्तक जल्दी लिखकर छपवा लेना, क्योंकि मेरे दिन तो गिने चुने हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी लगाने के पूर्व सुखदेव और राजगुरु की माताओं के साथ मैं भी उनसे मिलने जेल पहुंची थी। उनसे मिलने और भी लोग जेल के फाटक पर खड़े थे। अधिकारी बोले कि केवल माताएं ही भीतर जा सकती हैं, दूसरे नहीं। भीतर से भगत सिंह ने जवाब भेजा कि यदि सरकार हमें देशवासियों से नहीं मिलने देती तो हम लोगों को भी अपनी माताओं से मिलना स्वीकार नहीं है। उनका तर्क था कि मृत्यु की इस वेला में हमारे मन से अपने पराये का भेद मिट गया है। हम लोग अपनी कुर्बानियां अपने सगों के लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए दे रहे हैं। ये विवेकपूर्ण निर्णय सुनकर सभी माताएं उनसे बिना मिले वापस आ गईं।

0: ये प्रसंग सुनाकर विद्यावती जी ने सरल जी से कहा, मेरे बेटे पर जो तुम पुस्तक लिखोगे ना, उसी को देखकर मैं ये समझूंगी कि मैंने अपने बेटे से आखिरी मुलाकात कर ली। एक साल बाद पुस्तक पूरी हुई और भगत सिंह की माताजी उसका विमोचन करने उज्जैन पहुंची। विमोचन के पहले उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हें पहले चंद्रशेखर आजाद पर लिखना चाहिए था, क्योंकि वो भगत सिंह से पहले शहीद हुए थे। सरल जी के स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने महाकाव्य सरदार भगत सिंह का विमोचन किया। इस तरह शहीदों पर महाकाव्य लेखन का उनका सिलसिला आरंभ हो गया। सरल जी ने लगभग 1152 शहीदों की जीवनियां और संक्षिप्त जानकारियां लिखीं, जो 5 खंडों में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 महाकाव्य लिखे। 2 महाकाव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर तथा शेष 7 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, भीकाजी कामा और करतार सिंह सराभा पर केंद्रित थे। शहीदों पर लेखन के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, उनके परिचितों से मुलाकात की, संस्मरण एकत्र किए और उन्हें अपनी लेखनी में आकार दिया। आरंभिक काल में अपने लिखे इन महाकाव्यों के प्रकाशन और विक्रय में सरल जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु कठोर अर्थाभाव से जूझते हुए भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। आइए श्री कृष्ण सरल के काव्य लेखन से कुछ काव्य पंक्तियों का आनंद लें। उनकी कविता में चंद्रशेखर आजाद के मनोभाव इस तरह से आए, आजादी इतना मूल्य मांगती है हमसे, हम अपने मीठे सपनों का बलिदान करें, जिसकी मिट्टी की गंध समाई सांसों में, जीवन देकर उस धरती का सम्मान करें। उन अमर शहीदों को न भूलने की हिदायत देते हुए सरल जी लिखते हैं, प्रेरणा शहीदों से अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये सब मानो वीरता बांझ हो जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित उनके महाकाव्य में सुभाष जी उनकी लेखनी के माध्यम से अपने साथियों को कुछ यूं संबोधित करते हैं, साथियों, हमें संकल्प यही दोहराना है, कुर्बान देश के हित हम तन मन कर देंगे, कोई कुर्बानी नहीं देश से बड़ी कभी, कुर्बान देश हित अपना जीवन कर देंगे। इस प्रकार सरल जी की लेखनी ने लगभग 87 ग्रंथ रचे, जिनमें 44 काव्यकृतियां हैं और शेष गद्य रचनाएं। गद्य के क्षेत्र में सरल जी ने कहानियां, उपन्यास, एकांकी, जीवनियां और निबंध कृतियों की रचना की। उनका सारा लेखन प्रामाणिक और शोधपूर्ण है। देश के शहीदों के जीवन को अपने शब्दों से साकार करने वाले श्री कृष्ण सरल को 2 सितंबर उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। ये वतन
1: का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश का शासन था। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज की कमान अपने हाथों में ली। गोंड रानी दुर्गावती ने गढ़ा राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। उन्होंने कई युद्ध लड़े। वो उस काल की ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी लोकप्रिय शासिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अनेक लोक उपयोगी कार्य कराए, अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर में अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराया, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनके काल में पचमठा मंदिर की स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें 5 गर्भगृह हुआ करते थे। ये पचमठा मंदिर वास्तव में मठ थे और यहां विद्या अध्ययन अध्यापन के लिए दूर दूर से विद्वान और विद्यार्थी आते थे। रानी दुर्गावती के काल में भी ब्रज से पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ जी दक्कन जाते हुए गढ़ा राज्य के जबलपुर पधारे। उनके आगमन से गोंड राज्य गढ़ा में वैष्णव भक्ति का प्रभाव बढ़ गया। उनकी बैठकें बनी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और गोपाल के अनेक मंदिर बने। तेलंगाना के लिंगायत ब्राह्मणों ने जब धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया तब उन पर विपदा आन पड़ी। इस कठिन समय में गोसाई विट्ठल दास जी उन्हें अपने साथ गढ़ा ले आए और रानी दुर्गावती ने लिंगायत ब्राह्मणों को नर्मदा किनारे अनेक गांव में बसाया। ये सारी जानकारी हमें अभी तक दी है पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना जी ने और जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आज हम पांचवी कड़ी में क्या बात करने वाले हैं पूजा जी? वैसे आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पहले बताई हैं। आपने पिछली बार कुछ हमें ये हिंट किया था कि दिल्ली के मुगल दरबार पर भी रानी का असर दिखाई देना शुरू हो गया था, रानी दुर्गावती जी का।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि रानी दुर्गावती के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मुगल दरबारी लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। उन्होंने लगान के बारे में लिखा था कि गढ़ा के गोंड राज्य की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था कि गढ़ा राज्य इतना संपन्न था कि वहाँ के किसान और व्यापारी लगान सोने की मोहरों और हाथी के द्वारा दिया करते थे। ये उनकी समृद्धि दिखाता है। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरी, हमें और भी इतिहास उनके साहित्य में दिखाई देता है। तो मुगल दरबार में गढ़ा राज्य की खबरें लगातार पहुंच रही थी
0: जी।
1: चाहे वह लगान हो, चाहे गोसाई विट्ठलनाथ जी का गढ़ा में आगमन हो, या मठ मंदिरों का निर्माण, या फिर रानी का सच्चरित्र, सब पर चर्चाएं जोरों से थी। रानी का प्रभाव इतना था कि मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा
0: जी।
1: और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने भी लगे थे, जिसका खामियाजा रानी दुर्गावती को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा
0: जी।
1: तो रानी अत्यधिक चरित्रवान और साहसी थीं। उनकी तारीफ अबुल फजल ने ही नहीं की है बल्कि दूसरे मुगल दरबारी लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में उन्हें खूब सराहा है
0: जी। तो क्या पूजा जी और कुछ लेखकों के नाम हम जान सकते हैं कि कहाँ और किसने ये जिक्र किया है?
1: एक बड़े प्रसिद्ध दरबारी लेखक हुए हैं मुगल काल के, बदायूनी
0: जी।
1: तो बदायूनी ने मुतखाब उत तवारीख नामक एक किताब लिखी है और उन्होंने गढ़ा के गोंड रानी दुर्गावती के सौंदर्य का वर्णन भी किया है और उनके साहस का भी बहुत वर्णन किया है। इसके अलावा एक और लेखक हुए निजामुद्दीन अहमद, उन्होंने तबाकत ए अकबरी में रानी दुर्गावती के सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा की है। यहाँ तक तो ठीक था। एक और लेखक हैं जिनको हम सब ने लगभग पढ़ा होगा
0: जी।
1: वो है फरिश्ता, जिनकी बड़ी फेमस किताब है तारीख़े फरिश्ता
0: जी।
1: और उन्होंने भी दुर्गावती की प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य की, उनकी प्रतिभा की और उनके चरित्र की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही उनको सच चरित्र बता रहे हैं और उनका जो इतना सुदृढ़ चरित्र है वही जाकर उनको इतने बड़े गढ़ा राज्य की स्थापना उसको बनाए रखने में सहयोग देता है।
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से जब तक किसी का चरित्र अच्छा ना हो वो अपना राज्य तो बहुत अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छे चरित्र की ही नींव पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।
1: बिल्कुल, काफी देर से चर्चा कर रहे हैं मुगल इतिहासकार अबुल फजल की
0: जी। हाँ।
1: तो अबुल फजल ने जब रानी दुर्गावती के बारे में वर्णन किया तो कुछ बात उनकी ध्यान देने वाली है जो आगे के इतिहास को रचने में महत्वपूर्ण है। तो जब अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के साहस की प्रशंसा की तो उन्होंने आगे यह भी लिख दिया कि रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये रानी की सबसे बड़ी गलती थी
0: जी।
1: तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अधीनता न स्वीकार करना रानी को बहुत महंगा पड़ा। तो जब उसने आगे लिखा तो यह भी लिखा कि वो बहुत अदम्य साहस और कर्तव्य परायण जैसे आधारभूत तत्वों का उनमें कोई अभाव नहीं था रानी में, और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बहुत महान कार्य भी किए थे। और ये भी लिखते हैं अबुल फजल की मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से उन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और वो विजय भी रही थी। जैसा हमने पहले भी सुना, वह बहुत ही अच्छी निशानेबाज भी थी। लेकिन वो आगे लिखता है कि रानी दुर्गावती में एक ही दोष था
0: जी।
1: और वो दोष यह था कि उन्होंने कभी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
0: लेकिन ये तो दोष मुगलों की नजरों में था। देखिए पूजा जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे सच्चरित्र का और ऐसी देशभक्ति का क्या अर्थ जो पर अधीन हो जाए। तो रानी दुर्गावती ने अपने गोंड राज्य की बिल्कुल रक्षा की, मुगलों के अधीन होना उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और इस बात पर हम सबको आज गर्व है। मुगल तो उनके विरोधी थे और भले ही वो ऐसा लिखते हों, क्योंकि वो ऐसा लिखना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी वीरांगना उनके अधीन हो जाए। लेकिन पूजा जी, इस बीच ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने कुछ लोगों को भेजा भी था गढ़ा राज्य में।
1: जब मुगल दरबार में बहुत चर्चाएं बढ़ने लगी
0: जी,
1: तो जिज्ञासा होना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के बारे में सही जानकारियां जुटाने के लिए दो लोगों को भेजा गया। तो ऐसी जनश्रुति है कि अकबर ने दो विद्वान थे उनको भेजा था, एक थे गोप महापात्र और दूसरे थे नरहरि महापात्र
0: जी।
1: इनका इतिहास भी मिलता है, इसलिए ये किंवदंती काफी सत्य के करीब लगती है। तो गढ़ा राज्य के दीवान आधार कायस्थ ने जब गोप महापात्र को जबलपुर भेजा गया
0: जी,
1: तो उनका बड़ा सम्मान किया जब वो गढ़ा आए
0: जी,
1: क्योंकि वो बड़े जाने माने विद्वान थे। गोप महापात्र गढ़ा राज्य के तो पहले से ही था कि वो विद्वानों को खूब प्रश्रय देते
0: जी
1: थे।
0: हाँ।
1: तो गोप महापात्र बड़े खुश होकर गढ़ा से वापस दिल्ली पहुंचे, और इसी प्रकार जब नरहरि महापात्र आए तो रानी दुर्गावती ने उनका भी बहुत स्वागत किया और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें उस समय 1 करोड़ रुपए की जो कीमत बनती है ऐसा पुरस्कार दिया। ये लिखित
0: उस समय 1 करोड़ के साक्ष्य हैं।
1: हाँ, के साक्ष्य हैं। तो नरहरि महापात्र और गोप महापात्र के बारे में हमें कई जानकारियां इससे संबंधित मिलती हैं। तो कहते हैं कि जब गोप महापात्र दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां गढ़ा के मंत्री आधार कायस्थ की बुद्धिमता की बड़ी तारीफ की
0: जी।
1: इस पर सम्राट ने आधार सिंह कायस्थ को दिल्ली बुलवाने के लिए एक दोहा लिखकर पत्र भेजा
0: जी।
1: और दोहा ऐसा था कि अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपेत सोई अरु आधार दीवान। इसका अर्थ यह है कि अगर बहुत बुद्धिमान है तो जरा भेजो दिल्ली अपने हाँ, दीवान को
0: जी। तो क्योंकि उनके विद्वान आधार कायस की तारीफ कर रहे थे
1: जी। हाँ,
0: वाह।
1: तो ये पढ़कर रानी दुर्गावती ने आधार कायस को एक सफेद हाथी के साथ मुगल दरबार भेजा। इसके कई कारण भी थे
0: जी।
1: जो सफेद हाथी साथ में भेजा गया
0: क्योंकि
1: था,
0: सफेद हाथी ज्यादातर हाँ, होते नहीं है
1: हाँ,
0: तो इसके पीछे कोई रहस्य रहा होगा।
1: पर सफेद हाथी इस क्षेत्र में, जैसे हमने सुना है कि उस समय में कुछ किंवदंती आती हैं जिसमें सफेद हाथी का वर्णन आता है।
0: अच्छा।
1: पर हाँ, यहाँ यह है कि आधार कास्ट के साथ एक सफेद हाथी भेजा। सफेद हाथी यहाँ पे प्रतीकात्मक भी हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि गढ़ा राज्य को संभालना कोई इतना आसान नहीं, हाथी पालने बराबर है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आधार कायस्थ मुगल दरबार में पहुंचे
0: जी,
1: तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है अपने सिंहासन पर ही नहीं है, और अकबर जो है वो पहले ही उनकी बुद्धिमता की जांच करने के लिए दरबारियों के बीच में साधारण कपड़े पहनकर बैठ गए थे।
0: अच्छा।
1: तो आधार कायस्थ ने जब दरबार में प्रवेश किया और उन्हें सिंहासन सुना लगा तो उन्होंने पूरे दरबार पर नजर घुमाई। फिर उन्होंने एक साधारण वेशभूषा में बैठे हुए एक आदमी की ओर देखा और उन्हें नमस्कार किया, तो वो अकबर ही था। तो अकबर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने भरे दरबार में, पल भर में आधार कायस्थ ने उन्हें पहचाना कैसे
0: जी।
1: तो उन्होंने आधार कायस्थ से पूछा कि आपने पल भर में कैसे पहचाना। तो आधार कायस्थ ने जवाब दिया कि मैंने जब सबकी ओर देखा तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की नजरें आपकी ओर देख रही थी और देखते ही झुक गई थी, तो जैसे ही मैंने ये देखा मैं समझ गया कि आप ही सम्राट हैं।
0: वाह, तो कितनी अच्छी बातें पूजा जी हमें बता रही हैं। हम पांचवी कड़ी सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपका रेडियो मित्र, मैं संदीप शर्मा आपके साथ बना हुआ हूं। और आज पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि दिल्ली से आए हुए मुगल शासक अकबर के भेजे हुए विद्वानों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रानी दुर्गावती ने उस समय 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए। तो इससे तो निश्चित रूप से ये पता लगता है कि हमारा जो गढ़ा राज्य था वो कितना ज्यादा समृद्ध था।
1: जी हाँ।
0: अच्छा पूजा जी, आपने सफेद हाथी की बात कही कि आधार कायस्त वहाँ सफेद हाथी के साथ गए, रानी दुर्गावती ने उन्हें भेजा, लेकिन कहते हैं कि कुछ एक और बहुत अजीब सी चीज भेजी गई थी, वो क्या थी?
1: जब आधार कायस्त से अकबर मिले तो वो बहुत उनसे प्रभावित हुए
0: जी,
1: और उनका काफी मान सम्मान भी किया। फिर उन्होंने जिस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने गढ़ा राज्य के बारे में आधार कायस्त से पूछा
0: जी।
1: तो कहते हैं कि रानी ने आधार कायस्त के हाथों सोने का एक करेला भिजवाया था
0: जी।
1: खाने वाला करेला होता है
0: जी,
1: सोने का बना हुआ था वो करेला, ऐसा एक करेला भेजा। तो जब अकबर ने गढ़ा राज्य के बारे में पूछा तो आधार कायस्त ने वह सोने का करेला उनके सामने रख दिया
0: जी।
1: जिसका मतलब ये था कि गढ़ा राज्य सोने की तरह संपन्न है, उसकी भूमि उबड़ खाबड़ है जैसे करेले की होती है
0: जी।
1: लेकिन यदि हमसे शत्रुता की तो हम करेले से
0: कम कड़वे नहीं है। क्या बात है, तो ये तो बड़ी दूरदर्शिता की बात थी, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या इन्हीं विशेषताओं के चलते और ये जो संदेश कुछ ऐसे भेजे गए, क्या इसी के चलते मुगलों और गोंड राज्य के बीच ठन गई?
1: हाँ बिल्कुल, ये जो बातें हो रही थी ये धीरे धीरे दोनों ही राज्यों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही थी
0: जी।
1: मुगल दरबार में ये सुखबुकाहट थी कि गढ़ा की सीमाएं बड़ी सुदृढ़ होती जा रही हैं, रानी की प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ रही है, ये सब अकबर को एक चुनौती जैसा लग रहा था
0: जी। हाँ।
1: तो अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था आसफ खां
0: जी,
1: मालवा में तैनात था वो। और आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियां जितनी भी होती थी उसकी सूचना मुगल दरबार तक पहुंचाया करता था। तो रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के पास एक विशाल और सुसज्जित सेना थी। सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 1,000 युद्ध हेतु प्रशिक्षित हाथी थे और पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी सेना थी
0: जी।
1: तो आसफ खान ने रानी के लोक उपयोगी कार्य जो थे, तालाब बन रहे हैं, मठ मंदिर बन रहे हैं, इस सब की सूचना, एक एक सूचना मुगल दरबार तक पहुंचती रही, जो दरबारी लेखक है उनके विवरणों में मिलती है। और रानी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सुदृढ़ सीमाएं सभी को बेचैन कर रही हुई थी।
0: पूजा जी, क्या इन सब सूचनाओं के अतिरिक्त बढ़ती हुई जो धन संपदा थी, जो समृद्धि थी गढ़ा राज्य की, क्या वो भी शत्रुता का एक बड़ा कारण बनी?
1: बिल्कुल, धन तो सबको आकर्षित करता ही है, और कोई भी राज्य उसके पास कितना सुरक्षित धन है उस पर उसकी ताकत निर्भर करती है
0: जी।
1: तो गढ़ा तो हम देख ही रहे थे कि गढ़ा के पास शुरू से ही बात कर रहे हैं हम कि अकूत संपदा थी
0: जी। और इतनी कि अकबर जैसे राजा को, जिसके पास खुद ही अकूत संपदा थी, उसे यहाँ इतना धन देख करके जलन हुई।
1: बिल्कुल, तो इसकी पूरी खबर तो मुगल दरबार को पहुंची रही थी। रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ का जो किला है आज के नरसिंहपुर में
0: जी,
1: तो वहां पर अपनी सारा खजाना सुरक्षित रखवा दिया था। चौरागढ़ जो है एक दुर्गम किला है, हमने पहले भी बात की थी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इस किले को घेरते हुए और भी गढ़ हैं, जैसे फतेहपुर है, नमुआगढ़ है, भवरगढ़ है, पावागढ़ और देवरी है
0: जी।
1: तो ये एक सुरक्षित किला था, यहाँ पर सारा खजाना रखवा दिया गया
0: जी।
1: प्राकृतिक रूप से भी ये किला बहुत सुरक्षित था। तो गढ़ा राज्य की अकूत संपत्ति सालों से यहाँ सुरक्षित रखी हुई थी
0: जी।
1: लेकिन इस संपत्ति की सूचना मुगल सेनापति आसफ खां को लग गई और उसने दरबार में उसका बखान कर दिया
0: जी।
1: तो मुगल सम्राट अकबर के मन में उसके लिए लालच आ गया।
0: अच्छा।
1: और उनका ध्यान अब गढ़ा की संपत्ति पर था
0: जी।
1: लेकिन युद्ध का कारण सिर्फ संपत्ति नहीं थी बल्कि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे एक और कारण था, वो ये था कि उस समय हाथियों का बड़ा महत्व था
0: जी।
1: हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए होता था
0: जी,
1: प्रोसेशन के लिए होता था, अगर आप कहीं इरादा एक शाना शौकत के लिए होता था, सवारी के लिए होता था, खेलों के लिए होता था, प्रदर्शन के लिए होता था, तो प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी आवश्यकता होती थी। और ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में उस समय विंध्याचल पर्वत में, पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में खूब हाथी हुआ करते थे, इसके लिखित प्रमाण है। तो ये जो गोंड जनजाति थी ये हाथियों को प्रशिक्षित करने में बड़ी
0: सिद्धस्थ थे,
1: बड़ी सिद्धस्थ थी। तो इनके पास बड़े अच्छे किस्म के हाथी होते थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी होते थे। तो हमेशा से जो दिल्ली दरबार था वो इन हाथियों की चाह में रहता था। तो एक कारण ये भी था कि यहाँ के जो स्वस्थ और प्रशिक्षित हाथी थे वह भी मुगल दरबार चाहता था, यह भी युद्ध का एक बड़ा कारण बना
0: जी। और पूजा जी, एक और कारण की बात इतिहास में कुछ ऐसा देखने को मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि दक्कन में बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था, और यहाँ पर तो वैसे ही पुष्टि मार्गी संत जिनका आपने जिक्र किया, विट्ठलनाथ जी का प्रभाव हो चला था, तो क्या ये भी एक कारण था?
1: मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा कारण था। जैसा आपने कहा अकबर के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाथी बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकते, एक कारण हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण उस समय शायद सबसे बड़ा कारण था, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देख रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय संत विट्ठलनाथ जी के प्रभाव से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था और बड़ी संख्या में धर्मांतरण रोके जा रहे थे, और मुगल दरबार को यह गवारा नहीं था, जिसका परिणाम आसफ खां के द्वारा गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। ये सब मिलकर आक्रमण का कारण बने।
0: पूजा जी, जिस तरह से रानी ने वहां पर एक सोने का करेला भेजा था, आपने जिक्र किया, सफेद हाथी भेजा था, आधार कायस्थ वहां पर गए थे, कुछ ऐसा ही अकबर ने भी रानी को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई ऐसी कोई चीज यहाँ भेजी थी, ऐसा सुनने में आता है?
1: अकबर की ओर से रानी दुर्गावती को लज्जित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे थे, और जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए
0: जी।
1: तो एक बड़ी प्रसिद्ध किंवदंती है कि रानी को यह जताने के लिए कि वो एक महिला है
0: जी।
1: और उसे घर के काम संभालने चाहिए, शासन नहीं
0: जी।
1: अकबर ने अपने दूत से रानी को एक चरखा भिजवाया, सूत काटने का चरखा
0: जी।
1: तो जिसका मतलब था कि तुम एक साधारण स्त्री हो, सूत काटो और अपना घर चलाओ, यहाँ क्या कर रही हो
0: जी।
1: तो रानी भी कोई किसी से कम तो थी नहीं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनका मनोबल तोड़ना भी आसान नहीं था
0: जी।
1: तो अकबर ने उनको चरखा भेजा था, रानी ने उनको एक पिंजन भेजा
0: जी।
1: पिंजन मतलब होता है जो रुई काटने का एक सुई होती है, पिंजन, हाँ, जिससे सूत बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जिसका अर्थ ये था कि अगर मेरा काम चरखा काटना है तो तुम्हारा काम रुई पिंजना है, रुई धुनना है, तो तुम अपना काम करो।
0: वाह भाई वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से लेकिन तनातनी और बढ़ती चली गई होगी।
1: हाँ, दोनों राज्यों के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। सेनापति आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के खूब कान भरे
0: जी।
1: इधर गोंड राज्य से मंत्री आधार कायस्थ युद्ध टालने का भरपूर प्रयास करते रहे, किंतु आसफ खान रीवा राज्य को जीत चुका था जो कि गढ़ा राज्य की सीमा पर था, यानी कि आसफ खान गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर घात लगा के बैठ गया था। तो जल्दी ही इसका परिणाम हमको युद्ध के रूप में देखने को मिलने ही वाला था,
0: मतलब दुश्मन बिल्कुल किले के बाहर आ ही चुका था लगभग, और अब कभी भी युद्ध का बिगुल यहाँ पर फूंका जा सकता था मुगलों की ओर से।
1: जी हाँ।
0: चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और अब हम अपनी अगली कड़ी में ये जानेंगे कि क्या युद्ध का बिगुल फूंका गया, अब युद्ध होता है या नहीं, आपको बताएंगे हम अगली बार। पूजा जी हमारे साथ अगली बार भी बनी रहेंगी, डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में उपयोगी जानकारियां दे रही हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को, हमारी जानकारी के भंडार को बढ़ा रही हैं। तो श्रोताओं, बने रहिएगा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। मैं संदीप शर्मा आपसे आज इजाजत लेता हूं, आप सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 एफएम, देश का चैनल, देश के लिए। हमारे टेक गुरु प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन सभी तकनीकी प्रेमियों के लिए तैयार किया गया है जो तकनीक की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और तकनीक की दुनिया में एक सच्चे गुरु बनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और फास्टिंग, यानी मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कम करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एकता सरीन जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, जो बिहेवियर काउंसलिंग और स्पेशली टीनेज काउंसलिंग में सर्टिफाइड करियर काउंसलर है, प्रैक्टिसिंग विद NCERT। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता सरीन जी।
2: नमस्कार शिवानी जी।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिरकार ये जो डिजिटल डिटॉक्स है या मोबाइल फास्टिंग कह लीजिए, डिजिटल डिवाइसेस से फास्टिंग है, डिटॉक्स है, ये क्या है और इसके लाभ क्या है?
2: चलिए इसको एक बहुत साधारण लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं
1: जी।
2: सपोज शिवानी जी, आपको कल एक पार्टी में बुलाया गया था, आप एक पार्टी से होके आए और क्योंकि पार्टी में बहुत लावश फूड था और आपको लगा कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो नेक्स्ट डे आप जो रेगुलर मॉर्निंग में आप उठते हो, एक अच्छा फील करते हो, आपको लगा बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, तो आपने जो प्लान किया था कि आज शायद आप राजमा चावल खाने वाले हैं, तो आपने कहा कि आज मैं राजमा चावल ना खा के क्यों ना खिचड़ी खाऊं या थोड़ा सा सूप ले लूं, तो मेरे को लाइट फील कर
1: लाइट फील होगा।
2: और मैं वैसा करती हूँ, राइट। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको एक्सेस शुगर के कारण बोला जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है आपको। सिमिलरली इज डिजिटल डिटॉक्स या मोबाइल फास्टिंग, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे आप, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है हर एक का, अभी आप बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, एज अ प्रोफेशनल हम सभी, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है कि हम हर मिनट में देखते हैं कि हमारा क्या नोटिफिकेशन आया, हम अपना सोशल नेटवर्क जो हमारा अभी तक था वो हमारा कम हो गया है, हमारी सामाजिक गतिविधियां जिसमें हम अक्सर भाग लेते थे वो कम हो गई हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अपने उस स्क्रीन टाइम को कम करना, कम हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल डिटॉक्स।
1: वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उससे सुधर सकता है, तो क्या ये सच्ची बात है कि उससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल शत प्रतिशत ये बात बोल सकती हूँ। सपोज कीजिए आप दिन में 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका रहता है और आप उसको कोशिश कीजिए कि, मैं एकदम नहीं बोलूंगी आप 4 घंटे के लिए कम कर लीजिए, 1 घंटे से आप शुरू कीजिए, आप 1 घंटा उसे कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपका नींद, जो आपका स्लीप पैटर्न्स है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है। एक बार हमारा स्लीप पैटर्न इंप्रूव होता है, जो आजकल बहुत सारे लोग इंसोम्निया के शिकार हैं, उससे आपका डेफिनेटली, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आप उसको क्रिएटिव वे में यूज करोगे या सिंपली रिलैक्स करोगे, उससे आप बहुत हद तक आपका जो मानसिक तनाव है, जो आपका मेंटल इलनेस है, वो डेफिनेटली कम होगी।
1: यानी कि बहुत हद तक जो मानसिक तनाव हमें हो रहा होता है वो बहुत कुछ डिवाइसेस की, इंटरनेट, मोबाइल्स एंड फोन्स की वजह से होता है। मतलब हम उत्सुक हो जाते हैं अपने नोटिफिकेशंस के लिए क्या आ रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, सोशल प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। वैसे क्या मोबाइल फास्टिंग की अगर बात करें तो उसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है जब हम मोबाइल फास्टिंग कर रहे हैं?
2: ये अभी मैंने अपने एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ में इस प्लान को, इस पर्टिकुलर मोबाइल फास्टिंग को स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप दिन भर के लिए मोबाइल मत यूज कीजिए। ये छुट्टियों से हमने अभी बहुत रिसेंटली ये स्टार्ट किया, दिस वॉज ऑन 1st of May वी स्टार्टेड और ऑलरेडी हम इसको 20 डेज तक कम्प्लीट कर चुके हैं। उनके साथ में जब ये लोग मेरे चैम्बर में होते हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे ही वो मेरे चैम्बर में आते हैं, वो मेरे पास 2 घंटे के लिए होते हैं, तो उस 2 घंटे में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम होता है ना, मैं ना वो मेरे बच्चे उन मोबाइल को टच करते हैं। 2 आज तक हमारा मोबाइल बिल्कुल उस बॉक्स में रहता है, कितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं हम उसको नहीं देखते, और ये हर रोज का पैटर्न हो चुका है। और मैं माई सेल्फ, आई डू इट विद माई फैमिली, मेरा एक सैटरडे का दिन होता है जिस दिन मोबाइल को हम लोग टच नहीं करते हैं, दैट इज दैट डे हम प्लान करते हैं कि मोबाइल को टच नहीं करना। तो उस दिन हम क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता हमको, तो बट क्विट ऑब्वियस, आपके पास चॉइस ही नहीं होती कुछ.
3: चॉइस नहीं होती.
2: तो इनिशियली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं. मैं एक दिन बिल्कुल किसी को नहीं बोलूंगी जो शुरुआत में कर रहा है. आप कोशिश कीजिए कि आप एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे से शुरुआत करेंगे जहां आपको लगता है कि अभी कैन बी अ फैमिली टाइम. सपोज हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं शिवानी, तो हम भी ऐसा बात कर सकते हैं क्योंकि आज डिनर टाइम है, हम लोग इस टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे. एक मोबाइल बॉक्स रख दिया, उसमें मोबाइल को रख दिया गया और हम उस टाइम पे नॉर्मल रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज मम्मा आपने क्या किया, मम्मा आपका दिन कैसा निकला, डैडी आपके ऑफिस में क्या क्या हुआ. बच्चे अपना, क्योंकि वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में है, उनके साथ कैरम हो सकता है, उनके साथ कुछ बुक रीडिंग एक्टिविटी हो सकती है, कुछ स्टोरी टेलिंग. अगर मेरे दादा दादी है तो उनको स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा इवन बुजुर्ग भी हर टाइम मोबाइल को लेके बैठे होते हैं. तो उनके साथ भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनसे हम कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे खेल जो उनके जमाने में होते थे, हम वो चीज भी उनसे सीख सकते हैं. तो एज अ फैमिली वो खेला जा सकता है.
3: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्पेशली डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट या जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तब अगर हम डिजिटल डिटॉक्स पूरी तरीके से करें, ना कि सिर्फ हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि टेलीविजन का भी इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे से बातें करें, दिनचर्या के बारे में पूछे, तो बहुत ही अच्छी बात है. इससे डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जो जानकारी हमें नहीं पता है वो मिल जाएगी हम लोगों को. ये बहुत अच्छी बात है एकता सरीन जी. अब मुझे आप ये बताइए कि क्या चुनौतियां हो सकती है डिजिटल डिटॉक्स, अगर हम लैपटॉप्स यूज नहीं कर रहे, मोबाइल फोन्स यूज नहीं कर रहे, तो उसकी कोई चुनौतियां तो होंगी.
2: डेफिनेटली चैलेंजेस हर चीज में आते हैं, फॉर श्योर आते हैं. इनिशियली बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन जैसी चीजों की, बिकॉज आप इतने यूज्ड टू हो उस चीज को देखने के लिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना बड़ा हुआ है. आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में आप बैठते हो या किसी भी पार्टी में आप जाते हो, हर कोई अपने मोबाइल के साथ बैठा होता है. आप कोई रेल यात्रा कर रहे हो, आपको पुराना टाइम याद होगा कि आपस में पैसेंजर्स डिस्कस करते थे. आजकल हर कोई अपने मोबाइल के साथ में होता है. आप वो साइड सीन जो साइड में दिख रहे होते थे वो आप मिस कर जाते हो कि आसपास में क्या हो रहा है, कौन सा सीन था, कोई वाटरफॉल्स आए, कोई फील्ड्स आए. बच्चों को पता नहीं होता कि आजकल आपका ट्रैक्टर्स का यूज कैसे हो रहा होता है फील्ड्स में. उनको स्पेशली लेके जाना पड़ता है गांव में दिखाने के लिए, या पॉटर्स व्हील किस तरह से यूज होते हैं. तो ये सब चीजें बच्चे आराम से देख सकते हैं ड्यूरिंग रोड जर्नीज, ट्रेन जर्नीज. इवन मैं बोलूंगी जब हम रोड जर्नी पे भी साथ साथ हैं, उस टाइम पे भी हम पर्टिकुलरली डिजिटल डिटॉक्स रख सकते हैं कि उस टाइम पे हम यूज ना करें और शेयर करते हुए जाएं स्टोरीज, क्या हमारे आसपास में हो रहा है, क्या हम आपस में शेयर कर सकते हैं, क्या हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं. लेट्स डिस्क्राइब थिंग्स अराउंड. कुछ पेड़ों के बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उसके बारे में उनको बताया जा सकता है. किस तरह की चीजें, किस तरह से आपका वाटर फ्लो है आसपास के जगहों पे, क्या आपका वाटर इनटेक चल रहा है उस एरिया में, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो जीके भी बच्चे का बढ़ता है और हम मोबाइल से भी अपने आप को दूर करते हैं. और जहां तक चैलेंजेस की बात होती है, अगर हम उस चीज में अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे उस डिस्कशन में, तो बच्चे का ध्यान मोबाइल से दूर हटेगा. ग्रेजुअली हम भी एज एडल्ट उससे दूर हो पाएंगे.
3: जैसे एडल्ट्स की आपने बात की है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम भी डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, और स्पेशली जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, तो वो वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ में ये चीजें भी हो रही है, डिवाइस उनके साथ है, तो डिजिटल डिटॉक्स तो हो नहीं रहा है. ऐसे आपने बताया कि सीनरीज हम मिस कर रहे होते हैं जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही, सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं. तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, अगर ये हम करें सही मायने में, तो क्या उससे नींद में भी सुधार आ सकता है?
2: बिल्कुल. इंसोम्निया एक बहुत, एज ए काउंसलर मैं रेगुलरली ये केसेस देख रही हूँ. बच्चे जो देखिए, आप सोचिए 3-3 बजे तक बच्चा अगर जगा हुआ है, और सुबह तो उसका स्कूल टाइम 7 o'clock, बस का रिपोर्टिंग टाइम होता है, या इवन स्कूल पहुंचने का भी 7:30 बच्चों को पहुंचना होता है. इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी 8-7 के आसपास में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है. तो अगर बच्चा देर रात तक सोता है और मोबाइल के पास में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी नींद पर फर्क पड़ता है. और आपने देखा होगा जो ब्लू लाइट मोबाइल से आपको मिलती है, बी द स्क्रीन टाइम, तो वो डेफिनेटली, चाहे वो टेलीविजन है, और बच्चा अंधेरे में स्पेशली जब उसका यूज करता है, फॉर श्योर उसकी आई साइट पे भी फर्क पड़ता है. ना केवल ये, आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, इसके कारण बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ा है. आप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पहले होती थी वो आप नहीं कर रहे हो. आप मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बैठे हुए हो, कभी आप छोटे स्क्रीन पे हो, बी एट ए मोबाइल स्क्रीन, और कभी आप टेलीविजन पे हो, या इवन अपनी रील्स बना रहे हो, उसमें भी आप स्क्रीन पे ही बैठे हुए हो. उसके कारण कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. नॉट जस्ट कि आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, बट इवन आपको अदर डिजीज, आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज की शिकायतें आ रही है, हृदय रोग उनके बढ़ते जा रहे हैं. रीजन यही है कि उनका सिटिंग टाइम, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी सामाजिक गतिविधियां नियरली लिस्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम ये बेस्ट टाइम है वेकेशन, एक बेस्ट टाइम है, मैं पेरेंट्स को भी, एजुकेटर्स को भी, मेंटोर्स को भी, सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को। जो भी कॉलोनीज हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पर बच्चे इकट्ठा हो, उनसे कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं विच कैन बी अ लेसन फॉर एवरी फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने आप में रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो अगर पेरेंट्स करेंगे उनको देख के, बच्चा ऑटोमेटिकली वो पिकअप करता है।
3: एकता जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि मना कैसे करें हम बच्चों को, कि क्या हम एकदम से उनको डांट दें कि नहीं आप डिजिटल डिवाइसेस को नहीं छुएंगे, या थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा टाइम लगेगा जहाँ पे वो समझ सकेंगे धीरे धीरे, और क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? मतलब अगर हमने अभी मना किया बच्चे को कि नहीं आप मोबाइल फोन नहीं छुएंगे, आप ये प्रोग्राम टीवी पे नहीं देखेंगे, तो रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं? क्या वो एज ग्रुप के हिसाब से है या रिप्लेसमेंट्स आसान है बच्चों के लिए?
2: आई थिंक बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप वो समय याद कीजिए जब मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, आप याद कीजिए कि उस समय पे मोबाइल नहीं थे, तो ये तो था नहीं कि उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग अप में कुछ फर्क आया था, क्योंकि ये बच्चा मिलेनियल बच्चा है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जब वो बच्चा बॉर्न होता है उसको आसपास स्क्रीन्स ही दिखाई दिए हैं, दे आर अ डिजिटल चाइल्ड, लेकिन उनको हमें उसे समझाना है, उस लेवल पे पहुंचना है। कभी कभी हमें प्यार से बताना होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना होता है, और कभी कभी प्ले वे मेथड यूज करना होता है, लेकिन यू शुड नॉट बी रूड विद देम, ट्राई टू बी लिटिल सॉफ्ट, और करके दीजिए। जब आप खुद करोगे बट ऑब्वियसली बच्चा करेगा। मुझे याद आता है एक जर्नी, जब मैं दिल्ली से भोपाल ट्रेवल कर रही थी, उससे मेरा बेटा वॉज नियरली 6-7 ईयर्स का रहा होगा, तो मुझे बुक का बहुत शौक है, मैं रीडिंग बहुत करती हूँ, तो मेरे पास, मैं अपना एक नॉर्मल रीडिंग कर रही थी उस टाइम, और बेटे को क्योंकि कॉमिक्स का बहुत शौक था, उसने

0: मजा आएगा, उसको एंजॉय करेगा वो चीज, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज हम करवा सकते हैं। बच्चे के साथ आप साइकिलिंग ट्रिप पे जा सकते हो,
1: साइकिलिंग,
0: लेट्स गो साइकिलिंग टुगेदर, तो आज फैमिली साइकिलिंग डे है, या कुछ कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, आज फैमिली टाइम है तो कॉलोनी के 5-6 फैमिली से मिलकर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, आज हम स्विमिंग पूल में साथ में जा रहे हैं एंड वी हैव अ लिटिल लिटिल फन टाइम, आज स्विमिंग होगा एंड वी हैव अ लिटिल फन टाइम। हाइड एंड सीक कैन बी अ ग्रेट गेम, धूप ज्यादा है, गर्मी है, हम अंदर डार्क रूम खेल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और उनके लेवल पे जाके की जा सकती हैं। कुछ हम जोक्स का राउंड, जैसे हम जोक्स, कुछ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कीजिए उनके साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं बच्चों के साथ स्पिना यान करती हूँ, स्पिना यान इज लाइक आई स्टार्ट अ स्टोरी एंड दे हैव टू कंटिन्यू इट। सो शिवानी, आज टुडे वाज अ वेरी ग्रेट डे, यू नो व्हाट हैपेंड, आई मेट अ फिल्म स्टार, you know, so what happened after that, Shivani will ask me that,
1: okay.
0: And then we just continue with the storyline in our own manner. Similarly, I'll ask you, Shivani, so aaj morning mein aapke saath kya kya hua, Shivani? So just tell me something about yourself. So it's a spinner yarn where we give a opening line and they continue with their own yarns and uski koi right or wrong nahi hota, aur bachche ko we can give chocolates and anything, any prizes, small prizes can be given to them.
1: ओके, ये शायद वही गेम है जिसमें हम कुछ नेगेटिव नहीं कहते, ना नहीं कहते, हम कंटिन्यू कर रहे होते स्टोरी को,
0: बिल्ड अप स्टोरी को कंटिन्यू करते जाते हैं, व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। अगर 10 मेंबर्स हैं तो एवरीबॉडी कैन गिव अ टर्न, हम एक दूसरे को टर्न्स दे सकते हैं, वी कैन इवन हैव फायरलेस कुकिंग टुगेदर, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे आज, तो लेट अ चाइल्ड मेक अ लेमनेड समथिंग, सैंडविचेस कैन बी मेड, भेल पूरी कैन बी अ ग्रेट आइडिया। मैं तो उस दिन बच्चा किचन में और आप उसको बिल्कुल कुछ ना नहीं बोलने वाले, वो कितना भी मेसी हो जाए, प्लेटफॉर्म को कितना भी गंदा कर दे, बट यू जस्ट एंजॉय कि बच्चा कुछ कर
1: रहे हैं,
0: दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट वेरी मच।
1: आपने एकता जी बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स बताए जिसका ध्यान हम रखेंगे और की जा सकती है सारी रिप्लेसमेंट्स, कुकिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। हम जब बच्चों को मना करते हैं कि नहीं आप जो है अभी डिजिटल डिटॉक्स में हैं, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, आप किताब पढ़िए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है किताब की ओर, क्योंकि हमारा भी समय ऐसा ही रहा है जहाँ पे हम किताबों के बारे में, किताबों को ज्यादा पढ़ा करते थे और किताबों से वाबस्ता होते थे ज्यादातर। तो जब हम बच्चों को बोलते हैं किताब पढ़ने के लिए, ये कितनी सही बात है, कितना मतलब किताब इतनी जरूरी क्यों है?
0: देखिए, किताबों से कनेक्ट करना, मुझे लगता है हर घर का एक अनसेट रूल होना बहुत जरूरी है। हमें हर जगह रूल्स लिखना जरूरी नहीं होता, अनसेट रूल हो जाना चाहिए एक जगह पे कि ओके आज एक स्टोरी बुक, मैं तो बोलूंगी स्टोरी बुक भी क्यों, स्टोरी से शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी कहानियां कि ओके आज आपने क्या पढ़ा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिससे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम में अपने ग्रंथों से बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: अपने कल्चर से कनेक्ट करना, क्योंकि आज तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी बात करते हैं
1: भगवद गीता के,
0: तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करें। एंड आई थिंक भगवदगीता अपने आप में एक मैनुअल है, इट्स नोन एज अ लाइफ मैनुअल इन एवरीवन्स लाइफ, रामायण इज अ मैनुअल। सो अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं और उनकी स्टोरीज उनको कनेक्ट करते हैं, स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लेके आते हैं, एंड एट अ टाइम हम उनको बोलते हैं आज अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा होते तो आप क्या करते, तो बच्चे आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, दे विल आस्क यू रीजन, तो आपके पास रीजन पहले होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को किसी भी किताब से जोड़ रहे हो, ओके रस्किन बॉन्ड, सो क्यों रस्किन बॉन्ड, ठीक है रबिन्द्रनाथ टैगोर, तो क्यों रबिन्द्रनाथ टैगोर, रामायण तो क्यों रामायण। तो बच्चे को जब हम रीजन देते हैं, ये बच्चा जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रीजन मानती है, तो अगर आप रीजन देके चलोगे और सॉफ्टली उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा बहुत इजीली कनेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आप खुद मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चों को बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर ले,
1: तू नहीं हो पाएगा,
0: तू रीडिंग कर ले, तू कॉमिक पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बी अ रोल मॉडल, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट, ओके उस समय पापा घर पे आए, 6 बजे का टाइम है, चाय सर्व हो रही है, बच्चे के लिए आपने दूध सर्व किया है, लेट्स हैव अ रीडिंग टाइम, इट्स अ कार्पेट रीडिंग, आप टेबल पे भी मत बच्चे को बैठिए, कार्पेट पर बिठा दीजिए, लेट अ चाइल्ड स्लेप डाउन, रिलैक्स होके कंफर्टेबल चेयर पे हो जाए, बच्चा रीड करे, जो बुक उसको चाहिए वो बुक पढ़े, उसको एक चॉइसेस दे दीजिए। आजकल तो इवन आपकी कार्पेट बुक्स अवेलेबल है, बच्चे को रख लीजिए बुक्स, इवन आजकल वॉल्यूम बुक्स अवेलेबल है, द वॉइस राइट प्रोनंसिएशन भी बच्चे को समझ में आएगा। और उस टाइम पे बच्चे को टोकिए मत, अगर बच्चा कुछ गलत भी रीड कर रहा है, डोंट से योर रीडिंग रॉन्ग, दिस इज रीडिंग फॉर प्लेजर, बच्चा उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने वाला, लेट द चाइल्ड एंजॉय रीडिंग, अगर बच्चा एंजॉय करना शुरू करेगा तो उसको हर तरह की रीडिंग में मजा आएगा।
1: और यही बात एडल्ट्स के लिए भी लागू है एकदम।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, जहां तक हम इस फास्टिंग की बात करते हैं, मोबाइल

0: फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, ये कितनी अवधि के लिए होना चाहिए? मतलब एक दिन, एक सप्ताह, उसके बाद क्या? मतलब कब तक हम उनको बोले, या कि दिन में हम बांध ले कि नहीं इतना समय आप किताबें पढ़ेंगे या आप इंटरनेट पे रहेंगे? मतलब हमारा किस तरीके से हम एक टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए हम बच्चों को बता पाए कि उनके लिए क्या सही है, कैसे डिजिटल डिटॉक्स करना है, ताकि वो लोग भी इस चीज से ऊबे नहीं, बोर नहीं हो।
1: यहाँ मैं बोलूंगी कि हम उनका टाइम टेबल ना बनाएं, उनसे उनका टाइम टेबल बनवाएं।
0: ओके।
1: हम उनको डिक्टेट करने वाले स्टेज में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो लोग काफी लॉन्ग ड्यूरेशन, मैं बोलूंगी कोविड टाइम से उसको यूज कर रहे हैं। सो अब हम उस कंडीशन से बाहर आ चुके हैं कि हम उनको डिक्टेट करें। अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। हम उनको इन ऑपोजिट वे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बना रही हूँ बेटा, आपको अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बनाना है। आई एम प्लानिंग कि मैं 6 से 7 शाम को मोबाइल नहीं देखूंगी, आपके हिसाब से कौन सा टाइम आपके लिए ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटा हम मोबाइल नहीं देखेंगे या 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। इट कैन स्टार्ट विद 1 आवर और ग्रेजुअली हम उसको लंबा टाइम लेके जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस 1 घंटे में क्या कर सकता हूँ, फिर मम्मा वो पूछेगा आपसे। सो आप वहां पे चॉइसेस दे सकते हो, उससे बुलवाइए। ओके, उस टाइम पे आप फुटबॉल खेलना पसंद करोगे क्या? या उस टाइम क्या हम फैमिली डिस्कशन करें क्या? या उस टाइम आप स्विमिंग पूल जाओगे क्या बेटा? और अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में, तो व्हाई नॉट आप डांसिंग भी जा सकते हो। सो लेट द चाइल्ड डिसाइड नाउ। जब हम बच्चे को मौका देते हैं तो वो आपकी बात सुनता है
0: जी।
1: अगर आप उसको डिक्टेट करते हो तो बच्चे को लगता है कि वो थोड़े समय के लिए है और वो उसको भूल जाएगा। द आइडिया इज लेट द चाइल्ड डिसाइड। तो आप उसको बोल सकते हो कि ओके, जो आपने प्लान किया था वो वर्क कर रहा है क्या? 1 हफ्ते बाद हम एक क्वेरी कर सकते हैं, बेटा आप मुझे चेक करना मेरा, अगर मैं 6 से 7 मैं कुछ और मोबाइल लेके बैठी हूँ तो प्लीज मुझे बताना कि मैंने मोबाइल उठाया था उस टाइम पे। सो जस्ट चेक, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू, लेट्स मॉनिटर ईच अदर।
0: ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लान है, जहाँ पे हम बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि बताइए आपका प्लान क्या है, उसी मुताबिक हम भी आपसे बात करेंगे। और देखा गया है कि आजकल जैसे सामाजिक संबंध है, सोशलाइजिंग की अगर बात करें, तो लोगों को लगता है बच्चों को स्पेशली कि हम तो सबसे मिल रहे हैं, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ये मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगता है यही सामाजिक संबंध है। तो अगर हम डिजिटल डिटॉक्स भी करते तो उससे हमारे सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से ठीक हो सकते हैं?
1: इसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्रायोरिटी अभी क्या लगता है कि उनको मोबाइल देखना, उनका स्क्रीन टाइम इतना बड़ा हुआ है। सो लेट्स मेक इट एज अ फैमिली डिसीजन कि इस टाइम पे हम 4 फैमिलीज आपस में मिल रहे हैं तो उस समय पे हम लोग मोबाइल कैरी नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम कुछ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, उस टाइम पे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, और पॉइंट आउट मत कीजिए बच्चा क्यों घबराता है सामाजिक विधियों से, कि उसको लगता है उससे पूछा जाएगा।
0: अच्छा,
1: कि आपके मार्क्स कैसे आए बेटा।
0: राइट।
1: तो इस तरह की चीजें भी हम प्लान कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो बच्चा नेगेटिव चीजों से भागना है। उसको क्यों अच्छा लगता है फेसबुक फ्रेंड्स, क्यों अच्छे लगते हैं डिजिटल फ्रेंड्स, कि वहां पे उससे क्वेश्चनिंग नहीं होती है। वो जो कर रहा होता है उसको लाइक्स मिलते हैं, तो बेसिकली वो लाइक्स का भूखा है। उसको लाइक्स दीजिए, आज यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, लाइक योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली वंडरफुल। सो उसको आप अगर लाइक्स देते रहोगे, लाइव लाइक्स मिलेंगे, तो वो क्यों डिजिटल की तरफ जाएगा?
0: सही बात।
1: सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली में तारीफ कीजिए, किसी और का इंतजार मत कीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप एक दूसरे की तारीफ कीजिए। और बच्चा वो सीखेगा, घर में ही सीखेगा कि हमको एक दूसरे की तारीफ करना इम्पोर्टेंट है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हम क्यों देखते हैं हमको कितने लाइक्स मिले, क्योंकि हमें घर में तारीफ नहीं मिल रही।
0: सही बात।
1: ये मैं अडल्ट से भी बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ जब मेरे पास एज अ मैरिटल काउंसलिंग आते हैं तो मैं बोलती हूँ, एक दूसरे की तारीफ आपने एक दूसरे को आई लव यू कब बोला था लास्ट? सो हैव यू गिवन ईच अदर अ हग आफ्टर लॉन्ग टाइम? सो जस्ट ट्राई टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। बच्चा जो देखता है वो एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करता है। सो लेट्स हैव अ लाइकिंग फॉर ईच अदर। तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो फैमिली में एक पॉजिटिव ऑरा देखेगा, थिंग्स विल गो ऑन।
0: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही एकता सरीन जी, कि कितना जरूरी है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ करना। बच्चे भी उससे सीखते, उससे मनोबल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और कंपैशन भी पैदा होता है, एक एम्पैथी पैदा होती है, जिससे बच्चों में सुधार आ जाता है। सो अब हमने किताबों की भी बातें की, मुझे आप बताइए आजकल जैसे ऑडियो बुक्स की आपने बात की, जो कि अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर बच्चे चाहते कि नहीं हम जो है मोबाइल से ही PDF पे या किताबें डाउनलोड करके पढ़ें, तो ये ठीक है कि उससे भी कुछ असर पड़ता है आंखों पे, अगर मोबाइल पे ही किताबें पढ़ते रहे बच्चे?
1: देखिए मोबाइल पे किताबें पढ़ने से बेटर है पीडीएफ वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि मोबाइल पे अभी किंडल पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इवन मैं आपसे शेयर कर लूंगी कुछ कुछ इस तरह के साइट्स भी जो हम आराम से बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि फिजिकल बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्टेड रहते हो किसी फिजिकल बुक से, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली, और हम बिल्कुल बच्चों को बांधे नहीं कि बच्चा यही पढ़ना है। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट है बहुत सारी स्पोर्ट्स पे बुक्स है, अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट इंसाइक्लोपीडियाज पे है बच्चा उसको कनेक्ट करे अपने आप को, अगर उसको साइंस पे इंटरेस्ट है बच्चा साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है, अगर फिक्शन में इंटरेस्ट है तो बच्चा फिक्शन रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है। तो उसकी बेसिकली स्किल्स को हमें बढ़ाना है कि वो स्किल्स पे अपने आप को फोकस करे, कि हो सकता है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाए पढ़ने के बाद, उसकी विकैबुलरी बहुत एनरिच हो जाए। तो अगर वो बढ़ती है, आप उसको ये भी साथ में बोलिए कि ओके आपने अगर ये एक पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी है आपने ये तीन वर्ड्स उसमें से देखे हैं तो हम उसको कैसे और अपनी उस विकैबुलरी को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लैंग्वेज में, इवन दैट विल हेल्प यू आउट एनरिच योर विकैबुलरी। तो तारीफ कीजिए, ओके आज आपने इस वर्ड का यूज किया, दैट्स वेरी नाइस, ये वर्ड आपने कौन सी बुक में पढ़ा था, तो बच्चा आपको बताएगा। इवन आप भी कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हो और आपको भी अंदाजा रहेगा।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे एक खेल जैसा माहौल भी शुरू हो जाता है जहाँ पे हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, जो नए वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पूछते हैं, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, क्या बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है जब वो लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्या उनके ध्यान केंद्रित करने में भी सुधार होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम देख रहा है तो उसका नोटिफिकेशन थ्रू आउट वो देखता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली उसका बढ़ेगा क्योंकि वो उस चीज से हटके वो कुछ और नया कर रहा है और उसका बराबर ध्यान से स्क्रीन में नहीं है, वो रीडिंग कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शंस कर रहा है, उससे डेफिनेटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही बढ़ता है। सो बच्चे को अगर हम उस एक घंटे के लिए सिंपली मेडिटेशन के लिए भी बोलते हैं, या ठीक है आप बेटा आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाओ, या आप सिर्फ एक जगह पर सिर्फ सिटिंग दे दो, क्योंकि बच्चों को आजकल एक जगह पर बैठना भी अपने आप में एक टास्क होता है। तो ठीक है आज हम एक जगह पर बैठते हैं, नॉट मूव फ्रॉम देयर, सो लेट्स सिट। यहाँ हम उनको फोकस करते हैं कि कौन आंखें पहले ब्लिंक नहीं करेगा, उससे भी वो गेम भी गेम का गेम हो जाता है कि ठीक है हम लोग आपस में गेम खेलते हैं जिसमें आंखें कौन पहले ब्लिंक नहीं करेगा, दैट इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसमें भी हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आ रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं उन चीजों को। तो डे बाय डे अगर हम बच्चे के साथ बैठेंगे और वो सब करेंगे, या एक पॉइंट लगा लीजिए आप वॉल पे और बच्चा उसको देखेगा, तो कैसे हम देख सकते हैं, तो वन बाय वन आप ट्राई कर सकते हो, पेंसिल एक सामने रखिए और पेंसिल को बच्चा मूव करे टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट, उसका आई मूवमेंट बढ़ेगा, उसमें उसका आई से कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेंटल लेवल, पीस दोनों में फर्क आएगा।
0: ओके, पीस की जहाँ आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा तनाव आ जाता है इस वजह से कि ज्यादा चीजें यूट्यूब पे देख रहे हैं या बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ गया है, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कंटेंट को हम कैसे समाएं, क्या करें इस कंटेंट का। तो जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं, क्या इसमें टेलीविजन भी आता है? कि वैसे तो आजकल बच्चे टेलीविजन पे रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं देखते, यूट्यूब पे ही जो उनका कंटेंट होता है वही देखते हैं, एड्स को स्किप करके करते रहते हैं, प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमें टेलीविजन का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कार्टून नेटवर्क्स देखना या ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत जो है लगाम लगानी पड़ेगी?
1: बिल्कुल, देखिए डिजिटल डिटॉक्स में जब बात आती है तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों वर्क करते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन जैसे कि आपने खुद बताया कि बिग स्क्रीन बच्चे को लिमिटेड टाइम के लिए ही चांस मिलता है, मोबाइल छोटा स्क्रीन उसके पास हमेशा ही रहता है
0: जी।
1: लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन तो स्क्रीन ही है, अगर आप लाइट ऑफ करके बराबर टीवी भी देख रहे हो, आजकल तो बच्चे इवन कनेक्ट भी कर लेते हैं, कनेक्ट करके यूट्यूब भी आप टेलीविजन पे देख लेते हो, तो इवन ऑल दोस थिंग्स मैटर, स्क्रीन तो स्क्रीन ही है ना मैम, तो डेफिनेटली उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल इलनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लैक करता है वहां पर। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स, अगर हमने प्लान किया है तो उस समय पे हम टेलीविजन भी नहीं देखेंगे।
0: ओके ओके, तो आज हमने बातें की इस बारे में एकता सरीन जी से, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आज हमें हासिल हुई, और कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, और जो डिजिटल मीडिया है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, और बच्चों का और मन लगा रहेगा इन कामों में फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रेडियो आजाद हिंद पर आई। तो ये है देश का चैनल देश के लिए, टेक गुरु प्रोग्राम हम आपके लिए लेते आएंगे जिसमें हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एकता सरीन जी।
1: थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस स्पीकिंग टू यू शिवानी जी।
0: थैंक यू सो मच। नमस्कार।
1: नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत की पहचान केवल उसके इतिहास की प्राचीनता से नहीं होती। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति, उन महापुरुषों में निहित होती है जो समय के प्रवाह में उसकी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। कुछ व्यक्तित्व तलवार से इतिहास रचते हैं, कुछ नेतृत्व से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और कुछ अपने चिंतन तथा शोध से एक पूरी सभ्यता को स्वयं अपने बारे में सोचने का नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम ऐसे ही मनीषी की जीवन यात्रा को जानेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को केवल अध्ययन का विषय नहीं माना बल्कि उसे भारत की जीवित चेतना के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को नए अर्थ दिए, संग्रहालयों में सुरक्षित मूर्तियों को इतिहास की भाषा बना दिया। भारतीय कला, साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति के बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान की नई दिशाएं खोल दी। आज के हमारे भारत विभूति हैं वासुदेव शरण अग्रवाल।
3: उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक भारत के बौद्धिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ओर देश स्वतंत्रता की आकांक्षा से प्रेरित हो रहा था तो दूसरी ओर भारतीय विद्वानों के मन में अपने अतीत को समझने की तीव्र जिज्ञासा भी जन्म ले रही थी। लंबे समय तक भारत के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन विदेशी दृष्टि से किया जाता रहा था, भारतीय स्रोतों को सीमित महत्व दिया जाता था और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अक्सर केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित करके देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ भारतीय विद्वानों ने यह अनुभव किया कि यदि भारत को सही अर्थों में समझना है तो उसके अपने ग्रंथों, उसकी भाषाओं, उसकी कला, उसके पुरातात्विक अवशेषों और उसकी लोक परंपराओं को एक साथ पढ़ना होगा। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं होता, वो समाज की स्मृति होता है, संस्कृति उसका आत्मबोध होती है और साहित्य उस आत्मा की अभिव्यक्ति। इन्हीं विचारों के बीच एक ऐसा युवा विद्वान उभर कर सामने आया जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने के लिए समर्पित कर दिया।
2: उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार शिक्षित था, भारतीय संस्कारों से समृद्ध था, घर का वातावरण अध्ययन और अनुशासन से भरा हुआ था। यही वातावरण उस बालक के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल में जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते थे, उन्हें इतिहास की घटनाएं आकर्षित करती थीं, प्राचीन कथाएं उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती थीं, संस्कृत भाषा की संरचना उन्हें आश्चर्यचकित करती थी और भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ उन्हें लगातार अपनी ओर खींचते थे। कहा जाता है कि प्रत्येक महान शोधकर्ता के भीतर एक जिज्ञासु बालक हमेशा जीवित रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के भीतर भी वही जिज्ञासा जीवन भर बनी रही। वे किसी तथ्य को केवल स्वीकार नहीं करते थे, उसके पीछे छिपे प्रमाणों को भी खोजते थे, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते थे और फिर उसे व्यापक भारतीय परिपेक्ष में रखकर देखते थे।
3: श्रोताओं, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका अध्ययन निरंतर आगे बढ़ता गया। विद्यार्थी जीवन में ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी रुचि सामान्य विषयों की अपेक्षा भारतीय इतिहास, संस्कृत साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन में अधिक है। उस समय देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन का नया वातावरण बन रहा था। नई पीढ़ी अपने अतीत को आधुनिक शोध पद्धतियों के माध्यम से समझना चाहती थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इसी दिशा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान इतिहास, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। बाद में शोध कार्य के लिए उन्होंने ऐसा विषय चुना जिसने उनके संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। महर्षि पाणिनि भारतीय व्याकरण के महान आचार्य, सदियों से विद्वान उनकी अष्टाध्यायी का अध्ययन भाषा विज्ञान के महान ग्रंथ के रूप में करते आए थे, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसमें कुछ और देखा। उन्हें लगा कि ग्रंथ केवल व्याकरण का नियम संग्रह नहीं है, इसके भीतर उस समय के भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी सुरक्षित है। और यहीं से आरंभ हुई उनके जीवन की वो शोध यात्रा जिसने आगे चलकर भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक नया आधार प्रदान किया।
2: उस समय अधिकांश लोगों की दृष्टि में अष्टाध्यायी एक महान व्याकरण ग्रंथ थी, भाषा के नियमों को समझने का अनुपम आधार। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसे केवल व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसके प्रत्येक सूत्र के पीछे छिपे जीवन को पहचानने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि किसी ग्रंथ में नगरों का उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख है, व्यवसायों का उल्लेख है, शिक्षा, कृषि, शिल्प, उत्सव और सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है, तो वो केवल भाषा का ग्रंथ नहीं रह जाता, वो अपने समय का सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन जाता है। इसी दृष्टि ने उनके शोध को एक नई दिशा दी। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों में बिखरी हुई सूचनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ किया, एक एक संदर्भ को अन्य प्राचीन स्रोतों से जोड़ कर देखा, जहां आवश्यकता हुई वहां पुरातात्विक प्रमाणों का सहारा लिया, साहित्य, इतिहास और पुरातत्व को एक साथ रखकर उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन का ऐसा स्वरूप सामने रखा जो उस समय तक बहुत कम देखने को मिला था।
3: जी हाँ, हालांकि ये कार्य सरल नहीं था। इसके लिए केवल संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इतिहास की समझ भी चाहिए थी, भारतीय समाज की संरचना का अध्ययन भी आवश्यक था, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों और कला के इतिहास का भी गहरा ज्ञान अपेक्षित था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सभी क्षेत्रों का गंभीर अध्ययन किया और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी विद्वान के रूप में विकसित होता गया। उनका विश्वास था कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उपलब्ध प्रमाणों का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अनुमान के स्थान पर साक्ष्य और कल्पना के स्थान पर तर्क को महत्व देना चाहिए। यही कारण था कि उनके शोध को विद्वानों ने अत्यंत विश्वसनीय माना। उनके लेखन में भावनाएं थीं, लेकिन भावुकता नहीं थी। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन तथ्यों से समझौता नहीं था।
2: उनके अध्ययन का दायरा लगातार विस्तृत होता गया। अब उनकी रुचि केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, वे प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करने लगे, मंदिरों की स्थापत्य परंपरा को समझने लगे, सिक्कों, अभिलेखों और पुरावशेषों को ध्यान से देखने लगे। उनके लिए ये सभी वस्तुएं इतिहास की मौन साक्षी थीं। यदि इन्हें सही दृष्टि से पढ़ा जाए तो ये अपने समय की अनेक अनकही बातें बता सकती थीं। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय कला को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं देखा, उनके लिए प्रत्येक प्रतिमा अपने समय के समाज का परिचय थी। किसी मूर्ति की मुद्रा, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी निर्माण शैली, इन सब के भीतर उस युग की सांस्कृतिक चेतना छिपी हुई थी। वे इन संकेतों को पढ़ते थे और फिर उन्हें भारतीय इतिहास की व्यापक धारा से जोड़कर देखते थे।
3: धीरे धीरे विद्वानों के बीच उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि ये युवा शोधकर्ता केवल नई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई पद्धति विकसित कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इतिहास को अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता। साहित्य, कला, पुरातत्व, भाषा और समाज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक को समझना है तो दूसरे को भी साथ लेकर चलना होगा। यही समग्र दृष्टि आगे चलकर उनके संपूर्ण लेखन की पहचान बनी। आने वाले वर्षों में उन्होंने जिन संस्थानों में कार्य किया, जिन ग्रंथों की रचना की और जिन शोधों का नेतृत्व किया, उन सब में यही विचार स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की संस्कृति एक अखंड परंपरा है। उसे समझने के लिए केवल अतीत को देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके निरंतर प्रवाह को पहचानना भी आवश्यक है।
2: लेकिन ये तो उनके जीवन की केवल शुरुआत थी। अभी उन्हें संग्रहालयों की दुनिया में प्रवेश करना था, भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन को नई दिशा देनी थी, देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और अपने शोध तथा लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलानी थी। यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वो अध्याय जिसने वासुदेव शरण अग्रवाल को केवल एक विद्वान नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सजग प्रहरी के रूप में स्थापित कर दिया।
3: बहुत से लोग उन्हें केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मानते हैं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक थी। वे मानते थे कि संग्रहालय केवल अतीत को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है, वे ऐसी जीवंत पाठशालाएं हैं जहां बिना किसी शब्द के इतिहास स्वयं बोलता है, जहां पत्थर भी स्वयं की कहानी कहते हैं और जहां संस्कृति केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। यही सोच उन्हें संग्रहालय विज्ञान की ओर ले गई। उनके लिए ये केवल एक नया कार्यक्षेत्र नहीं था, ये भारतीय संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप में समझने का अवसर था।
2: सन 1931 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मथुरा संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। उस समय मथुरा संग्रहालय देश के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिना जाता था। यहाँ कुषाण, शुंग, गुप्त और अन्य अनेक कालों की दुर्लभ मूर्तियां सुरक्षित थीं। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में मथुरा शैली का विशेष स्थान था, लेकिन उसके व्यवस्थित अध्ययन और सांस्कृतिक विश्लेषण की दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना शेष था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने संग्रहालय की प्रत्येक दीर्घा का अध्ययन किया, प्रत्येक प्रतिमा को ध्यान से देखा, उसके निर्माण काल, उसकी शैली, उसके प्रतीकों और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास किया। उनके लिए ये केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, ये भारतीय कला के माध्यम से भारतीय सभ्यता को पढ़ने का अवसर था।
3: श्रोताओं, मथुरा की धरती सदियों से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बौद्ध, जैन और वैष्णव परंपराओं की असंख्य कलाकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन धरोहरों को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं किस प्रकार एक ही भूमि पर विकसित हुईं और कैसे उन्होंने भारतीय कला को समृद्ध बनाया।
2: लगभग एक दशक तक मथुरा में कार्य करने के बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान केवल एक संग्रहालय अधिकारी के रूप में नहीं रही, वे भारतीय कला और संस्कृति के ऐसे विद्वान बन चुके थे जिनकी दृष्टि इतिहास के अनेक स्रोतों को एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। उनके शोध ने ये सिद्ध कर दिया था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साहित्य, पुरातत्व, कला और इतिहास को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यहीं से उनके जीवन की यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ी। अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां निभानी थीं, भारतीय संग्रहालयों के विकास में नई भूमिका निभानी थी और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संस्थानों को नई दिशा देनी थी।
3: सन 1940 में वासुदेव शरण अग्रवाल को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय का दायित्व सौंपा गया। ये उनके ज्ञान, अनुभव और कार्य कुशलता की सार्वजनिक स्वीकृति थी। मथुरा में किए गए उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल संग्रहालयों का संचालन करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की असाधारण क्षमता रखते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद भी उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संग्रहालय को केवल वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं माना, बल्कि उसे शिक्षा और शोध का सक्रिय केंद्र बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी संग्रहालय का वास्तविक महत्व उसके संग्रह की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो समाज को अपने इतिहास से कितना जोड़ पाता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रतिमा को देखकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगे, यदि कोई शोधार्थी किसी अभिलेख से इतिहास की नई कड़ी खोज ले और यदि कोई सामान्य नागरिक अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व महसूस करे, तभी संग्रहालय अपना उद्देश्य पूरा करता है।
2: इसी अवधि में उनका लेखन भी निरंतर आगे बढ़ता रहा। वे जहां एक ओर संग्रहालयों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर गंभीर शोध भी कर रहे थे। उन्होंने अनेक शोध लेख लिखे, व्याख्यान दिए और प्राचीन भारतीय जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनके अध्ययन का दायरा इतना व्यापक था कि इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला और संस्कृति के विद्यार्थी समान रूप से उनके कार्यों से लाभान्वित होने लगे।
3: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब वे दिल्ली से जुड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यों में सक्रिय हुए। स्वतंत्र भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में देश को ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी जो भारतीय विरासत को केवल सुरक्षित ही न रखें बल्कि उसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी करें। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों के विकास, पुरावशेषों के संरक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि भारतीय धरोहरों को केवल अतीत की वस्तुएं मानकर संग्रहित कर लेना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना और समाज तक उनका महत्व पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर भारतीय संग्रहालय आंदोलन की आधारशिला बनी।
2: वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व जितना गंभीर था उतना ही विनम्र भी था। वे मानते थे कि शोधकर्ता का पहला गुण जिज्ञासा है और दूसरा गुण धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी गंभीर अध्ययन संभव नहीं है। वे अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को हमेशा प्रमाण आधारित अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उनका विश्वास था कि इतिहास केवल कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए प्रत्येक तथ्य की सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक होती है। यही कारण था कि उनके साथ कार्य करने वाले अनेक युवा शोधार्थी आगे चलकर भारतीय इतिहास, कला और पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान बने। वे केवल शिक्षक नहीं थे बल्कि शोध की संस्कृति विकसित करने वाले मार्गदर्शक भी थे।
3: धीरे धीरे वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन का पर्याय बनने लगा। देश के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और शोध संस्थानों में उनके कार्यों का सम्मान किया जाने लगा। लेकिन उनके लिए ये सब व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थी। वे मानते थे कि यदि उनके प्रयासों से भारतीय समाज अपनी संस्कृति को थोड़ा और गहराई से समझ सके तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अब उनके जीवन की यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाली थी जहां उनका लेखन भारतीय सांस्कृतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर बन गया और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गए।
2: वासुदेव शरण अग्रवाल मानते थे कि यदि शोध केवल पुस्तकों और अभिलेखों तक सीमित रह जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो समाज तक पहुंचे, नई पीढ़ी को प्रेरित करे और लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। यही कारण था कि उन्होंने अपने शोध को केवल विद्वानों के बीच सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसी भाषा और ऐसी शैली अपनाई जिसमें गंभीर विषय भी सहज रूप से समझे जा सकें। उनके लेखन में गहन अध्ययन का आधार था लेकिन प्रस्तुति में सरलता थी। वे कठिन विषयों को भी इस प्रकार समझते थे कि पाठक केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करता था बल्कि उस विषय के साथ आत्मीय रूप से जुड़ भी जाता था। यही विशेषता उन्हें अपने समय के अनेक विद्वानों से अलग पहचान देती है।
3: उनकी सबसे महत्वपूर्ण विद्वत उपलब्धियों में महर्षि पाणिनि पर किया गया शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्षों के अध्ययन और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी केवल संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, उसके भीतर तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यापार, प्रशासन, शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य संकेत सुरक्षित हैं। इन संकेतों को एक सूत्र में जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने धैर्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर इसे संभव बनाया। बाद में यही शोध एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ और भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस कृति ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों का अध्ययन आधुनिक शोध पद्धति के साथ किया जाए तो इतिहास के अनेक नए आयाम सामने आ सकते हैं।
2: पाणिनि के अतिरिक्त उन्होंने महाभारत, पुराण, संस्कृत साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर भी गंभीर अध्ययन किया। उनके लिए ये ग्रंथ केवल धार्मिक या साहित्यिक कृतियां नहीं थे, वे इन्हें भारतीय समाज के विकास की जीवंत स्मृतियों के रूप में देखते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि कला को उसके सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर पढ़ा जाए तो वो इतिहास की अनेक अनसुलझी कड़ियों को स्पष्ट कर सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन आज भी कला इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी माने जाते हैं।
3: वासुदेव शरण अग्रवाल केवल एक शोधकर्ता या संग्रहालय विशेषज्ञ नहीं थे, वे एक ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने ज्ञान को जीवंत परंपरा के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर याद करने की अपेक्षा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जिज्ञासा ही प्रत्येक शोध का पहला चरण होती है और जब तक मन में प्रश्न जीवित रहते हैं तब तक ज्ञान की यात्रा भी आगे बढ़ती रहती है। अध्यापन के दौरान वे अपने विद्यार्थियों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते थे, वे उन्हें प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक स्रोत का अपना महत्व है, यदि इन सभी स्रोतों को एक साथ पढ़ा जाए तभी इतिहास की संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अपने लंबे अध्ययन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। भारतीय कला संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य और इतिहास पर लिखी गई उनकी पुस्तकों ने शोध की नई पीढ़ी को दिशा प्रदान की। भारतीय कला और संस्कृति पर कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए उनके अध्ययन आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। समय बीतने के साथ अनेक नई शोध पद्धतियां विकसित हुईं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा स्थापित प्रमाण आधारित अध्ययन की परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2: उनकी विद्वत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित दायित्व सौंपे गए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और शोध मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जाता था। वे जहां भी जाते वहां केवल व्याख्यान नहीं देते थे बल्कि लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की नई जिज्ञासा भी जगाते थे। भारतीय संस्कृति पर उनके मौलिक लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक लेखक के रूप में उनकी उपलब्धि नहीं था बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में उनके असाधारण योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति भी था। ये उस साधना का सम्मान था जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का ध्येय बना लिया था। समय के साथ वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक ऐसे विद्वान के रूप में स्थापित हो चुका था जिसकी पहचान किसी एक विषय तक सीमित नहीं थी। वो इतिहासकार भी थे, कला मर्मज्ञ भी, पुरातत्व के गंभीर अध्येता भी और भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याता भी जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का सतत प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में ये सिद्ध किया कि संस्कृति केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं होती बल्कि वो समाज की जीवित चेतना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहती है।
3: उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए केवल अतीत का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसे वर्तमान जीवन में भी अनुभव करना आवश्यक है। वे अक्सर इस बात पर बल देते थे कि हमारी परंपराएं केवल ग्रंथों में सुरक्षित नहीं है, वे हमारे उत्सवों में हैं, वे हमारे लोक गीतों में हैं, हमारी भाषाओं में हैं, हमारे शिल्प में हैं और हमारे दैनिक जीवन की अनेक छोटी छोटी परंपराओं में भी जीवित हैं। यदि हम इन्हें पहचान सकें तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता को सहज रूप से समझ सकते हैं।
2: विद्वानों का मानना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक समन्वित दृष्टि प्रदान की। उन्होंने ये स्थापित किया कि जब तक इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला, भाषा और लोक परंपराओं का संयुक्त अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय सभ्यता की व्यापकता को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है।
3: दोस्तों, ज्ञान के प्रति उनकी साधना जीवन के अंतिम वर्षों तक चलती रही। उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि अब सीखने के लिए कुछ शेष नहीं है। प्रत्येक नया प्रमाण, प्रत्येक नया शोध और प्रत्येक नई खोज उन्हें उतनी ही उत्सुकता से आकर्षित करती थी जितनी उनके विद्यार्थी जीवन में करती थी। शायद यही किसी सच्चे शोधकर्ता की पहचान भी होती है कि वो जीवन भर स्वयं को विद्यार्थी मानकर ही ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन इसी निरंतर साधना का उदाहरण है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि यदि अध्ययन के साथ समर्पण जुड़ जाए और ज्ञान के साथ विनम्रता बनी रहे तो व्यक्ति केवल एक सफल विद्वान ही नहीं बनता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा भी बन जाता है।
2: सन 1966 में वासुदेव शरण अग्रवाल का देहावसान हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय सांस्कृतिक जगत ने एक ऐसे मनीषी को खो दिया जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति की साधना के लिए समर्पित कर दिया था। किंतु कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहते, वे अपने विचारों, अपने लेखन और अपने कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के बीच निरंतर जीवित रहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल भी ऐसे ही युगदृष्टा विद्वान थे जिनकी बौद्धिक विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को दिशा प्रदान कर रही है। आज जब भारतीय इतिहास, कला, पुरातत्व और संस्कृति पर गंभीर अनुसंधान की बात होती है तब उनके कार्यों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से किया जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पद्धति, प्रमाणों के प्रति उनका आग्रह और भारतीय दृष्टि से संस्कृति को समझने का उनका प्रयास आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
3: भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनका योगदान केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। संग्रहालयों में उनके द्वारा विकसित की गई कार्य प्रणालियां, भारतीय कला के प्रति उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की उनकी पद्धति आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि किसी राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माण करना है तो उसे अपने अतीत को सम्मान पूर्वक समझना होगा। इतिहास केवल स्मरण करने का विषय नहीं है, उससे सीखने का विषय भी है।
2: वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने पूरे जीवन से यही संदेश दिया कि जो समाज अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी कला, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को समझता है वही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ज्ञान की साधना कभी समाप्त नहीं होती। जिज्ञासा, अध्ययन, विनम्रता और सत्य की खोज यही किसी भी विद्वान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इन्हीं मूल्यों के कारण वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के उन अमर अध्येताओं में गिने जाते हैं जिनका योगदान समय बीतने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होता चला गया।
3: तो दोस्तों, भारत विभूति के आज के संक में हमने जाना एक ऐसे विलक्षण विद्वान को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को देखने की दृष्टि बदल दी, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों, कला, पुरातत्व, संग्रहालयों और लोक परंपराओं को एक सूत्र में जोड़कर ये बताया कि भारत की सभ्यता एक अखंड सांस्कृतिक यात्रा है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ज्ञान की सबसे बड़ी सार्थकता तभी है जब वो समाज को उसकी जड़ों से जोड़ सके और राष्ट्र के आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना सके। आइए भारत की इस महान विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक चेतना के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
2: इसी संदेश के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे, भारत के एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के साथ। उससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन प्रमिला मुंशी दिवाकर
3: और मैं संदीप शर्मा,
2: लेखन पुष्पक श्रीवास्तव का। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रासलीला समारोह का आयोजन किया गया है।

0: आइए आपको लिए चलते हैं रासलीला समारोह के तीसरे दिन में। यह है कुमार विशु और साथियों की प्रस्तुति।
1: आइए पहली रचना में आप सभी के लिए कुछ मांगता हूं उस परम पिता परमेश्वर से, क्योंकि हम मांगने के सिवा वैसे भी कुछ नहीं जानते हैं, तो पहले मांग ही लेते हैं ताकि ये ना लगे वहां गए तो गाने वाले ने कुछ ऐसा सुनाया नहीं कि हमारी इच्छा और हमारे तार उससे जुड़ जाए, हम कुछ मांग कर फिर घर चले जाए। क्या मांगू, सोना चांदी हीरे मोती जो कहे वो मांगू। आइए शुरुआत करता हूं।

0: और जोर से।
1: कोना कोना कोना के काम चले
0: लय कैसे बनती है ये बात क्या बात है आनंद लेते

0: बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
1: ये थी रासलीला समारोह के तीसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: के लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में यानी चतुर्थ सर्ग के अंतिम भाग में हमने कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा को महसूस किया। जीवन कितने ही संघर्षों से क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन मनुष्य को अपनी नैतिकता और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिनकर जी का ये रथ सिर्फ कर्ण के जीवन की महानता का रथ नहीं हांक रहा, यह हमें ऐसा मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करता है जो कभी कितनी भी विषम परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मनुष्यत्व और मानवता के लिए अपना हृदय विशाल रखे। दिनकर जी का विश्वास था कि संसार को केवल शस्त्र नहीं बदलते, विचार भी बदलते हैं। इसलिए वे कलम को भी उतना ही शक्तिशाली मानते थे जितनी तलवार। आइए उनके इसी ओजस्वी विश्वास को उनकी अमर पंक्तियों में सुनते हैं।
2: दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार?
1: मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण के इस प्रसंग के बाद हमने राष्ट्रकवि दिनकर जी की कलम या तलवार जैसी कविता क्यों चुनी। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्ण ने अपने जीवन से जो आदर्श स्थापित किए, दिनकर जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। कर्ण ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागृत विचार हैं। एक ने जीवन से संदेश दिया, दूसरे ने उस संदेश को शब्दों का अमर रूप दिया। यही कारण है कि ये कविता इस प्रसंग के बाद और भी सार्थक हो उठती है। कर्ण ने छल के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा, और दिनकर जी ने अन्याय के सामने सत्य लिखना नहीं छोड़ा। कर्ण के हाथ में धनुष था, दिनकर जी के हाथ में कलम, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, मनुष्य के भीतर साहस, स्वाभिमान और धर्म की ज्योति जलाए रखना। इसलिए यह कविता केवल एक रचना नहीं, बल्कि कर्ण के व्यक्तित्व को दिनकर जी की लेखनी से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है।
2: आइए तो अब चलते हैं उस सर्ग की ओर जहां रण तैयार है, जीवन का, स्वार्थों का, प्रेम का, ममता का और प्रतिज्ञाओं का। चलते हैं रश्मि रथी के पंचम सर्ग की ओर। माँ से आरंभ हुआ यह सर्ग, ममता का अमर विधान, आंसू बनकर बोल उठी है वर्षों से मौन जुबान। दिनकर ने शब्द नहीं लिखे, धड़कनों का इतिहास लिखा, पंचम सर्ग में माँ के मन का सबसे गहरा विश्वास लिखा।
1: माँ शब्द से आरंभ हुआ यह करुणा का दिव्य प्रसंग, जहां वात्सल्य स्वयं रचता है नियति का अमिट सत्संग। दिनकर की लेखनी में आज जननी का तप जाग उठा, युग युग से संचित मात्र हृदय का मौन विलाप बोल उठा, मौन विलाप बोल उठा। माँ। ये केवल एक संबोधन नहीं, सृष्टि का सबसे पहला संगीत है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो संसार की भाषा नहीं जानता, किंतु माँ की धड़कनों की भाषा पहचानता है। उसकी आंखें खुलने से पहले वो माँ की ममता में संसार का पहला स्पर्श पा चुका होता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक घर में स्वयं नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने माँ की रचना की। माँ केवल जीवन नहीं देती, वो जीवन को अर्थ देती है। इसके आंचल में सुरक्षा है, उसकी आंखों में आशीर्वाद है और उसके मौन में वो करुणा है जिसे शब्द कभी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। किंतु रश्मि रथी के कर्ण के जीवन में माँ एक ऐसी अधूरी कथा है जिसका प्रत्येक पृष्ठ आंसुओं से लिखा गया है। कर्ण ने जन्म तो माँ की कोख से लिया, पर बचपन उसकी गोद में नहीं बीता। उसने माँ का दूध नहीं मांगा, माँ की उंगली पकड़कर चलना नहीं सीखा, माँ की लोरी सुनकर सोना नहीं जाना। उसके जीवन में माँ एक स्मृति नहीं, एक रिक्तता थी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे वर्षों तक नहीं मिला। संसार उसे सूत पुत्र कहकर पुकारता रहा, पर उसके भीतर कहीं एक बालक हर दिन ये पूछता रहा, मेरी माँ कौन है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य अपने नाम के बिना जी सकता है, अपने वैभव के बिना जी सकता है, पर अपनी माँ की पहचान के बिना उसका अस्तित्व भीतर से कहीं अधूरा रह जाता है। मानो कर्ण कह रहे हैं,
3: हे मौन बहती गंगे और हे मेरे तात सूर्य देव, तनिक ठहरो और देखो, आज इस तट पर इतिहास का सबसे बड़ा कौतुक रचा गया है, जिसे संसार ने केवल सूत पुत्र कहकर पुकारा, जिसके माथे पर हर कदम पर धुतकार का तिलक लगाया गया। आज वही कर्ण स्वयं अपने ही वजूद के सामने एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है, एक अनसुलझा प्रश्न बनकर खड़ा है।
2: ममता और धर्म जीवन के दो ऐसे निष्ठुर किनारे जो जब आमने सामने आ खड़े हों तो बड़े बड़े पाषाण हृदय भी भीतर तक कांप उठते हैं। आज नियति के इसी जलते हुए दोराहे पर विकल, व्याकुल और असहाय सी खड़ी है माँ कुंती। वे आज केवल पांडवों की राजमाता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी विवश जननी हैं जिनके सीने में आंसुओं का एक समंदर और बरसों से दबा एक मौन तूफान आज बांध तोड़कर उमड़ रहा है। उनका अंतस अपने ही बोए बबूल के कांटों से लहूलुहान है और आंखें उस आदि पुत्र की एक झलक पाने को तरस रही है। आइए हम भी पूरे मनोयोग से सुनते हैं कि आज इतिहास के इस सबसे शांत और स्तब्ध क्षण में माँ कुंती के हृदय की वह गहरी वेदना हमसे क्या कहना चाहती है।
4: समय बीत गया, ऋतुएं बदलती रही, राजमहल बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा, किंतु एक माँ का हृदय कभी आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे भीतर एक रिक्तता वर्षों से मौन बैठी है। जब भी किसी माँ को अपने पुत्र को गले लगाते देखती हूँ तो मेरी आत्मा मुझसे पूछती है, क्या ममता भी कभी अपराधिनी हो सकती है? शायद संसार मेरे मौन को नहीं समझ पाया, पर एक माँ अपने ही हृदय के न्यायालय से कभी मुक्त नहीं हो सकती। किंतु आज मैं स्वयं से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या मैं सचमुच माँ हूँ जिसने अपनी ही कोख के अंश को जन्म लेते ही अपनी बाहों से दूर कर दिया? क्या उसे माँ कहलाने का अधिकार है जिस शिशु को अपनी छाती से लगाकर जीवन देना था, उसे मैंने नदी की लहरों के भरोसे छोड़ दिया, जिसकी पहली मुस्कान मेरी आंखों में बसनी थी, जिसके पहले आंसू मेरे आंचल में सूखने थे, उसका संपूर्ण बचपन मेरी ममता से वंचित रह गया। संसार ने उसे अनेक नाम दिए, पर वो अभागा एक नाम कभी न सुन सका, जिसे सुनने का अधिकार उसे जन्म से प्राप्त था। पुत्र, पुत्र।
2: ममता का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, वह समय के साथ वृद्ध नहीं होती, परिस्थितियों से हारती नहीं और दूरी से कम नहीं होती। यदि कभी भूल हो भी जाए, यदि कभी जीवन किसी विवशता के कारण माँ को उसकी संतान से दूर भी कर दे, तब भी उसके हृदय में प्रेम का स्रोत सूखता नहीं। कुंती का जीवन इसी शाश्वत सत्य का प्रतीक है। वर्षों तक मौन रहने वाली माँ जब कर्ण के सामने आने का साहस जुटाती है, तब वह किसी महारानी के रूप में नहीं आती, वह केवल एक अपराध बोध से भरी माँ होती है। उस क्षण राजसत्ता, कुल, प्रतिष्ठा और इतिहास सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, केवल एक माँ का कांपता हुआ हृदय शेष रह जाता है, जो अपने खोए हुए पुत्र को एक बार, सिर्फ एक बार पुत्र कहकर पुकारना चाहता है। श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं दिनकर जी की इस महान काव्य गाथा रश्मि रथी से पंचम सर्ग में लिपटे कर्ण और माता कुंती के प्रेम, करुणा, दुख, विषाद से भरा ये काव्य पाठ।
1: आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे।
2: सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग घटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा।
4: एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिल जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं, लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू।
2: चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से, सामने तपन को देख तनिक घबराकर, सितकेशी संभ्रमयी चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी, आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई, दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर, लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे, राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए, तन में रविका प्रीतम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था, मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर, अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले, यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की, अथवा अगाध कंचन में कहीं नहा कर, मैं नाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर, सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।
1: श्रोताओं, ये दृश्य केवल महाभारत की कथा नहीं, एक मां के हृदय की गहन वेदना का चित्र है। युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, परंतु कुंती का मन मानो पहले ही रणभूमि बन गया है। एक ही कोख के लाल, एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण। सोचिए उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी, जिसकी ममता दो दिशाओं में खिंच रही है। दिनकर जी ने इस क्षण को इतनी संवेदनशीलता से उकेरा है कि लगता है मानो कुंती के नयन केवल आंसू नहीं, वर्षों से दबा हुआ मातृत्व बहा रही हूं।
2: गंगा का वह एकांत तट, जहां सांध्य बेला की मध्यम मध्यम लाली धीरे धीरे अंधकार की गोद में सिमट रही है, लहरों का एक शांत मौन संगीत गूंज रहा है, और उस निस्तब्धता के बीच सूर्य पुत्र कर्ण अचल खड़ा अस्ताचल की ओर बढ़ते अपने तात सूर्य देव को निहार रहा है। वह इस बात से सर्वथा अनजान है कि प्रकृति आज उसके जीवन का सबसे बड़ा कौतुक रचने जा रही है। तभी दूर वृक्षों की ओट से पत्तों की सरसराहट के पीछे छिपकर राजमाता कुंती अपने उस आदि पुत्र को निहार रही हैं। बरसों पहले जिस नन्हे सुकुमार को लोक लाज के भय से भारी मन से गंगा की लहरों में बहा दिया था, आज उसे एक महायोद्धा के रूप में सामने देखकर उनका मात्र हृदय छटपटा उठता है। उस क्षण एक माँ की आंखें केवल उसे देखती नहीं हैं, वे तो अपने भीतर उमड़ते सदियों के अकेलेपन, अपराध बोध और रोके हुए वात्सल्य को दूर से ही अपने उस त्यागे हुए पुत्र पर लुटा रहे हैं। हृदय में ग्लानी और ममता का ऐसा द्वंद है जो शब्दों से परे है। आइए श्रोताओं, अब अपनी चेतना को समेटकर हम बढ़ते हैं आगे इतिहास के उसी अत्यंत भावुक मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक क्षण की ओर, जहां गंगा के इस पावन तट पर एक विवश माँ और एक महात्यागी पुत्र का वह अद्भुत मिलन होने वाला है जिसने नियति की दिशा ही बदल दी। आइए पूरे मनोयोग से सुनते हैं पंचम सर्ग के इस भाग दो का यह दिव्य काव्य पाठ।
1: आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला,
3: पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं, है आप कौन, किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं, यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है, सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रव्या आप अकेली नारी हैं कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं।
1: सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा, विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से,
4: रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से, राधा का सुत तू नहीं तनय मीरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया, पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी पृथा जननी हूँ तेरी, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, एतेव हाय अपने दुदमुहे तनय से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का, मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को, संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ, कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मेरे ही सुत मेरे सुत को हाय मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे, यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा, जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी यह व्यथा समग्र भुवन को, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हीरा तुझको जिस संशय से, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं, वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है, बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही, तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने।
1: मित्रों पांचवें सर्ग का यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती का संवाद नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सत्य समय और संबंधों के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना है। दिनकर जी ने यहां किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया, बल्कि उस युद्ध की पीड़ा को चित्रित किया है जो मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर कर्ण है जिनका जीवन अपमान संघर्ष और आत्मसम्मान की अग्नि में तपकर कुंदन बना है, दूसरी ओर कुंती हैं जिनकी ममता वर्षों तक समाज की कठोर मर्यादाओं के पीछे कैद रही। जब दोनों आमने सामने आते हैं तब शब्दों से अधिक मौन बोलता है और संवादों से अधिक आंसू अपना अर्थ कहते हैं।
2: कर्ण का पहला परिचय ही उनके चरित्र की महानता का प्रमाण है। वे सामने खड़ी स्त्री को नहीं पहचानते, फिर भी विनम्रता से कहते हैं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। इस एक वाक्य में कर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित है। देखिए ना, जन्म देने वाली माँ सामने खड़ी है, लेकिन कर्ण अपने पालन पोषण का ऋण नहीं भूलते। वे स्वयं को राधा का पुत्र ही कहते हैं। दिनकर जी यहाँ संदेश देते हैं, कि मनुष्य का गौरव केवल जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और कृतज्ञता से निर्मित होता है। इसके बाद कुंती का धैर्य टूट जाता है। वर्षों से हृदय में दबा हुआ सत्य अश्रुओं के साथ बाहर आता है। जब वे कहती हैं कि राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, तब यह केवल जन्म का रहस्य नहीं खुलता बल्कि एक माँ के जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप भी सामने आता है। कुंती स्वीकार करती हैं कि उन्होंने समाज के भय से अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया था। दिनकर जी ने यहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न उठाया है, जहाँ एक अविवाहित माँ के लिए सम्मान से अधिक लोक लाज का भय था। कुंती का अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये उस व्यवस्था की विवशता भी थी जिसने इसे मातृत्व से बड़ा सामाजिक भय बना दिया। कुंती जब अपने अपराध का कारण बताती हैं, तब उनका स्वर किसी महारानी का नहीं बल्कि एक असहाय स्त्री का हो जाता है। वे स्वीकार करती हैं कि नारी के लिए समाज का निर्णय कितना कठोर होता है। यही कारण है कि इस प्रसंग में पाठक कुंती को दोष देने से पहले उनकी विवशता को समझने लगते हैं। दिनकर जी किसी पात्र का न्याय नहीं करते, वे केवल मनुष्य की पीड़ा को हमारे सामने रखते हैं।
1: इसके बाद कुंती की प्रार्थना कथा को और अधिक मार्मिक बना देती है। वे कर्ण से राज्य नहीं मांगती, अपने लिए सम्मान नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हैं कि उनके पुत्र एक दूसरे का रक्त ना बहाएं। ये एक मां की अंतिम इच्छा है, किंतु इस प्रार्थना के पीछे वर्षों का अपराध बोध भी छिपा है। उन्हें लगता है कि यदि आज भी वे मौन रही तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगी। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विजय या पराजय का प्रश्न नहीं है। यहां हर पात्र अपने अपने सत्य के साथ खड़ा है। कर्ण का सत्य कर्तव्य और कृतज्ञता है, कुंती का सत्य ममता और पश्चाताप है, रश्मिरथी का यह अंश हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भर नहीं पाता, केवल स्वीकार करना ही उनका उपचार बनता है। यही कारण है कि पंचम सर्ग का यह प्रसंग हिंदी साहित्य के सबसे करुण और मानवीय संवादों में गिना जाता है। यहां दिनकर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं अधिक भीषण युद्ध मनुष्य के हृदय में लड़े जाते हैं। आंसू, पश्चाताप, कर्तव्य, ममता और धर्म, इन सभी भावों का ऐसा अद्भुत समन्वय विरले ही किसी काव्य में देखने को मिलता है। इसलिए यह प्रसंग केवल कर्ण और कुंती की कथा नहीं बल्कि मानव हृदय की शाश्वत संवेदनाओं का अमर दस्तावेज बन जाता है।
2: तो श्रोताओं, इसी भावपूर्ण मोड़ पर आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। अगले भाग में हम पंचम सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ और चर्चा सुनेंगे। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
5: मैं अदिति
6: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर लेती है विराम। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए
1: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को पंजाब में शाहपुर जिले के बेहड़ा गांव में हुआ था
2: जी।
1: ये क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। शांति स्वरूप जब केवल 8 महीने के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ शिशु शांति को उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में अपने मायके ले आई। यहाँ पर ये बालक सुसंस्कृत वातावरण में पला बढ़ा। उनके नाना इंजीनियर थे। अपने नाना से प्रभावित होकर शांति स्वरूप भटनागर जी का रुझान स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र की ओर हो गया। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उनके प्रिय विषय थे।
2: श्रोताओं, लाहौर में लाला रघुनाथ उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे। वे लाहौर में दयाल हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। वे युवा शांति स्वरूप को लाहौर ले आए और उन्हें दयाल हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। और इसी कारण बचपन से ही पिता की छत्र छाया के अभाव के कारण डॉक्टर शांति स्वरूप में उत्तरदायित्वता, गंभीरता एवं अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इससे उनको अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिली। वे आत्मनिर्भर और कठिन परिश्रम करने वाले युवक बन गए।
1: सन 1911 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की और दयाल कॉलेज में भर्ती हो गए। उस समय वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के संपर्क में आए और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि, उनकी लगन बन गई। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्नातकोत्तर के अध्ययन के लिए लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी बीच सन 1915 में लाजवती नाम की युवती के साथ उनका विवाह हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। श्रोताओं, भारत इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं था, इसीलिए उनकी पढ़ाई जारी रही।
2: स्नातक और स्नातकोर की परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेने से यह निश्चित हो गया कि वे अपनी आगे की पढ़ाई लंदन विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। वहां उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य भौतिक रसायन विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर डोनन के मार्गदर्शन में शुरू किया। उनके अध्ययन का विषय था इमल्शन की भौतिक एवं रासायनिक समस्याएं और इस विषय पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा और डॉक्टरेट ऑफ साइंस यानी डीएससी की डिग्री प्राप्त की। आगे के अध्ययन के लिए वे जर्मनी चले गए और उसके बाद वहां से वे एक वर्ष के लिए फ्रांस चले गए। उन्होंने पेरिस में विश्वविख्यात सॉर्बन विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य किया और सन 1923 में भारत लौटे।
1: भारत आने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर का पद ग्रहण किया। एक वर्ष के बाद सन 1924 में उन्होंने लाहौर पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। वहां उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन किया। इसी बीच रावलपिंडी के निकट एक ब्रिटिश कंपनी तेल क्षेत्रों में ड्रिलिंग के काम में लगी हुई थी। एक दिन ड्रिलिंग का कार्य अचानक ठप हो गया। ड्रिलिंग के उपकरणों, इंजीनियरों, कर्मचारियों सभी का काम बंद हो गया और ऊपरी खर्च में बढ़ोतरी होने लगी। कारण ये था कि जिस स्थान पर ड्रिलिंग की जा रही थी वो एक बंजर भूमि थी। किसी समय वो तालाब का कीचड़ से भरा क्षेत्र था। वहां का पानी नमकीन था। जब पानी सूख गया तो जमीन पत्थर के समान कठोर हो गई। ऐसी स्थिति में ड्रिलिंग करने पर वहां मिट्टी के मिश्रण की भरमार थी जो नमकीन पानी के साथ मिल जाती और धीरे धीरे कठोर होकर सूख जाती। इसके कारण ड्रिलिंग में रुकावट आ गई जिसके चलते हजारों रुपयों का नुकसान होने लगा। इस मुश्किल से निकलने के लिए कंपनी ने हर संभव साधन जुटाने का प्रयास किया।
2: समाचार पत्रों के माध्यम से खुला निमंत्रण देकर के लोगों से पूछताछ की और इसके अलावा कोई संसाधन तलाश करने के लिए भारी पुरस्कारों और भुगतानों का प्रस्ताव रख करके लोगों को आकर्षित किया। आखिरकार किसी व्यक्ति ने इस कार्य के लिए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम सुझाया और इस समस्या का समाधान निकालने की चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली। डॉक्टर भटनागर ने इमल्शन कोलाइट पर बहुत अधिक अनुसंधान किया था। पानी और तेल का मिश्रण एक प्रकार का इमल्शन है। तेलीय पदार्थों का मिश्रण कोलाइड होता है। गोंद भी एक प्रकार का कोलाइड ही है। दूध इमल्शन का अच्छा उदाहरण है।
1: डॉक्टर भटनागर ड्रिलिंग वाले स्थान पर गए और वहां से नमूने लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कार्य शुरू कर दिया। उन्हें तुरंत इस बात का पता चला कि ये स्थिति उस समय शुरू होती है जब बाहर आने वाला मिश्रण ड्रिलिंग के दौरान नमकीन पानी के साथ मिल जाता है।
2: डॉक्टर भटनागर समझ गए कि मिश्रण को नमकीन पानी के साथ मिलने से रोकना संभव नहीं है, इसलिए नमक के अंश को दूर कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान मिलने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर भटनागर ने सुझाव दिया, चूंकि ड्रिलिंग के दौरान बाहर निकलने वाले मिश्रण में देसी गोंद मिला दिया जाए तो गोंद के मिश्रण चिपचिपा हो जाएगा और उसे सख्त और कठोर बनाने से रोक देगा।
1: ये योजना सफल रही। कंपनी के अधिकारी भाविभोर और उल्लासित हो गए। कंपनी को लाखों रुपयों के नुकसान से उबार दिया गया था। कंपनी ने डॉक्टर भटनागर को 1.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए और उत्पादन से होने वाले लाभ से उनको उपयुक्त राशि हिस्से के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने ये कार्य अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया था। उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। डॉक्टर भटनागर ने कहा, मैंने केवल अपने कर्तव्य का ही पालन किया है।
2: डॉक्टर भटनागर ने सुझाव दिया कि यह धन पंजाब विश्वविद्यालय को पेट्रोलियम अनुसंधान के संबंध में एक नया विभाग शुरू करने के लिए दे दिया जाए। उनके इस कार्य की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। वास्तव में वे सच्चे अनुसंधानकर्ता और विज्ञान शिक्षक थे।
1: वे पंजाब विश्वविद्यालय में 16 वर्ष तक कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने फोटोकेमिस्ट्री, मैग्नेटोकेमिस्ट्री, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान किया। एक सहकर्मी की सहायता से उन्होंने मैग्नेटो इंटरफेरेंस बैलेंस की रचना की। ये एक ऐसा उपकरण है जिससे कई तरह की वस्तुओं के चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म को मापा जा सकता है।
2: श्रोताओं, इसके अलावा उन्होंने अधिक प्रकाश देने वाले रंगहीन और गंधहीन मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन और मोम बनाने की विधियों पर खोज की थी। उनका उपयोग चमकीले, हल्के और उच्च गुणवत्ता वाले बेहतर लुब्रिकेंट्स तैयार करने में होता था।
1: उस समय ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए एक बोर्ड की स्थापना की थी। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को इसका निदेशक चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर भटनागर ने एक ऐसे कपड़े और वार्निश का विकास किया था जिनका उपयोग विषैली गैस से रक्षा के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने आग बुझाने के लिए बुलबुले वाला झागदार मिश्रण भी विकसित किया था।
2: श्रोताओं, सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विज्ञान को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। डॉक्टर भटनागर ने इसके लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद रख दिया गया।
1: डॉक्टर भटनागर के मार्गदर्शन में 12 उच्च स्तरीय और उपकरणों से सुसज्जित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। इनसे देश के उदीयमान वैज्ञानिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुईं।
2: श्रोताओं, डॉक्टर भटनागर अनेक संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च यानी CSIR के निदेशक, भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने में बहुत योगदान दिया।
1: देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट उपाधि और मानद सदस्यता प्रदान की। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें सन 1943 में मानद सदस्य बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
2: श्रोताओं, 1 जनवरी 1955 को 61 वर्ष की आयु में इस महान मनीषी और वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में यह देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक के समक्ष हम विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, और आज हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के जीवन परिचय पर। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना है कि किस तरह स्वामी विवेकानंद बिना किसी पहचान पत्र और पूर्व तैयारी के अमेरिका चले गए थे और उन्हें उस अनजान देश में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका तो एक धनिक वर्गों का देश है, वहाँ स्वामी जी का थोड़े से पैसों में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अतः वे खर्च कम करने के लिए पूर्वी तट के बोस्टन में जो एक छोटा सा शहर था चले गए थे। वहाँ हमेशा की तरह अपने ज्ञान और प्रतिभा से लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया और धीरे धीरे उनकी मुश्किलों का समाधान होता चला गया।
1: 24 अगस्त को बोस्टन में जब वे सैनबोर्न के यहाँ थे, तभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी भाषा के प्राध्यापक जॉन हेनरी राइट महाशय अपने अनिस्क्वाम के निवास स्थान से बोस्टन आए हुए थे और पहले से ही स्वामी जी की गुणावली के बारे में सुनकर उनसे मिलने को व्यग्र थे, परंतु उनसे उस दिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और इससे लाभ ही हुआ, क्योंकि प्राध्यापक ने उन्हें सप्ताह के बाकी दिन अनिस्क्वाम में आकर अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया और स्वामी जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। अनिस्क्वाम बोस्टन से 30 मील दूर उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। शहर के लोग जलवायु परिवर्तन के लिए वहां जाया करते थे और प्राध्यापक भी इसी उद्देश्य से वहां निवास कर रहे थे। स्वामी जी के इस गांव में निवास का विवरण प्राध्यापक की पत्नी के 29 अगस्त के एक पत्र में इस प्रकार मिलता है।
2: हिंदू सन्यासी को देखने के लिए जॉन बोस्टन गए थे, परंतु उनसे भेंट न होने के कारण वे उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दे आए। वे शुक्रवार को यहाँ पहुंचे। उन्होंने एक गेरुआ लबादा पहन रखा था। सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए। वे सोमवार तक यहाँ थे। वे सारे दिन और सारी रात उनसे बातें करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल हमारा वार्तालाप पुनः प्रारंभ हुआ। पूरा शहर उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठा था। कुमारी लेन के गृह में अतिथिगण उल्लास से आत्मविभोर हो गए थे और सारे समय घर के बाहर भीतर आना जाना कर रहे थे। शुद्रकाय श्रीमती मैरिल के दोनों नेत्र उल्लास से प्रज्वलित और कपोल रिथमिक हो रहे थे। हम लोग मुख्यतः धर्म के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। फिर रविवार को जॉन उन्हें गिरजाघर में व्याख्यान दिलाने ले गए और सबने मिलकर एक ऐसे गैर ईसाई महाविद्यालय के लिए चंडा एकत्र किया जो पूर्णतः गैर ईसाई भावधारा से परिचालित होगा। उन्हें देख सुनकर ग्रामवासी इस निश्चय पर पहुंचे कि वे ब्राह्मण हैं, परंतु निशाभोज के समय उन्हें आनंद पूर्वक मांस खाते देखकर उन लोगों की धारणा डावाडोल होने लगी। इस समस्या का समाधान आवश्यक था, अतः भोजन के बाद उन्हें सुनने को सभी उन्हें घेर कर बैठ गए।
0: अपने पत्र में श्रीमती हेनरी ने कुछ और विस्मयकारी तथ्यों की जानकारी दी है।
2: अपनी संगीतमय ध्वनि में वे कहने लगे,
3: अभी कल ही की तो बात है। हाँ, कल की ही, यानी 400 वर्ष से अधिक पहले की नहीं होगी। अंग्रेजों की बात और क्या कहूं, अभी कुछ काल पूर्व ही तो वे बर्बर थे। अभी भी वे उस बर्बरता से केवल निकल भर रही हैं।
2: श्रोताओं में से एक कह उठा, बकवास, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। वे बोले,
3: तो क्या मैंने कहा नहीं कि थोड़े ही दिन पहले? मानव आत्मा की प्राचीनता को ध्यान में रखने पर इन कुछ वर्षों की भला क्या गिनती।
2: इसके साथ ही उनकी आवाज में दृढ़ता तथा प्रवाह बढ़ गया और वे कहने लगे,
3: भयावह शीत और उनके जलवायु के अभावों तथा कष्टों ने अंग्रेजों को जंगली बना डाला है। वे केवल दूसरों को मार डालने की ही बातें सोचते हैं। उनका धर्म कहां है? वे मुख से उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं। वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा भर करते हैं, पर अपने राज्य का विस्तार करते हैं ईसाई धर्म की सहायता से नहीं। ये तो उनकी वो भूखा है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है।
2: तब कुछ और आगे बोलते हुए उनका मधुर कंठ गंभीर होता गया और अंततः घंटा निनाद के सदृश ध्वनित हो उठा।
3: लेकिन उन्हें ईश्वर के दंड का भागी होना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा। उन कोटि कोटि चीनियों की ओर देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध है जो तुम्हारे ऊपर उतर आएंगे। हूणों का एक और आक्रमण होगा, वे संपूर्ण यूरोप को पदाक्रांत कर देंगे, एक भी ईंट साबित नहीं छोड़ेंगे। पुरुष, नारी, बच्चे सब चले जाएंगे। फिर से अंधयुग का आगमन होगा। मेरा क्या होगा? अपने बारे में मैं चिंता ही नहीं करता। इसके होने में 1000 वर्ष भी नहीं लगेंगे। भले ही तुम ईश्वर के प्रतिशोध में विश्वास न करो, पर इतिहास का प्रतिशोध तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और अंग्रेजों के ऊपर यह प्रतिशोध आएगा ही। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं और अपने सुख भोगों के लिए उन्होंने हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक को चूस लिया। वे हमारी करोड़ों की संपत्ति हरण करके ले गए, जबकि गांव गांव में हमारी जनता भूखों मर रही थी। अब चीनियों के रूप में उन पर प्रतिशोध की बौछार होगी और ये न्याय संगत ही होगा।
0: एक दूसरे मौके पर स्वामी जी ने भविष्य दृष्टा ऋषि की तरह कहा था,
3: आगामी विराट अभ्युत्थान जो एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा, या तो रूस से आएगा अथवा चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा।
1: उन्होंने ये भी कहा था कि
3: अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद पड़ोस की ओर से भारत पर आक्रमण होने की प्रबल संभावना है।
1: सुनने वाले इन भविष्यवाणियों से अचंभित हो गए।
0: 27 अगस्त को एनस्क्वाम के गिरजाघर में व्याख्यान देने के बाद 28 अगस्त सोमवार को सालेम के थॉट ऑफ वर्क क्लब में व्याख्यान देने वे वहां से विदा हुए। सालेम में वे 166 नॉर्थ स्ट्रीट पर स्थित श्रीमती कैट टेनार्ट वुड्स के घर में एक हफ्ता रहे। वे एक विदुषी साहित्य लेखिका थी और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी। उनके साथ उनका बेटा प्रिंस रहता था जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहा था।
1: 28 अगस्त की शाम स्वामी जी सालेम के प्रार्थना घर में हिंदू धर्म और हिंदू प्रथाएं विषय पर बोले। वैदिक धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। भारत की निर्धनता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में धर्म का अभाव नहीं है, अभाव है अन्न और व्यवहारिक ज्ञान का। उन्होंने कहा वे अमेरिका वासियों से कहने आए हैं कि भारत में मिशनरियों के स्थान पर ऐसे लोग भेजे जाएं जो वहां औद्योगिक शिक्षा का विस्तार कर सके। उन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जगन्नाथ के रथ के नीचे पड़कर होने वाली आत्महत्याओं के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं का निराकरण किया।
0: अगले दिन शाम को श्रीमती वुड्स के बगीचे में बालक बालिकाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी जी ने भारतीय बच्चों के रहन सहन, खेल कूद तथा शिक्षा आदि के बारे में व्याख्यान दिया। 3 सितंबर को ईस्ट चर्च में उनका भाषण हुआ। विषय था भारत का धर्म और मेरे निर्धन देशवासी। जाते समय वे अपनी प्रिय छड़ी प्रिंस को दे गए और अपना ट्रंक व कंबल श्रीमती वुड्स को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरे इस देश में प्रवास के दौरान मुझे ग्रह सुख का आस्वादन कराया है, उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज देना ही उचित है।
1: इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन सैनबोर्न के आमंत्रण पर सारातोगा स्प्रिंग्स नामक स्थान पर व्याख्यान देने के लिए 4 सितंबर की रात को स्वामी जी सालेम से चल पड़े। सारातोगा में वे सेनेटोरियम नामक संस्था के बोर्डिंग हाउस में रुके और 5 सितंबर को व्याख्यान दिया। वहां उन दिनों अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा था। श्री सैनबोर्न उस एसोसिएशन के सचिव थे। अमेरिका के अनेकों बुद्धिजीवी गण उसके सदस्य थे। इस आमंत्रण से ये स्पष्ट हो जाता है कि सैनबोर्न महोदय स्वामी जी से कितने प्रभावित थे, अन्यथा वे विद्वानों की सभा में एक अपरिचित सन्यासी को भला क्यों बुलाते। यहाँ उनके व्याख्यान का विषय था इहलौकिक समस्याएं। साराटोगा में स्वामी जी के कुल 5 व्याख्यान हुए थे।
0: अब तक हमने जाना है कि स्वामी जी बोस्टन अंचल में 3 सप्ताह रुके थे। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने व्याख्यान दिए और गणमान्य समाज में ख्याति अर्जित की। इसी काल में वे अमेरिका के जनमानस के साथ भी सुपरिचित हुए। कई संस्थाओं में वे घूमे, बच्चों के साथ समय बिताया और अमेरिका के पारिवारिक जीवन को भी जाना। वैसे उन्हें हमेशा प्रशंसा नहीं मिली। एक आध बार मिशनरियों की आलोचना करने पर उन्हें उन लोगों के कटाक्ष भी सुनने पड़े।
1: स्वामी जी महासभा में भाग लेने की आशा या इच्छा अथवा दोनों का त्याग करने को बाध्य हुए थे। हम उसका कारण भी जानते हैं। फिर भी वे कैसे शिकागो जाने के लिए राजी हुए ये कह पाना मुश्किल है। परंतु इतना निश्चित है कि उनका बोस्टन आना और मिस सैनबोर्न की सहायता से प्राध्यापक राइट के साथ परिचय होना ही इसका मूल कारण था। प्रोफेसर राइट ने ही उन्हें समझा बुझाकर शिकागो जाने के लिए सहमत कराया था। उन्होंने ही अपने मित्रों के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी के महासभा में प्रतिनिधित्व पाने का पद प्रशस्त कर दिया था। जब स्वामी जी निराश होकर अपने कार्य करने की अलग योजना बना रहे थे, तभी राइट महोदय ने उन्हें समझाया कि अमेरिकी जनता के सामने आत्म परिचय देने के लिए महासभा ही उपयुक्त स्थान है।
4: इस विराट जाति से परिचित होने का आपके लिए यही मौका है।
0: स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी असुविधाओं की बात कही, परिचय पत्र का ना होना, अर्थ का अभाव आदि सब कुछ कह सुनाया। सुनकर गणमुग्ध प्राध्यापक बोले,
4: अब से परिचय पत्र की मांग करना वैसा ही है मानो सूर्य से पूछना कि उसे प्रकाश फैलाने का अधिकार किसने दिया है।
0: स्वामी जी को महासभा में प्रतिनिधि बनवाने का सारा भार अपने कंधों पर लेते हुए उन्होंने प्रतिनिधि निर्वाचन समिति के सचिव के नाम अपने पत्र में लिखा,
4: ये एक इतने बड़े विद्वान है कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे।
0: स्वामी जी के अर्थाभाव की बात जानकर उन्होंने उनके लिए शिकागो तक का एक रेल टिकट खरीद दिया और प्रतिनिधियों के निवास आदि की व्यवस्था करने वाली एक कमेटी के नाम भी एक पत्र लिख दिया था। सालेम में रहते समय ही स्वामी जी को प्राध्यापक का परिचय पत्र मिल गया था। 4 सितंबर को अपने पत्र में उन्होंने लिखा है,
3: आपने मुझे जो परिचय पत्र दिए उनके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मुझे शिकागो के श्री थैलिस महोदय का पत्र मिला है जिसमें महासभा के कुछ प्रतिनिधियों के नाम तथा अन्य संवाद है।
1: मजेदार बात तो ये हुई कि सारी व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी सानंद और निश्चित मन से शिकागो की ओर रवाना हुए। ट्रेन में एक व्यवसायी से बातचीत होने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकागो पहुंचने पर वे बता देंगे कि डॉक्टर रेवरेंड जॉन हेनरी बैरोज के घर कैसे जाना होगा। बैरोज शिकागो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पैस्टर तथा धर्म महासभा के जनरल कमेटी के सभापति थे। महासभा से संबंधित सारी व्यवस्था का भार इन्हीं के कंधों पर था।
0: और शाम को जब ट्रेन शिकागो पर पहुंच गई तो वे सज्जन हड़बड़ी में सब कुछ भूल करके अपने घर की ओर चल दिए। इधर स्वामी जी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि बैरोज महोदय का पता लिखा हुआ कागज गायब है। उन्होंने राह चलते कई लोगों से पता पूछा, कोई स्वामी जी का प्रश्न समझ ही नहीं पाया और चलते बने। कोई तो किसी होटल का पता भी न बता पाया। स्वामी जी भयानक असहाय सा महसूस करने लगे। आखिरकार रेलवे के माल गोदाम के पास एक बड़ा सा खाली बक्सा पड़ा देख करके वे उसी पे सो गए।
1: 2 दिन बाद जिनकी वाणी सुनकर अमेरिका तथा विश्ववासियों की नींद टूटने वाली थी, उन्हें पहली रात निराश्रय निसंबल मित्रहीन होना पड़ा। स्वदेश में अपने परिव्राजक काल के दिनों में जिस तरह दिन भर सड़कों पर चलने के बाद शाम को किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर जमीन पर ही सो जाते थे, शिकागो में भी उन्हें वैसा ही करना पड़ा।
0: अगले दिन सुबह ठंडी हवा के झोंके से उनकी नींद खुली। और वे झील के किनारे बसे सब भ्रांतों के मोहल्ले की तरफ चल पड़े कि शायद उन्हें कोई बैरोज महोदय का पता मिल जाए। इस लैक्शोर ड्राइव नामक सड़क पर करोड़पतियों के निवास थे। उस समय वे भूख से परेशान थे। घर घर जाकर उन्होंने अन्न भिक्षा की और पता पूछते रहे, पर उनके गंदे कपड़े, थका शरीर देख सभी ने उन्हें भगा दिया। वे थके हारे सड़क के किनारे बैठ गए। टेलीफोन आदि की सहायता भी ली जा सकती थी, पर उन्हें उसकी कोई जानकारी न थी।
1: ठीक उसी समय सामने के एक विशाल भवन का द्वार खुला और एक संभ्रांत महिला ने उस घर से निकलकर स्वामी जी के पास आकर पूछा, क्या वे धर्म महासभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उनसे खुलकर अपनी समस्या बताई। महिला उन्हें सादर अपने घर ले गई और नौकरों से कहा कि उन्हें कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर दे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि जलपान के बाद वे उन्हें लेकर महासभा के दफ्तर जाएंगी। स्वामी जी को लगा कि वे सपना देख रहे हैं या कोई परी कथा की कहानी घटित हो रही है। वे विस्मय और कृतज्ञता से अभिभूत हो गए। ये महिला थी श्री जॉर्ज डब्ल्यू हेल की पत्नी। उस दिन से वे उनके पति और बच्चे स्वामी जी के अत्यंत आत्मीय हो गए। श्री और श्रीमती हेल बड़े धर्मप्राण थे। स्वामी जी उन्हें प्यार से फादर पो और मदर चर्च कहा करते थे। उनकी दो बेटियां और दो भांजियां स्वामी जी की बहन समान थीं।
0: हेल परिवार की बेटियों का नाम था हैरियट और मैरी हेल तथा भांजियों का नाम था हैरियट मैककिनली और इसाबेल मैककिनली।
1: स्वामी जी के हृदय में एक नए उत्साह का संचार हुआ। उन्हें अब संदेह नहीं रहा कि स्वयं भगवान ही उनका हाथ पकड़कर ले चल रहे हैं। अपनी सफलता के बारे में निश्चित होकर वे भविष्य की परिकल्पना करने लगे। श्रीमती हेल के साथ वे महासभा कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने प्राध्यापक राइट का दिया हुआ परिचय पत्र दिखाया और बिना कुछ कहे सुने ही प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हो गए। 262 नंबर मिनिशन एवेन्यू स्थित श्री जे बी लियोन के घर में उनकी ठहरने की व्यवस्था हो गई। इस घर में निवास का विवरण श्री लियोन की नातिन श्रीमती कार्नेलिया कोंगर ने लिपिबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है,
5: महासभा के अधिवेशन हेतु विभिन्न संप्रदायों के जिन लोगों को सदस्य बनाया गया था, उन प्रतिनिधियों को नाना ने अपने घर में अतिथि के रूप में रखने को सहमत हुए थे। मेरे नाना धर्मांधों को नापसंद करने के बावजूद दर्शन में रुचि रखते थे, अतः मेरी नानी से एक ऐसे प्रतिनिधि को अतिथि के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी जो खूब उदार दृष्टिकोण के हो। उन दिनों हमारा घर अतिथियों से परिपूर्ण था, क्योंकि मेरे नाना और नानी बड़े अतिथि परायण थे और वो विश्व मेला बड़ा ही उत्साहवर्धक और अद्भुत था। हमें जब समाचार मिला कि हमारे भारतीय प्रतिनिधि अतिथि शाम को आएंगे, तब हमारे घर में इतना स्थानाभाव था कि मेरी नानी ने अपने मझले पुत्र को घर छोड़कर एक मित्र के घर चले जाने को कहा। समाचार आया कि हमारे संप्रदाय फर्स्ट प्रेसबिटेरियन चर्च के एक सदस्य आधी रात के बाद अतिथि को लेकर आएंगे। नानी के अतिरिक्त बाकी सभी लोग सो गए। घंटी की आवाज सुनकर जब उन्होंने द्वार खोला तो वहाँ लंबा गेरुआ लबादा पहने हुए स्वामी जी विवेकानंद को खड़े देखकर वे स्तंभित रह गए। इसके पूर्व उन्होंने कभी किसी भी भारतवासी को नहीं देखा था। उन्होंने स्वामी जी को सादर ले जाकर उनके रहने का कमरा दिखाया, परंतु जब वे लेटने गईं तो उनके मन में चिंता हुई। हमारे अनेक अतिथि अमेरिका के दक्षिण अंचल के थे, जो केवल श्वेतांग लोगों के साथ ही मिलना जुलना पसंद करते थे। नाना जी की नींद खुलने पर उन्होंने उनको भी इस समस्या से अवगत कराते हुए ये कहा कि निश्चित करना होगा कि स्वामी जी तथा दक्षिण अंचल के अतिथियों को एक साथ रखना चलेगा या नहीं। नानी ने भी यही कहा कि आवश्यकता पड़ी तो स्वामी जी को उनके पड़ोस में ही स्थित ऑडिटोरियम होटल में भी रखा जा सकता है। नाश्ते के आधे घंटे पूर्व ही नाना जी कपड़े पहनकर पुस्तकालय कक्ष में अखबार पढ़ने गए। वहां उनकी स्वामी जी के साथ बातचीत हुई और जलपान की व्यवस्था होने के पूर्व ही वे आकर नानी माँ से ये बोले, एमिली हमारे सारे अतिथि चले जाएं तो भी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। हमारे घर में अब तक जितने भी लोग आ चुके हैं उनमें से ये भारतवासी ही सर्वाधिक बुद्धिमान तथा रोचक हैं।
0: कार्नेलिया कोंगर ने अपने स्मरण में और भी लिखा है कि
5: तब से उन लोगों के बीच घनिष्ठता का सूत्र पात्र हुआ और इसी के फल स्वरूप स्वामी जी ने जब शिकागो क्लब के उनके अन्य मित्रों के सम्मुख कहा, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ मेरा विश्वास है कि उनमें श्रीयुक्त लियोन ही सर्वाधिक ईसा के सदृश हैं। तो नाना जी ने बड़े संकोच का अनुभव किया था। स्वामी जी की मेरी नानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी क्योंकि उन्हें देखते ही उनको अपनी माँ की स्मृति हो आती थी। मैं उस समय 6 वर्ष की थी और अपनी विधवा माँ के साथ उसी परिवार में रहती थी। स्वामी जी मेरी माँ से बातचीत करके उनका दुख दूर करने का प्रयास किया करते थे। मेरे नाना और नानी उनके प्राय हर व्याख्यान में उपस्थित रहते थे।
1: उन दिनों कार्नेलिया बहुत छोटी थी। स्वामी जी उनको बहुत प्यार करते थे। वो भी बच्चों की तरह जिद कर स्वामी जी से कहानी सुना करती थी।
5: मेरी बचपन की स्मृतियों में वे अब भी सजीव हैं। वे मुझे भारतवर्ष की कथाएं, बंदरों, मयूरों, हरियल तोते, वट वृक्षों, तरह तरह के फूलों तथा रंग बिरंगे फल सब्जियों से पटे बाजारों की बातें सुनाया करते थे। घर में उनके लौटते ही मैं दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाती और हट करने लगती, स्वामी जी एक और कहानी बताइए ना। उनकी पगड़ी मुझे बड़ी मजेदार प्रतीत होती थी। किस प्रकार से उसे हर बार घुमा घुमा कर बांधा जाता था। मैं उनसे कहती, दिखाइए तो उसे कैसे बांधते हैं।
0: कार्नेलिया के लेखन से हमें उन दिनों की ढेर सारी बातों का पता चलता है और स्वामी जी के चरित्र के कुछ अनछुए पक्षों की जानकारी मिलती है। जैसे वे तेज मिर्च मसाले वाला खाना पसंद करते थे। कार्नेलिया ने लिखा है,
5: हमारे अमेरिका में भोजन में अधिक मसाला नहीं डालते। नानी को भय था कि कहीं उन्हें ये पसंद ना आए, परंतु स्वामी जी ने बताया कि वे जहां कहां भी रहते हैं वहां के खान पान के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें जो भी मिलता खुश होकर खाते। नानी सलाद बनाते समय थोड़ा सा तीखा सॉस उपयोग में लाती। स्वामी जी को वह बोतल देते हुए उन्होंने कहा, आप चाहें तो इसमें से 2-1 बूंद अपने भोजन में मिला सकते हैं। स्वामी जी ने उसे लेकर अपने खाने पर इतनी अधिक मात्रा में छिड़क दिया कि हम लोग सहम कर कह उठे, इतना नहीं चलेगा, ये बहुत तीखा है। वे केवल हंस दिए और खूब आनंद के साथ खाने लगे। इसके बाद से नानी उन्हें सॉस की 1 बोतल हमेशा उनके पास रख दिया करती थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।